ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तृतीय तिथि, तदनुसार 25 जुलाई 2026। प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: साथ में मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज़।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के

0: और FM 101.6 MHz पर प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आज का विचार कार्यक्रम। आज का विचार कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने हैं विषय सहज और संयत रहें। आलेख और वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
1: श्रोताओ, मन मनुष्य की वह शक्ति है जो उसके कार्य व्यवहार को संचालित करती है। मन यह काम इंद्रियों के माध्यम से करता है। अगर हमारा मन निर्मल होगा तो हम अपने शरीर से सुकर्म करते हुए अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, अन्यथा यही मन निर्मलता के अभाव में हमें पतन के रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम मन की निर्मलता को प्राप्त हो सकें। तो ये कैसे होगा? मन पर संगत का बहुत जल्दी या कहीं तत्काल प्रभाव पड़ता है। जैसी आपकी संगत होगी वैसा ही आपका मन बनता चला जाएगा। प्रेमचंद जी की कहानी नशा इसका उदाहरण है, जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का मन संगत से बहुत जल्दी प्रभावित होकर अच्छा या बुरा बन जाता है। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए। भागवत चिंतन या सृजनात्मक चिंतन करते हुए सुकर्म करने चाहिए। इसमें जरा भी असावधानी आपको पतन के रास्ते पर धकेल सकती है। संत गोपाल दास जी एक कहानी अक्सर सुनाया करते हैं कि एक बार जंगल में सांप और नेवले की बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। सांप तेजी से नेवले को डसता, नेवला उसका प्रतिकार करता, मगर फिर भी उस पर सर्प का विष चढ़ता ही जाता था। यह देखकर नेवला लड़ाई बीच में ही छोड़कर अपने बिल में घुसता और शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः लड़ाई के लिए आ जाता। यूं कई बार हुआ तो आखिर में सर्प मर गया और नेवला जीत गया। ये सब देखते हुए एक चूहा बोला, नेवले भाई, इतना विष चढ़ने पर भी आप मरे क्यों नहीं, और लड़ाई छोड़कर बीच बीच में आप कहां बिल में चले जाया करते थे, क्या करने के लिए? इसका उत्तर नेवले ने कुछ यूं दिया, चूहे भाई, हम नेवलों के पास एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जिसको सूंघने मात्र से सर्प का सारा जहर उतर जाता है, और मैं दूने उत्साह से लड़ने बाहर आ जाता था। इस तरह से सर्प के विष से मेरी रक्षा होती रही, पर सर्प मेरे जहर और मेरे दिए हुए घावों से मर गया। इस कहानी में नेवला जिस प्रकार से बिल में घुसकर जड़ी सूंघ कर आता है, उसी तरह से संसार रूपी सर्प के डसे जाने पर कमजोर हुई जीवात्मा सत्संग रूपी जड़ी सूंघ कर पुनः पुनः संसार की माया से लड़ने के लिए तैयारी कर सकता है। इसलिए मन के द्वारा सत्संग का अभ्यास करवाना बहुत ही जरूरी है, इससे संसार की माया असर नहीं कर पाती है। अब अगर सत्संग उपलब्ध नहीं है तो हमारे पास बहुत ही सुंदर विकल्प है, वो है स्वाध्याय। एकांत में बैठकर धार्मिक चिंतन की किताबें, सृजनात्मक लेखन की किताबें, साहित्य के ग्रंथ इत्यादि पढ़ते रहने से भी हम सांसारिक माया के दाव पेचों से बचकर अपने मन की निर्मलता की रक्षा कर सकते हैं।
0: निश्चय ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है सहजता, और सबसे बड़ा आभूषण संयम। परिस्थितियां हमेशा हमारे मन के अनुसार नहीं होती, कभी सफलता मिलती है तो कभी चुनौतियां। ऐसे समय में जो व्यक्ति सहज और संयत बना रहता है वही सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल होए। अर्थात हर काम का अपना समय होता है। अधीरता से नहीं बल्कि धैर्य और संयम से ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो अभी आपने सहज और संयत रहे विषय पर सुने श्री प्रमोद कुमार शर्मा के विचार। आज का विचार कार्यक्रम में हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर, अर्थात 1350

97 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जयंती हिरावत के स्वर में अभी आपने सुना गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं सीमा मिश्रा के स्वर में हे कृष्ण ना मथुरा जइयो रे।

भावना लोन करके भक्तिमय स्वर में अभी आपने सुना दर्शन दी जो आए। लीजिए अब सुनते हैं विपिन सचदेवा को, भगवान शिव के चरणों में समर्पित रहेगा ये अगला भजन।

विपिन सचदेवा के स्वर में इस भक्तिमय रचना के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बाल

कांड दोहा संख्या 271 से दोहा संख्या 273 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। संगीत सतीश भाटिया का है, मुख्य स्वर रविंद्र साठे और श्रीकांत परगांवकर का है।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

रामचरितमानसगान के आज के अंक में आपने सुना बालकांड दोहा संख्या 271 से 273 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ, मुख्य स्वर रविंद्र साठे और श्रीकांत परगांवकर का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोता, हमारी दिल्ली केंद्र से होने वाले प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान भारती, जबकि संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रस्तुत होगा रात्रि 10 बजे से। आज के कलाकार रहेंगी अदिति बनर्जी, आप सुनेंगे उनका ठुमरी दादरा गायन रात्रि 10 बजे से संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण, रात्रि 8:15 पर। श्रोताओं, से कुछ ही पलों में इसी सभा में आप सुनेंगे खेती की बातें। विषय रहेगा सहजन की खेती है लाभप्रद। वाचक स्वर श्री बजरंग सारस्वत के होंगे। सुप्रभात कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7 बजे से, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे भेंट वार्ता। बरसात के मौसम में बच्चों की देखभाल विषय पर डॉक्टर हिमांशु गुप्ता की श्रीमती बरखा थानवी व्यास के साथ भेंट वार्ता। संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा सुप्रभात कार्यक्रम में प्रातः 7 बजे। प्रातःकालीन सभा में आप फिल्म संगीत सुनेंगे प्रातः 7:30 पर। फिल्म संगीत आप फिर से सुनेंगे प्रातः 10 बजे, दोपहर 12:40 पर और दोपहर 2:30 पर भी फिल्म संगीत का लुत्फ आप ले पाएंगे। सौरभ कार्यक्रम में वार्ता सुनिएगा धर्म और संस्कृति पर्यावरण संरक्षण रो आधार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर गौरी शंकर प्रजापत प्रातः 8:30 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनिएगा आकाशवाणी पॉडकास्ट पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम 9:10 पर। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा 9:40 का, जबकि हेलो बीकानेर सुनिएगा आप प्रातः 11 बजे से। महिला जगत सुनिएगा दोपहर 1:05 पर और युववाणी का समय रहेगा हमेशा की तरह संध्या 5:05 का। श्रोताओं, ये था हमारे आज प्रसारित

0: होने वाले कार्यक्रमों का विवरण हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है सहजन की खेती है लाभप्रद और वाचक स्वर श्री बजरंग सारस्वत के हैं।
1: किसान भैया राम राम। लारले कई बरसा मायने सहजन री खेती लोकप्रियता किसान रे बिचारे घनी तेजी सु देखने ने मिली है, क्योंकि वो कम लागत में किसान भाई ने अच्छी आमदनी करा देवे है। वो अपर देश री गुणकारी सब्जिया में एक है, जिकर मैंने आमतौर पर मोरिंगा रे नाम से जानो जावे है। इरा पत्ता फली और फूल मिनख और पशु दोनों रे वास्ते लाभदायक होवे है और मैंने मोकड़ा पोषक तत्व मोकड़ी मात्रा में होवे है। राज्य रा मोकड़ा किसान सहजन री खेती का आप रुझान करियो है और वे सफलता सु इरी उपज ले रिया है। सहजन रो पौधो 20 वर्षा रे अड़ेगड़े या बीसू बेसी समय ताई आमदनी रो माध्यम बनेड़ो रेवे। इरे माथे होनाड़ो खर्चो लगोलग घटतो जावे और आमदनी लगोलग बढ़ती जावे। नवाचार रा इच्छुक किसान भाई ई बार मानसून में सहजन रा पौधा जरूर लगावे और आमदनी अच्छी लेवे तो मारी सलाह आई है। बाजार में सहजन रा फूल छोटा और बड़े आकार फलिया और पौधे रे प्रत्येक बाग सु काफी अच्छो मूल्य प्राप्त हो जावे। इरे अलावा सहजन रा बीजा सु तेल निकाल उपयोग में लाया जावे और बीजा ने उबाल सुखार भी प्राप्त होने वाले पाउडर ने तैयार कर विदेशा में भी निर्यात करियो जावे। कुल मिलाकर सहजन रे हर एक भाग सु किसान भाई ने अच्छी आमदनी अच्छो मुनाफो प्राप्त हो जावे। इरी आमदनी की बात करा तो जे आप इन्हें एक एकड़ जमीन में लगार खेती करो तो आप इसु हर बरस 6 लाख रुपया सु बत्ती आमदनी ले सको हो। सहजन रे पेड़ री पहचान अपा किया करा। बरस में एक बार फूल पछे फल लागे है। इरो फल पतलो लांबो और हरे रंग रो पेड़ रे तने सु नीचे लटक्योड़ो होवे ग्वार फली दे जिसो। जिया के अपारे खेजड़ी रा लांबा खोखा हुए है। खोखा तो पीले रंग रा हो जावे पर ए जिका इरा फल है ए हरे रंग रा फूलोड़ा लंबा लंबा इरा फल लागे है फली टाइप रा। पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा हुए कमजोर तनो हुए छोटी छोटी पत्तियां और बहुवार्षिक पौधो होया करे है। बिना सिंचाई और बंजर या कम उर्वर जमीन माथे भी सालों साल तई हरियो भरियो रेवनाड़ो। इरी काची हरी फलिया सबसु घनी उपयोग में ली जावे। जरूरत रे मुजब न्यारी न्यारी अवस्था में फल री तुड़ाई करता रेवा। कृषि वैज्ञानिक सहजन री एक उन्नत किस्म विकसित करी है जे की बरस में 2 बार फल देने में सक्षम है। सहजन रो पौधो शुष्क और उष्ण कटिबंधीय जलवायु आड़ो है। खेती रे अनुकूल औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ठीक रेवे। ओ पौधो ठंड ने भी सहन कर लेवे पर सर्दिया में जको पाड़ो पड़े है वो इर वास्ते घणो नुकसान करे। कम या घनी बिरखा रो इर माथे कोई दुष्प्रभाव कोनी पड़े और हर एक परिस्थिति में ओ पनप सकने में सक्षम पौधो है। इरी मोकली विशेषतावां है। हल्की सु भारी माटी या कम निकासी वाली माटी में या कोई भी भांतरी माटी में इरी सफलतापूर्वक खेती आप ले सका हां। अठे ताई के बेकार बंजर कम उर्वर माटी में भी इरी खेती हो जावे। व्यावसायिक खेती या बरस में 2 बार फलियां देवण वाली उन्नत किस्म री खेती करनी होवे तो बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रेवे जिकी रो पीएच मान 6 से 7.5 ताई होनो चाहिए। जुलाई सु सितंबर है बिचारे आपा कदई भी इरी पौध लगा सका हां और इरी जिकी पौध लगाने री विधि है बा यहां है। गहरी जुताई दे पछे रोटावेटर सु जमीन समतल कर लो और भुरभुरी बना लो। 3 मीटर री दूरी राखता थका कतार में 1 फीट गहराई रा खड्डा बनाओ और खाद और पानी सु तैयार करो। 10 दिनार पछे पौधे री रोपाई कर दो तो ठीक रेवे। उर्वरक प्रबंधन में सावधानी रखनी घनी जरूरी है। पौध लगाने से 3 महीना पछे 100 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सुपर फास्फेट 50 ग्राम पोटास हर एक गड्ढे री दर सु आप भी में डालो और इर 3 महीना पछे 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढे में आप पाछी देवो तो ठीक रेवे। सहजन माथे करोड़े अनुसंधान सु आ जानकारी मिली है के सिर्फ 15 किलोग्राम गोबर री खाद हर एक गड्ढे में घालिया और एजोस पीरिलम और PSB 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग सु जैविक सहजन री खेती उपज में बिना कोई नुकसान रे सफलतापूर्वक प्राप्त करी जा सके है। इरी उन्नत किस्म सहजन री हर बरस 2 फसलां प्राप्त करनी चाहो तो उन्नत किस्म है PKM 1 PKM 2 Coimbatore 1 Coimbatore 2। अरी विशेषताया इन बात है आ किस्म में उगन आला पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा और आर महीने 90 से 100 दिना में फूल लाग जावे। इरी सगड़ी अवस्था में तुड़ाई करी जा सके है। इरी किस्म 4 से 5 बरसाताई फसल ने प्राप्त करी जा सके है और हर बरस फसल ने प्राप्त करने रे पछे

0: पुष्पा सैनी के स्वर में आपने सुना लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: पीएम आकाशवाणी।

श्रोताओं, बादलों ने नीले आकाश पर जैसे स्नेह की चादर तान ली है और बादलों को चीरते हुए सूरज की पहली किरण हमारी धरती पर एक प्यारा सा छुअन लेकर आ गई है। कल की बारिश, परसों की बारिश, रिमझिम फुहारों ने आज सुबह की भी दहलीज को जैसे चूम लिया है और भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू और सांस के साथ मन में उतरती उतरती उतरती चली जा रही है। पेड़ों की डालियां झूम रही है, पत्तों पर ठहरी बूंदें मोतियों सी चमक रही है और प्रकृति मानो अपने सबसे मधुर राग में जीवन का एक प्यारा सा गीत रच रही है। श्रोताओं, बारिश का ये जो मौसम है हमें हर बार यही विश्वास दिलाता है कि कठिन समय स्थाई नहीं होता, यानी कि जो तपती हुई धरती की तरह जीवन में कठिन समय आता है वो एक फुहार उम्मीद की भी हो तो सूखे मन में भी हरियाली लौट आती है। इन्हीं भीगी भीगी, ताजगी भरी और उम्मीद से सराबोर भावनाओं के साथ मैं मालकोंस आपका स्वागत करता हूं कार्यक्रम सुप्रभात में। तो आइए इस सुहानी सुबह का स्वागत उन सुरों के साथ करें जिसमें सावन की रिमझिम भी है और मिठास की और मौसम की ताजगी तो है ही। रिमझिम रिमझिम।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 7 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुप्रभात कार्यक्रम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: बारिश का मौसम ये अपने साथ ठंडक और आनंद तो लेकर आता ही है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी अतिरिक्त सावधानी भी मांगता है। ऐसे में अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को संक्रमण से कैसे बचाया जाए और इस मौसम में उनका खान पान कैसा हो, तो इन्हीं विषयों पर आज प्रस्तुत है एक विशेष भेंटवार्ता। विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर हिमांशु गुप्ता से भेंट कर रही हैं श्रीमती बरखा थानवी व्यास। संयोजन श्री अमित सिंह का है। सुनते हैं भेंट वार्ता, बरसात के मौसम में बच्चों की देखभाल।

0: बरसात का मौसम जहां चारों ओर हरियाली और ठंडक लेकर आता है, वहीं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कई तरह की चुनौतियां भी साथ लाता है। इस मौसम में सर्दी, जुखाम, वायरल बुखार, डेंगू मलेरिया, पेट के संक्रमण और एलर्जी जैसी समस्याओं का खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में माता पिता के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि बच्चों की देखभाल किस तरह से की जाए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैम, धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है, गर्मी से हम बरसाती मौसम की ओर प्रवेश कर चुके हैं, कभी बरसात हो रही है और कभी नहीं हो रही है, लेकिन ये जो मॉनसून का मौसम है इसमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही संवेदनशील रहता है, तो स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है बच्चों के और इसकी प्रमुख वजह क्या रहती है?
1: मैम, समय का चक्र है, बारिश के मौसम से पहले बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो गर्मी अपने आप में जो एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है उसमें कीटाणु जो भी हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, उसमें उनकी तादाद कम ही रहती है। इसके बाद जैसे ही मौसम चेंज हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, साथ में ह्यूमिडिटी बढ़ गई, साथ में बारिशें आ गई, तो जगह जगह वाटर पॉकेट्स बननी शुरू हो जाती हैं, पानी का जमाव इकट्ठा हो गया, कई जगह खाने पीने की चीज़ों के साथ भी दूषित पानी का मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, ह्यूमिडिटी बढ़ी, तो जो कीटाणु हैं उनके ग्रो करने के लिए ये बिल्कुल आदर्श चीज़ है। तो किसी भी चीज़, चाहे वो खाने पीने की चीज़ है, चाहे मॉस्किटोज हैं, वह सभी अपनी तादाद एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और जब उनकी तादाद बढ़ती है तो उसका जो प्रतिफल है वो मानव के शरीर पर बच्चों के तौर पर ही आता है, और मानव में हमारे बच्चे सबसे छोटे रहते हैं, तो सबसे ज्यादा असर बच्चों के ऊपर इन बीमारियों के तौर पर सामने आता है।
0: बिल्कुल, तो बच्चे निश्चित ही जो उनका शरीर होता है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, तो ऐसे में जो ये संक्रमण या किसी भी तरीके का परिवर्तन है उनको सबसे ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है, ऐसा हम कह सकते हैं।
1: जी मैम, बिल्कुल।
0: और डॉक्टर साहब, अगर इस मौसम की बात करें जो ये बदलता मौसम है, ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां सबसे अधिक देखी जाती हैं?
1: मैम, सबसे ज़्यादा तो वायरल फीवर्स ही, जो सामान्य बुखार हैं, वही कॉमन में रहते हैं, उसके साथ में कुछ मच्छरों से संबंधित, मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है, मॉस्किटोज ग्रो ज़्यादा करते हैं, तो उसमें डेंगू, उसके साथ में मलेरिया, और फिर क्योंकि दूषित पानी और जो नॉर्मल वाटर सप्लाई है कहीं ना कहीं से उस पानी में कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो पेट की बीमारियाँ, आंतों की बीमारियाँ भी बहुत कॉमन हैं। तो पहले नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो वायरल फीवर, कॉमन वायरल फीवर्स, आफ्टर उसके बाद हम बात करते हैं डेंगू एंड मलेरिया बोथ, और उसके बाद हमारे लिए गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और फिर जो छोटे बच्चों के अंदर या करके पीलिया भी काफी कॉमन है, जो वायरल हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं लोकल भाषा में, तो पीलिया के केसेस भी सर्दी इस मौसम के अंदर काफी ज्यादा आते हैं अपने पास में।
0: वायरल संक्रमण की आपने बात कही जिससे कि सर्दी और जुखाम होता है, बरसात के मौसम के अंदर बच्चों को सर्दी जुखाम होना आम सा होता है, लेकिन निमोनिया होना या वायरल संक्रमण होना, इनमें क्या अंतर रहता है, अभिभावक इसे कैसे पहचाने?
1: मैम, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को सामान्य सर्दी है, खांसी है, हल्का फुल्का जुखाम है, बच्चा खाना पीना अच्छे से खा पा रहा है, बच्चे का पेशाब अच्छे से हो रहा है, बच्चे की डेली रूटीन एक्टिविटीज यानी वो जो चलना फिरना, खाना खेलना, सोना उठना, ये बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है, तो ये एक तरह के नॉर्मल फीवर ही है। कभी कभी वायरल डायरियाज भी बहुत कॉमन है, अगर बच्चे को थोड़ी बहुत दस्तें लग रही हैं जो दो दिन तीन दिन में अपने आप से ठीक हो रही हैं, बच्चे को डिहाइड्रेशन के साइंस नहीं है, बच्चे को तेज बुखार नहीं है, साथ में बच्चे की एक्टिविटी अच्छी है, तो ये नॉर्मल वायरल संक्रमण के ही सिम्टम्स हैं। अगर इसके अलावा बच्चे को सांस बहुत तेज चल रही है, बच्चे का बुखार टूटने में नहीं आ रहा, बच्चा पेशाब कम कर रहा है, बच्चा बुखार की वजह से बिल्कुल डल हो गया है, खाना पीना नहीं कर पा रहा है, बच्चे की एक्टिविटी डल हो गई है, बच्चा हंस खेल नहीं रहा है, जितना एक्टिव पहले रहता था उतना एक्टिव नहीं है
0: जी।
1: बच्चे के सांस इतना तेज चल रहा है कि हाथ पैर में भी कभी कभी हमें नीलाई देखने को मिलती है, अगर ये सारी दिक्कतें बच्चे के साथ में हैं तो फिर ये बच्चे के संक्रमण के सीरियस होने के लक्षण हैं, ये न्यूमोनिया के भी सीरियस होने के लक्षण हो सकते हैं, और कई बार दस्तों के साथ में जो सीवियर डिहाइड्रेशन है इस चीज के भी लक्षण हैं। तो अगर बच्चा खाना पीना ठीक कर रहा है, पेशाब ठीक से कर रहा है, बुखार उसका कॉमन पैरासिटामोल हमने दी उतर रहा है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन अगर इसके साथ में ही बच्चे के दूसरी दिक्कतें साथ में एसोसिएशन में आ रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये बीमारी न्यूमोनिया या किसी दूसरे से ग्रसित होना हो सकती है, ऐसे में फिर हमें डॉक्टर के साथ तुरंत संपर्क कर लेना चाहिए
0: कि ये वो गंभीर लक्षण है इसके लिए हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना ही चाहिए।
1: जी मैम।
0: अभिभावक कई बार क्या करते हैं कि हल्का बुखार या सर्दी लगने पर खुद ही बिना डॉक्टर की सलाह के दवा दे देते हैं, या फिर किसी केमिस्ट की दुकान से लाकर कि ये 4 साल का बच्चा है, 5 साल का है, इसको क्या दवाई दें,

0: और इसकी कितनी डोज होनी चाहिए, ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी अभिभावकों के लिए?
1: मैम, हर चीज के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो ओवर द काउंटर मिलती हैं, हमारे देश में तकरीबन सब दवाइयाँ ओवर द काउंटर दवाई बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ली जा सकती हैं
0: जी।
1: तो इस चीज के वही बात है, अच्छे पहलू भी हैं बुरे पहलू भी हैं। पैरासीटामोल जो प्लेन पैरासीटामोल दवाई है या ORS है, ये नॉर्मल नाक में डालने के लिए नेजो क्लियर हैं, जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं जिनको हम दे सकते हैं। तो ये दवाइयाँ आप ओवर द काउंटर यूज करें, गार्जियंस अभिभावक उसको अपने आप से यूज करें। अगर बुखार एक बार दो बार आके वापस बुखार ठीक हो रहा है तो ऐसे में छोटी सी बुखार के लिए बार बार अपने डॉक्टर के पास आने की आवश्यकता नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स अपने को कभी भी ओवर द काउंटर परचेज करके नहीं यूज करनी चाहिए। या कई ऐसी दवाइयां हैं जो नेबुलाइजेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, भाप लगाने में इस्तेमाल की जाती हैं, या कुछ एंटीहिस्टामिनिक एक ग्रुप है जो हम सर्दी खांसी जुकाम में यूज करते हैं, वो दवाइयां प्लीज हमें डायरेक्ट केमिस्ट की सलाह से नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इन दवाइयों के प्रभाव भी अच्छे हैं लेकिन अगर इन दवाइयों की डोज प्रॉपर नहीं दी जाए, डोज कम हो जाए तो दवाइयां असर नहीं करती हैं, और डोज अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो इनके जो सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर बच्चे को बीमारी से ज़्यादा परेशान करते हैं
0: जी।
1: हमारे पास कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चा दो दिन तीन दिन से जुकाम से पीड़ित था, उसको जुकाम में तेज दवाई की जरूरत नहीं थी लेकिन उसको अभिभावक ने किसी के कहने से गलती से वो दवाई दे दी। अब बच्चे का जुकाम तो ठीक हो गया पर उसका पेशाब कम आ रहा है
0: जी।
1: अब उसके कब्जी रहने लग गई है, अब वो चिड़चिड़ा ज्यादा हो गया है,
0: दूसरे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं आने शुरू हो गए
1: जी मैम। तो ऐसे में फिर डॉक्टर को डबल काम पड़ जाता है। और एंटीबायोटिक्स मैम अगर हम दे रहे हैं तो उनमें एक ही एंटीबायोटिक कई बीमारियों में इस्तेमाल होती है और एक बीमारी में कई एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है, तो ये एक बहुत ही मीन्स एडवांस्ड टेक्निक कह लीजिए या अपने एजुकेशन है कि किस बीमारी में कौन सी दवाई और किस डोज में देनी है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के ही अगर दी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, दवाइयों का दुष्परिणाम भी नहीं आएगा और उनका दुरुपयोग भी नहीं होता है।
0: और ये बात डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं बता सकता, इसलिए ही आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जो की बाल रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें निमोनिया के कुछ गंभीर लक्षण होते हैं वो बताए, अब यदि हम बात करें डायरिया की या पेट में होने वाले संक्रमण की, जो की बरसात के दूषित पानी या बाहर का खाना खाने से या फास्ट फूड जंक फूड जो बच्चे पसंद करते हैं उससे भी हो जाता है, तो डायरिया के दौरान हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए या फिर क्या करें और क्या ना करें?
1: मैम, ये भी एक बहुत ही इस मौसम के हित का ही प्रश्न है। दस्ते बहुत ही कॉमन है, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको जिंदगी के पहले दो साल के अंदर दस्ते नहीं लगी है, और ज्यादातर जो दस्ते लगती है वो दस्ते अपने आप से दो दिन तीन दिन में ठीक हो जाती है, चौथे पांचवे दिन तक भी कभी कभी रह सकती है। कारण क्या है दस्ते लगने का, ये जब तक हम नहीं पता कर लेते हैं तब तक हमारे लिए क्या होता है कि उसका इलाज करना या उसके बारे में कैसे काम किया जाए ये जानना बहुत जरूरी रह जाता है
0: जी।
1: तो दस्ते तभी लगती हैं जब इंसान के या बच्चे के पेट में आंतों में संक्रमण है। संक्रमण मतलब उसके पेट में टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं, और प्रकृति का ये नियम है, शरीर का ये नियम है कि शरीर के अगर किसी भी हिस्से में अगर विष रहेगा, टॉक्सिन रहेगा, तो बॉडी उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगी। तो दस्ते इसीलिए लगती हैं ताकि बच्चे के पेट में आंतों में जो गंदगी है वो उसके बाहर की तरफ उसको फेंका जा सके। होता क्या है कि इसके साथ में बॉडी से वाटर लॉस काफी ज्यादा हो जाता है, तो अगर कभी भी दस्ते लगती हैं तो पहला काम तो यही है कि शरीर को डिहाइड्रेशन होने नहीं दिया जाए, उसको ORS या होममेड रेमेडीज दे करके, जिसमें दाल का पानी, चावल का पानी या नारियल का पानी या छाछ ये दे करके उसको डिहाइड्रेशन से रोका जाए। ORS ओवर द काउंटर अवेलेबल है, ORS उसको दें ताकि बच्चे में दस्ते जब भी ठीक होंगी लेकिन बच्चा कम से कम हमारा डिहाइड्रेशन में नहीं जाए।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा एक ये बड़ा है कि भाई अब ये दो दिन हो गए हैं, तीन दिन हो गए हैं, अभी तक बच्चे के दस्तों में आराम नहीं आया है। अब अगर किसी व्यक्ति के पेट में आंतों में 5000 कीटाणु गए हैं तो उसके दस्ते कम हैं, उसके दस्ते जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर किसी बच्चे के शरीर के अंदर कीटाणु की तादाद ही 50,000 है तो उसकी दस्ते ठीक होने में समय भी ज्यादा लेंगी,
0: वो लंबा समय लेगा
1: जी, बिल्कुल लंबा समय लेगा। तो आकाशवाणी के माध्यम से मैं जनमानस में ये संदेश देना चाहूंगा कि कभी भी दस्ते रोकने की जल्दी नहीं की जाए
0: जी।
1: या कुछ ऐसी दवाइयां जो मेडिकल शॉप्स पे अवेलेबल भी होती हैं, या कई बार कुछ लोकल दवाइयां जैसे घासे वगैरह मिलते हैं जिनसे दस्ते तुरंत रुक जाती हैं, ये आंतों पे बंद लगा देते हैं नीचे। जब वो बंद नीचे लग जाता है तो आंतों के अंदर विष ऊपर ही रह जाता है, टॉक्सिन ऊपर ही पड़े रह जाते हैं, तो वो आंतों को फुलाएंगे, आंतों में इंटोसुसेप्शन कर देते हैं, आंत पे आंत चढ़ा देते हैं
0: और नुकसान पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल नुकसान होता है मैम, और वो नुकसान शरीर के लिए ज्यादा घातक है। अगर बच्चा एक दिन दो दिन तीन दिन ज्यादा दस्ते कर लेगा तो कम से कम बच्चे के शरीर की सफाई हो जाएगी,
0: बिल्कुल
1: उसको मैनेज किया जा सकता है। अगर बच्चे को

0: ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है तो घर पे ट्रीटमेंट देके, और अगर बच्चे में डिहाइड्रेशन ज्यादा है या 24 घंटे में बस बच्चा 15-20 बार से ज्यादा दस्ते कर रहा है तो उसको फ्लूइड्स की थेरेपी दे करके, इंजेक्शन की एंटीबायोटिक्स दे के हम मैनेज कर सकते हैं।
1: लिक्विड डाइट पर रखें उसे?
0: बिल्कुल लिक्विड डाइट पे रखें। इसमें एक चीज, दो चीजें बल्कि मैं और इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूंगा। लिक्विड डाइट का मतलब कोल्ड ड्रिंक कतई नहीं है। कोल्ड ड्रिंक वो चीज है जो दस्ते बढ़ाती है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी एक और चीज है मैम, जूस भी नहीं देने होते हैं हमें। दस्तों में जो जूस होते हैं वो पाचन क्रिया को फास्ट करते हैं।
1: लेकिन जूस को लोग अच्छा मानकर या उससे ऐसा मानते कि इससे तुरंत शक्ति आ जाएगी।
0: जी मैम, उसके अंदर जो सिर्फ सोडियम है, पोटेशियम है और शुगर है, यही हमारे काम की चीज है। अदरवाइज जो जूस में दूसरी चीजें हैं वो डायरिया को बढ़ाती ही हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे को किसी भी कारण से अगर घर में भी ज्यादा जूस पी लेते हैं तो ज्यादा जूस पीने से भी दस्ते लगती हैं। ऑस्मोटिक डायरिया बोला जाता है इस चीज को। तो ऑस्मोटिक डायरिया से बचा जाना चाहिए। ऑस्मोटिक डायरिया इज, ये अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है जो कई बार डायरिया को ठीक करते करते आती है। ऐसे ही दस्तों के बाद कुछ समय के लिए बच्चों में दूध का पाचन भी बाधित हो जाता है। उनमें बच्चों में लैक्टेज करके एक एंजाइम होता है जो हमारे दूध को पचाने में मदद करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो लैक्टेज डेफिशिएंसी काफी कॉमन है। इवन इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो 20-30% बच्चों में नॉर्मली दूध हजम नहीं होता है। तो अगर दस्तों के बाद बच्चे को लंबे टाइम तक दस्ते लग रही हैं और दूध पीते ही बच्चा तुरंत पानी जैसी दस्ते कर रहा है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए दूध को बंद कर देना चाहिए या लैक्टोज फ्री फॉर्मूलाज अवेलेबल है मार्केट में, अपने डॉक्टर की सलाह से उस तरह का दूध लेना चाहिए। दूध की जगह बच्चे को केला दें या दूसरे अनाज दें या दही दे सकते हैं। तो उससे बच्चे के ऑस्मोटिक डायरिया से बचाना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके की बचा जाना चाहिए। दस्ते रोकने की कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हम दस्ते रोकने की करते हैं तो उससे कभी ना कभी दुष्परिणाम ही सामने आते हैं। इस बात को शायद हमें सब समझने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, जल्दबाजी ना करें। जो इलाज है उसे समय लगे लेकिन वो अच्छे से हो, इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
0: जी,
1: बात करी डॉक्टर साहब हमने कुछ खान पान की। अब यदि इस बरसाती मौसम में बच्चों के सेहत की ध्यान पर बात कर रहे हैं तो ऐसे में खान पान में क्या बदलाव कुछ करना चाहिए या एक स्टैंडर्ड डाइट जो है वो बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए?
0: जो बच्चे हैं मैम उनके लिए साफ फल और साफ सब्जियां। बारिश के मौसम में संक्रमण सबसे ज्यादा अगर होता है तो फलों और सब्जियों के तौर पर ही आता है, या कहीं ना कहीं जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, जो लंबे समय तक पड़ा रहता है, जिसको खुला पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, प्रिकॉशंस नहीं है, तो इन चीजों से काफी ज्यादा, चाहे वो बर्गर हैं या किन्हीं चीजों के नाम नहीं लेना चाहेंगे,
1: जंक फूड जो भी
0: हैं, उन चीजों से बचाव रखना ही उचित है। और जो हमारे घर का बना हुआ खाना है, जो खाना हम, हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वज पिछले 1000 साल से 2000 साल से खा रहे हैं, हमारा शरीर उस खाने के लिए ही एक्लिमेटाइज है। हमारा शरीर उस खाने के प्रति कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो जो खाना हमारे पूर्वज खा रहे थे वही खाना हमारे शरीर के लिए बेहद सुरक्षित है। जितना खाना हम बाहर का खाना शुरू कर देते हैं उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। वो आंतों पे, पेट पे, लीवर पे, इन पे एक तरह की बर्डन भी है। तो वो दस्ते करने में, पेट में आफरा लाने में, पेट में इन्फेक्शन करने में कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव ही रहता है। तो घर का बना हुआ खाना, जो फ्रेश खाना रहे, और जो सब्जियां और फल हैं उनको अच्छे से धो करके खाया जाए, उनकी तादाद अच्छे से ली जाए, तो उससे बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहती है और बाहर के खाने से जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वह भी काफी हद तक कम हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, घर का खाना ही सबसे अच्छा खाना है। जो हमारे पूर्वज खा रहे थे उन्होंने हमें पास ऑन किया और हमें वही लेगेसी जो है अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। आपने बात करी इम्यूनिटी की, हम इम्यूनिटी को अगर खाने से जोड़ें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने के लिए इस मौसम में क्या उपाय किए जा सकते हैं?
0: इसमें मैम कुछ बातें हैं। एक तो के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे घर के खाने से जितनी अच्छी जागृत हो सकती है या मेंटेन रह सकती है उसका कोई विकल्प ही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: घर की सब्जियां, घर का खाना, घर के मसाले दी बेस्ट हैं। फिर भी विटामिन डी जो है, विटामिन डी इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो हमारा उतना सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पाता है। तो जब सूर्य की रोशनी हमें नहीं मिलती है तो विटामिन डी का स्किन की और आंतों की और इनकी इम्यूनिटी में और ग्रोथ में काफी महत्वपूर्ण एक रोल है। तो विटामिन डी हम कंटिन्यूअसली छोटे बच्चों को, सभी को आजकल बाय डिफॉल्ट सब बच्चों का स्टार्ट करके दे रहे हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन, अगर किसी बच्चे में किसी तरह की कमी के लक्षण है तब उस बच्चे को अलग से मल्टीविटामिन या कोई इम्यूनो बूस्टर देने की आवश्यकता है। अगर बच्चा खाना पीना अच्छे से खा रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, बच्चा बार बार बीमार नहीं होता है, बच्चे के फिजिकल और बच्चे के इमोशनल माइलस्टोन्स, बच्चे की ग्रोथ हर तरह से अच्छी है, तो ऐसे में किसी भी तरह की बाजार में बिकने वाली किसी भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली अलग से दवाई देने की जरूरत नहीं है। घर का खाना ही अपने आप में बेस्ट है। अगर बच्चे में किसी तरह की कमी है विटामिन सी की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, ऐसी परिस्थिति में ही बच्चे को मल्टीविटामिन, अगर बच्चे में बार बार बीमार हो रहा है, न्यूमोनिया

0: है, तब उस बच्चे को हमें अलग से कुछ देने की जरूरत है, वो फिर अपने डॉक्टर की सलाह से आप स्टार्ट करें। बिना किसी तरह से हर एक बच्चे को तो किसी भी देना कोई उचित नहीं है,
1: सप्लीमेंट्स देना उचित नहीं है।
0: नहीं मैम, हर एक बच्चे को सप्लीमेंटेशन विटामिन डी के अलावा देना कतई उचित नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है।
1: विटामिन डी का क्या कोई नियमित कोर्स होता है जो कुछ अंतराल के बाद हमें देते रहना चाहिए?
0: मैम, जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनमें बाय डिफॉल्ट सबको हम 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दे रहे हैं, जो डेढ़ साल तक सब बच्चों के लिए चला रहे हैं। तो उससे अभी अगर बात करें तो पहले हमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स करके बीमारी के पेशेंट्स देखने को मिलते थे, अब वो काफ़ी कम हो गए हैं।
1: जी।
0: जब हम अपने बड़ों की बात करते हैं तो हमारा भी सनलाइट एक्सपोजर काफ़ी कम रहता है। अगर हमारे में कमजोरी रहती है तो हम विटामिन डी लेवल्स की जाँच करवा सकते हैं और उसके बेस पर फिर हम अपने हिसाब से डॉक्टर की सलाह लेकर के विटामिन डी के हम रेगुलर जो सैशेट्स हैं या कितना लेना चाहिए उसको लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये अगर बात करें डॉक्टर की सलाह की, तो क्या हमें बिना किसी समस्या के या बीमारी के भी डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जाना चाहिए या फिर समस्या होने पर ही चिकित्सकीय परामर्श लें?
0: जब मैम बच्चा जब छोटा है तब बच्चे का रूटीन में टीकाकरण सबका होता है, किसी भी सेंटर पे, चाहे वो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है चाहे प्राइवेट हेल्थ सेंटर है। पहले 6 माह में बच्चे के 3 से 4 बार टीकाकरण के लिए हम बच्चे को बुलाते हैं। उस समय पे बच्चे के माइलस्टोन्स, बच्चे का वेट गेन, बच्चे की ग्रोथ, सारा कुछ देख लिया जाता है। तो उसके अलावा अगर बच्चे को बीच में कोई दिक्कत है तब तो कोई जरूरी है, नहीं तो जिस समय टीकाकरण है तो टीकाकरण भी करवाना ही अनिवार्य है क्योंकि वो इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। और उसके साथ में ही बच्चे की रूटीन की स्वास्थ्य की जांच, क्या बच्चे ने वजन गेन किया है, क्या बच्चा बैठना शुरू हुआ है, क्या बच्चा गर्दन संभाल रहा है, क्या बच्चा हंस रहा है, तो माइलस्टोन उसी टाइम चेक किए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो वो दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। तो 6 महीने में 3-4 बार बच्चा आराम से आता ही है डॉक्टर के पास में, तो ऐसा ही नॉर्मल में सही रहता है।
1: बिल्कुल। और जो बदलता मौसम होता है उस दौरान क्या टीकाकरण किसी तरीके से प्रभावित होता है कि हमें उस समय का ध्यान रखना चाहिए या जैसा कि हमें किस समय कौन सा टीका लगना है उसे ही फॉलो किया जाए?
0: नहीं मैम, जैसा अपना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो गवर्नमेंट भी फॉलो करती है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किया जाता है, किसी भी मौसम से उस टीकाकरण के नियम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है।
1: दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशंस।
0: दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशंस एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशंस व्हाटसोएवर वी कैन थिंक ऑफ।
1: जी, अंत में डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को बरसाती मौसम में बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, बारिश का मौसम साल में 3-4 महीने नहीं आता है और बीकानेर जैसे शहर के अंदर जहाँ पर हमारे यहाँ पे सूखा बहुत ज्यादा रहता है, तो बारिश के प्रति बच्चों का, बड़ों का, सबका ही थोड़ा सा ज्यादा लगाव रहता है।
1: बिल्कुल।
0: तो मौसम को एंजॉय करें, मौसम में नहाएं धोएं, शरीर का साफ सुथरेपन का ध्यान रखें, बाहर की चीजों को खाने पीने से बचें और अपने विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि कम से कम बीमार हो और कम से कम दवाइयां लेने की जरूरत पड़े। इसी की मेरे तरफ से सभी को शुभकामनाएं रहेंगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बखूबी आपने बताया कि बरसात के मौसम में बच्चों की देखभाल हमें किस प्रकार करनी चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बरसात का मौसम होता ही आनंद लेने के लिए है, पर थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी आपके बच्चों को कई बीमारियों से सुरक्षित रख सकती है। बच्चों को पौष्टिक भोजन दें, साफ और उबला या सुरक्षित पानी पिलाएं, हाथ धोने की आदत विकसित करें, घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। बीमारी और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा देने के बजाय चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। डॉक्टर साहब, आपने बरसाती मौसम में बच्चों की देखभाल, संतुलित आहार, स्वच्छता, संक्रमण से बचाव और समय पर चिकित्सक की सलाह के महत्व पर बहुत ही उपयोगी और व्यवहारिक जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपने भी जो जानकारी के लिए बुलाया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, बरसात के मौसम में बच्चों की देखभाल विषय पर डॉक्टर हिमांशु गुप्ता की श्रीमती बरखा थानवी व्यास से बातचीत। संयोजन श्री अमित सिंह द्वारा किया गया था। श्रोताओं, जैसा कि डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया, हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना चाहिए ताकि हमारे बच्चे और हम रहें स्वस्थ इस बरसात के मौसम में और उनकी बताई अच्छी आदतों को हम जीवन में उतारें और सफल हों, यही हमारी कामना है। और ध्यान रखें कि ऐसी ऑथेंटिक और किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा वेरीफाइड जानकारी को ही अपनी सोशल मीडिया पर हम साझा करें, नहीं तो अफवाहें फैल सकती हैं और ज्ञान अज्ञान में परिवर्तित हो सकता है। तो रखें ध्यान।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: तो बारिश के मौसम में स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम में हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:31 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

शिवहरी के संगीत से सजा गीत सुना आपने, उदित नारायण के स्वर में। फिल्म का नाम था डर। लीजिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और बेहतरीन नगमा उदित नारायण के स्वर में। साथ में है महालक्ष्मी अय्यर, संगीत विशाल शेखर का है, लिखा है इस गीत को कौशर मुनीर ने और फिल्म का नाम है टसन।

सूरज बुझा दूं तुझे मैं, सजा दूं सवेरा हो तुझसे ही कल। बेहतरीन गीत कौशर मुनीर के कलम से, फिल्म टशन के लिए। सुनिए आपने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यार रहमान के संगीत से सजा एक गीत सुनते हैं, शंकर महादेवन और आलिशा चिनॉय के स्वर में। फिल्म का नाम है तक्षक। इस गीत को लिखा है महबूब ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत चित्रा और SP बाला सुब्रमण्यम के स्वर में। फिल्म का नाम है द जेंटलमैन।

लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म तेरे मेरे सपने से ये गीत हरिहरन और साधना सरगम के स्वर में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और बेहतरीन संगीत रचा है विजू शाह ने।

0: हरिहरन साधना सरगम विजुषा और आनंद बख्शी, और अब हम क्या कहें, बस तेरा शुक्रिया इस बेहतरीन गीतों को रचने के लिए। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली के।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य
4: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने

0: के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार पैरासार्तुलन ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
4: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुझाव हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
5: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसी के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी, ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवांश शाह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बन रहे 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
4: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
3: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी उमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरवमय संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। जंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। जंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandoo Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Dr. Honorary

ही तत्व माथे आधारित है। पर्यावरण मुद्दों पृथ्वी माथे मानव जाति रे अस्तित्व उनकी संक्रिया कलापासू जुड़े थको है। प्रकृति माथे विजय मानवता रे विकसाव एक ध्येय रहो है। वो साच है के मानव विकसाव जरूरी है, पण बे हिसाब रो विकसाव आप रे सामी ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थितियां पैदा करे। और अबार सुई इन माथे लगाम नी कसी तो ओई विकास विनाश रे रूप धारण कर लेवेला। इन विनाश सु फगत कोई मिनक परिवार समाज देश और महाद्वीप ही नहीं बल्कि आखी पृथ्वी प्रभावित होसी और लगोलग हो रही है। पर्यावरण री सुरक्षा पृथ्वी रे अस्तित्व रो सवाल बन गयो है। विकास इन अंधी दौड़ में पर्यावरण रक्षा री दौड़ में आप सब सुन लारे रह गया। हाँ, बदती आबादी री जरूरत री पूर्ति रे खातर प्रकृति रो अंधाधुंध दोहन रे कारण प्रकृति रो संतुलन हर दिन बिगड़तो जा रियो है। प्राणी जगत प्रकृति रो महत्व अंग है। वो पर्यावरण री सीव माय रेर खिमतामा और स्वभाव सारू कार्य करे। आदि मानव प्रकृति री गोद में जन्म लियो और प्रकृति उनरे जीवन रो महत्व आधार बनी। मानव जद इन धरा माथे जन्म लेवे तो सहसु पहला उनरो मिलन हुए बा प्रकृति है। उन भगत एक लो पण रो अगर कोई साथी हो तो बा प्रकृति हुए। उनरो झुकाव हमेशा प्रकृति कानी बनियो रहे। मनोविज्ञान री देश सु मानव प्रकृति ने देखी निरखी और उनसु घणो सीखियो और आपरी सफलता री यात्रा प्रकृति रे सारे पूरी करी। इन सफलता री यात्रा में ठानी कितनी बार प्रकृति से दूर हटियो, कितनी बार करने गयो, मानव प्रकृति ने समझी। प्रकृति मानव ने समझ समझीनी रूपी बूंटी देवनाड़ो हरो भरो पर्यावरण और साफ सुथरो वातावरण दियो। वैदिक ऋषि मुनिया वैदिक मंत्रा माय रूखा रे महत्व ने बतावत थका रूखा रे संरक्षण कानी आपरो ध्यान आकर्षित करियो है। ऋग्वेद रे दसवें मंडल रे एक मंत्र माय कहो है के औषधिया मां रो रूप है। जिन भात माँ दूध सु आपरे टावरा रो पालन पोषण करे उन्हीं भात वनस्पतियां ही भोजन रे साथे घनी महत्व और उपयोगी वस्तुआ देर जनमानस और जीव जंतुआ रो भरण पोषण करे। मानव जन्म सुई पर्यावरण रे महत्व तत्व सु जुड़ियो रहो है। रूख पौधा पशु पंखी नदी नाला फल फूल हवा पानी मेह जंगल पहाड़ भूकंप अकाल तूफान डांफर लुआ आदि प्राकृतिक तत्व री जानकारी राखे। पर्यावरण रे प्रति जागरूक रहन सारू आपरो धर्म संस्कृति पुराणा साहित्यकार कव्या आदि प्रकृति रे प्रति हे जगाण रो महत्व काम करियो है। पर्यावरण दो शब्द परी और आवरण सु मिल बनियो है। परीर अर्थ हुए सगले कानी और आवरण अर्थ है घेरो अर्थात जिको आपने चारा कानी सु घेर राख्यो है वही पर्यावरण है। परी संस्कृत भाषा उपसर्ग है जिन अर्थ हुए चारा कानी कन्ने निकट आद। आवरण शब्द संस्कृत भाषा रो पुलिंग शब्द है जिनरो मतलब हुए पर्दो ढक्कन आघात रोकण वाली वस्तु ढाल कवच आसु है। इनी भात पर्यावरण शब्द अर्थ हुए चारा कानी सु ढक्योड़ो चारा कानी पर्दो आउन आले घातक पदार्थों ने रोकणो अबखाए सु बचावणो आद इन परिभाषा सु लागे के पर्यावरण आपारो रक्षक है हेतालु है साथी है संयोगी है पण आपा आपरो रक्षक नहीं बचक बना लियो है। बाड़ी खेत ने खाउन आली बात होगी। मिनक मानवता सभ्यता रे उदय होने सागे ही मिनक विकास अंधी दौड़न लागियो और आपरी अनंत लालसाओं रे कारण विज्ञान खगोलीय जिनसा ज्या चांद तारा ने आम आदमी रे कने लाए राख दी पण विकसावरी इन दौड़ माय पर्यावरण रे संतुलन री अनदेखी कर दी। इनसु ग्लोबल वार्मिंग जेडी लूंठी अबखाया अपारे आप विकराल रूप धारण कर लियो है। ग्लोबल वार्मिंग सु ग्लेशियर री बर्फ पिघलन लागी इनसु सागरा समुद्र रो पानी बढ़न लागियो। वैज्ञानिका री माना तो अगर इनी भांत समुद्र रो पानी बढ़तो गयो तो वो दिन दूर नहीं है कि समुद्र रे कने बछोड़ा शहर और देशा रो नाम निशान मिट जासी। जद के उल्टो हुए जठे मानव जाति रो विकसाव हुए उन क्षेत्र रे कने री नदिया रो पानी कम होनो चाहिए जितो आवन वाले वर्षा में पीवन रे पानी री घनी लूठी अब खाया देश रे सामी आवन वाली है। आखो मान खो पानी री बूंद बूंद खातर बिलखतो रेवेला। प्रकृति रो आप शोषण करा और जिन चीज रो आप शोषण करा उन्हें जड़ा मूल से उखाड़ फेंक देवा। आपारी परंपरा संस्कृति और धर्म में हमेशा पर्यावरण री पूजा करी जावे। पर्यावरण री चीजा ने देवता रूप मानी इन कारण लीलो रूख काटनो पाप माना जगतरा पहला। पर्यावरणविद गुरु जाम्बो जी मानव जीवन रे संतुलन राखण सारू वर्षा पहला पर्यावरण रे प्रति आपरी शब्द बाणी सु जन मानस ने सावचेत करिया। विष्णु धर्म की स्थापना रे सागे 29 धर्म नियम बनाया। उन माय पर्यावरण की रक्षा मूल मंत्र है।
एंड वहाँ जाम्बोजी धर्म ने पर्यावरण

सू जोड़ मानव जाति सारू महत्व कार्य करियो। आरा विचार फगत समाज सुधार खातर नहीं ही बल्कि युगांतरकारी क्रांतिकारी हा। आज पर्यावरण की रक्षा आखे जगत री लूठी अब खई है, बटे जांबोजी रा सदुपयोग री पालना करनी घनी जरूरी है। जांबोजी रे 29 धर्म नियमा माए लीलो रूख नी काटनो और जीव हत्या नी करनो पाप नी करनो धर्म नियम है, अर्थात जीवा पर दया करनी चाहिए। जिन बात मिनखा ने आपरिया प्राण प्यारा है उन्हीं बात पशु पंखी जीव जंतु आद सैंक जीवा ने ही आपरा प्राण प्यारा है। हरित वर्षा नो स्वच्छ देता अर्थात लीलो रूख नी काटनो चाहिए, क्योंकि आरे माया ही जीवात्मा बसे। गुरु जांबोजी आपरे उपदेश समय कहो है कि जीव दया पालनी रूख लीलो नी धावे, अर्थात जीव पर दया करनो और लीले रूखा ने नीक बाढ़नो। प्रकृति में पर्यावरण संतुलन ने बनाए राखण सारू जैविक घटका प्राणी और वनस्पतियां रो घणो महत्व है। प्रकृति रे सागे मानव रो गहरो सकपन रहो है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति ने देवता रूप माना, पंचभूतांसु बढ़िया थका है आरो प्रभाव प्रकृति रे कण कण माए विराजमान है। भक्ति और विश्वास से सागे प्रकृति संरक्षण री भावना जागृत हुए। प्रकृति री हर एक चीज ज्या पेड़ पशु पंखी नदी तालाब पहाड़ सागर आदि ने भगवान मानर प्रार्थना और पूजा जोग बना दिया है। अपारे दिन की शुरुआत सूर्य आराधना से शुरू हुए, जिको जगत रे जीवन रो आधार है। नदियां ने माता और हिमालय ने वना ने शिवरी जटावा मानर पूजा करी जावे। गोवर्धन पर्वत ने पूजी फेरी निकाली जावे और घर बना सू पहला भूमि पूजन करियो जावे। तुलसी रे पौधे री पूजा करा और उन रा पता तोड़न सू पहला माफी मांगा क्षमा मांगा। पीपल खेजड़ी समुन्द्र तालाब नदियां रे घाटा री पूजा कर फेरी देवा खेजड़ी ने तो राजस्थान रो कल्प वृक्ष कहो जावे। इनी बात जीव जंतुआ ने ई घणो महत्व दियो है। गणेश जी री सवारी ऊंदरो महादेव जी री सवारी बैल दुर्गा माता री सिंह शीतला माता रो गधो और सरस्वती माता री सवारी हंस कार्तिक जी री सवारी मोर लक्ष्मी जी रो उल्लू आदि है। इनी बात पेड़ पौधा पशु पंखी जीव जंतु आदि ने धर्म सु जोड़िया गया है। इनसु आरो संरक्षण संभव हुए। पुराना माय कहो है कि जिको ही मिनख रूख लगावे वो स्वर्ग में जावे और जिको नी लगावे वो नरक में जावे। इनी बात वेदा में धर्म और पर्यावरण रे गहरे सकपन री वैज्ञानिक व्याख्या मिले। ऋग वेद माय रूखा रे महत्व ने बताव थका कहो है कि मूल तो ब्रह्मा रूपाय मध्य तो विष्णु रूपाय अग्रत शिव रूपाय वर्ष राजाय ते नमः। ऋग वेद माय कहे कि जिन रूख रे मूल में ब्रह्मा रो वास है तने में विष्णु रो वास है और आगे शिव बसे उन रूखराज ने निमन करूं। बड़ रे रूख माय वासुदेव पीपल माय विष्णु और आकड़े माय महादेव रो वासो मान्यो है। श्रीमद भागवत गीता में पीपल की महता बताई है कि पीपल रूख लगोलग जीवनदायिनी हवा ऑक्सीजन देवतो रहे जिको सैंग जीव जंतुआ रहे जीवन सारू घणो जरूरी है। पीपल रे महत्व ने ध्यान माय राखता थका आपारी माँ बहना पीपल ने पूती हरजस गावे। पीपल पूजन मैं गई कुल अपने री लाज पीपल पूजा हर मिलियो एक पंथ दो काज। इन संबंध में कहावत चावी है गांव गांव खेचड़ी गांव गांव गोगो। रूखार पहाड़ा रे सागे सागे समुद्र तालाब नदियां रे घाटा री पूजा रे सागे फेरी देवनी परंपरा अपारे धर्म माय है। इनी बात जीव जंतुआ ने घणो महत्व दियो है। ज्या गणेश जी सवारी ऊंदरो शिजु सवारी बैल दुर्गा जी सवारी शेर शीतला माता सवारी रासब सरस्वती जी री सवारी हंस लक्ष्मी जी सवारी उल्लू कार्तिक जी मोर आद है। इन बात महत्व गुणा वाले रूखा ने पशु पंखियां आद ने धर्म सु जोड़िया है। वन्य जीवा रे सागे हेत और आदर भाव भारतीय संस्कृति री ओळखाण है। अरे सेंग जल रे साधना री पूजा करी जावे। गंगा ने माँ कहवा हिंदू देवी देवता री मूर्तियां और चित्रा रे सागे वन्य जीवा ने देखावणो वन्य जीवा रे सागे हेत रा भाव प्रकट हुए। ए सेंग बातां बतावे के आपा ने वन्य जीवा री प्राणिया री रक्षा करनी चाहिए जिनसु आपारो पर्यावरण संतुलन बनियो रहे इनसु इनो संरक्षण संभव है। भारतीय पुराण इतिहास और दर्शन रो सृजन वर्णा रे निर्मल वातावरण माय हुयो है। पर्यावरण की रक्षा सारू जैव विविधता रो घणो महत्व है। भगत मिनख ही नहीं बल्कि सैंग जीव जंतुआ रो प्रकृति माथे एक जिसो अधिकार है। सैंग मानव और जीव जंतुआ री जरूरता री पूर्ति प्रकृति करे। इन खातर सैंग रो संतुलन होन खातर पानी हवा पशु पंखी पेड़ पौधा नदी नाला पहाड़ तालाब आदि होनो घणो जरूरी है। प्रकृति और मानव रो संबंध शाश्वत सनातन है। एक रे बिना दूजे री कल्पना नहीं करी जा सके। आ दोनों रे बिचाले लेणो देणो चाल तो रहे। अगर इन लेणो देने माए कमी आ जावे तो इन रो परिणाम सर्वनाश है। आजरी हालत इन जीव तो जागतो

0: दस्तावेज है, सांस सारू लोग तड़फ तड़फ मर रहा है क्योंकि आपा प्रकृति सुभगत लियो है दियो लोटो भर पानी कोनी और दियो कोनी तो लेवड़ो अधिकार ही आपा ने कोनी प्रकृति ने जी कोई देवे प्रकृति उनने चार गुना पाछो देवे।
1: सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुनी वार्ता धर्म और संस्कृति पर्यावरण संरक्षण रो आधार। इस विषय पर वार्ताकार थे डॉ. गौरीशंकर प्रजापत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं एक सहगान।

अभी आपने सुना एक सहगान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपने सुना एक प्यारा सा गांव और पीपल की छांव। ये थे नीना राजेंद्र मेहता और सुदर्शन फाकिर। लिखा था इसे सुदर्शन फाकिर ने और संगीत राजन भूरे का था। लीजिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सुनते हैं चित्रा सिंह और जगजीत सिंह को, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राज्य में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में आज अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों के सर्वे का कल अंतिम दिन। प्रदेश में पिछले ढाई वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के ओटीएस में भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित समारोह में इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त मौजूद रहेंगे। भारत टैक्सी सेवा देश की पहली सहकारिता आधारित डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सेवा है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से

0: संचालित किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश शासन सचिवालय में बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्य सचिव ने वर्ष 2024-25 और 25-26 की लंबित घोषणाओं के कार्य में तेजी लाने और वर्ष 2026-27 की घोषणाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने को कहा। उन्होंने भूमि आवंटन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने, अगले 3 महीने में सभी बजट घोषणाओं के वर्क ऑर्डर जारी करने और 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बजट घोषणाओं की प्रगति नियमित रूप से CMIS पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने OBC परिवारों के सर्वे की अवधि कल तक बढ़ा दी है। आयोग के सलाहकार अशोक कुमार जैन ने बताया कि कई जिलों में सर्वे का काम अभी बाकी है। इसे देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को कल तक सर्वे पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद सर्वे की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आयोग को अपनी अनुशंसा रिपोर्ट निर्धारित समय पर राज्य सरकार को सौंपनी है। राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जा रहे इस सर्वे के आंकड़ों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित अनुशंसाएं तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। नेशनल परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी और कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये अपने पहले 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र और वंचित लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया है। उन्होंने यह बात जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के बाद इन परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि गिव अप अभियान के माध्यम से रिक्त हुए स्थानों पर पात्र परिवारों को जोड़ा गया है, ताकि कोई भी जरूरतमंद खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित ना रहे।
2: सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने का जो अभियान चलाया गया था, उसी से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में भी हमें इस तरह का अभियान चलाना चाहिए, और वो अभियान हमने शुरू किया 1 नवंबर 2024 को। और मुझे बताते बड़ी प्रसन्नता है कि उस अभियान के तहत आज दिनांक तक 93 लाख लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से बाहर हुए, 67 लाख लोगों द्वारा गिवअप किया गया और 27 लाख लोगों द्वारा गिवअप अभियान के तहत जो उसमें था कि EKYC अंगूठा लगाना जरूरी है, तो बहुत से लोगों द्वारा कि उन्हें पता था कि हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, EKYC नहीं करेंगे, तो अपने

0: राष्ट्रीयता से बाहर हो रहे हैं वो इस तरह 27 लाख लोग वैसे, तो कुल मिला के 93 लाख लोगों द्वारा स्वेच्छा से गिरफ्त किया गया।
1: राज्य पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तीसरे सप्ताह में 41,923 महिला श्रमिकों और 7,834 बुजुर्ग महिलाओं से सीधा संवाद किया गया है। पुलिस टीमों ने कच्ची बस्तियों, कारखानों, निर्माण स्थलों, ईंट भट्टों और प्रवासी बस्तियों में पहुंचकर महिलाओं को सुरक्षा, उनके अधिकार और साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी। अकेले रह रही बुजुर्ग महिलाओं और दंपतियों के घर जाकर उनकी समस्याएं भी सुनी गई। राज्य पुलिस ने आपात स्थिति में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 पर संपर्क करने की अपील की है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि जिन अस्पतालों में प्रसव होते हैं वहां के स्त्री रोग विशेषज्ञों को मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों का मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए अगले 5 दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में सभी 108 एम्बुलेंस में प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के प्रबंधन के लिए एंटी शॉक NASG गारमेंट उपलब्ध कराने और पैरामेडिकल कर्मियों को इसका प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निदेशालय स्तर पर कैंसर सेल गठित करने, कैंसर स्क्रीनिंग वैन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अगले 4 दिन के मानसून सक्रिय रहने और कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश जबकि कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से प्रभाव से ये स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर सहित करीब 20 शहरों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई। माउंट आबू में सबसे अधिक 195 मिलीमीटर और पाली में करीब 4 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई। बीकानेर जिले के लूणकरणसर में कंवरसेन नहर का चैनल टूटने से करीब 300 बीघा में खड़ी मूंगफली और कपास की फसल प्रभावित हुई है। बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कारगिल विजय की 27वीं वर्षगांठ पर राज्य सैनिक बोर्ड आज जयपुर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजन का सम्मान करेगा। ये समारोह बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम में सप्तशक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा मुख्य अतिथि होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में आज भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे का कल अंतिम दिन। प्रदेश में पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया। और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं ममता चोपड़ा।
4: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत आपका।
5: थैंक यू मैम। थैंक यू।
4: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
5: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले

0: इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
1: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही है, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में है। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आप देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना ड्रिबल करना शुरू किया होगा।
0: जी,
1: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं।
0: जी, मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहां पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गांव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहां जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है, मैं, पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
1: अच्छा
0: जी, फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट। तो वहां पे मैं सेकंड आई थी, गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
1: गवर्नमेंट होती है ना।
0: जी, डिसिप्लिन्ड एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया, वो माइंड में था। तो काफी रोती थी, हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर।
1: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
0: 13 साल की थी।
1: अच्छा जी, तो 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
0: अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया, इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूं और घर वापस चली जाऊं। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था खाना। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप लेके जाओ। तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा मंडे को तू वापस जा रही है। मैंने बोला नहीं, मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ। तो बोले कि नहीं बेटा, अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी। उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं बोल। तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को दे के आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे 2 गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में 2 ही किट आती है, या तो आपको
1: एक साल। आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना?
0: जी, मेरे पापा जॉब करते थे बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी, और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी। काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहां पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया।
1: आपने काफी गोल बचाए।
0: जी, तो वहां जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है। तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है मुझे।
1: लेकिन आपने जो शुरुआत की, जब उसके बाद आप साई एकेडमी गए, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना, उस पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान

0: मैं गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
1: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया। तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया। आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे, सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मैं भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादा जी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है, और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, और बट वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा।
0: अच्छा?
1: मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
0: क्या बात।
1: और आज वो हमारे साथ नहीं है, बट वो चीज सच हुई। एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी। क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
0: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
1: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था, और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। 1980 में बुलाया था, बट वो एक इन्विटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है, बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली। तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है, और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है। तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की और कोचेज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। अच्छा। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करें। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया

0: साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे, बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद
1: हम साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं,
0: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था, तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई और एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है, और लास्ट क्वार्टर में उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, और मेरे साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
1: आपके जैसे खिलाड़ी है जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी है अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
0: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए, तो ऑफकोर्स कैप्टन इज ए
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ, और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गाँव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है, और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस, कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है,
1: ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है, बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है, मैं उस दिन का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आपके प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे, मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था, क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे 2 सवारी और बैठ जाएंगे, मेरा गला भराया था, मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ, तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है, तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी, और 250 मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी, और मैंने कहा नहीं 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ, मैंने कहा नहीं, तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर छत पे रख दो, मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो, तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे ऐसे हुआ, तो पापा ने बोला कि बेटा आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना, और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी, तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए, तो ये टाइम थे जहां पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही
0: जी
1: लगी। ये जो आपने लोगों की बात की, लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे

0: तो ये चीजें बाद में जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
1: तो
0: कि
1: क्या बोलते थे मम्मा, क्या बताते थे?
0: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहाँ। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
1: आपके मम्मा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हैं। आई एम श्योर बहुत से ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही हैं। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती है आप?
0: पब्लिक स्पीकिंग।
1: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
0: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
1: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती?
0: पापा का सपना था क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
1: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
0: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
1: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
0: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
1: अच्छा
0: जी,
1: खाने को ना करना आसान है?
0: हाँ, मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
1: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
0: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
1: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
0: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजीशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर के हटकर तो क्या होगी?
0: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
1: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं। उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पर उतरेंगी जो आप गोल बचाती आई हैं वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है वही आगे भी लगातार जारी रहे, हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम डीडी न्यूज के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी पॉडकास्ट पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी का 34वां संस्करण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म उपकार से ये देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रीता गांगुली का की राग भैरवी में गाई ठुमरी। गीत के बोल है भय सांवरिया ने जादू डारा। तो सुनते हैं रीता गांगुली की राग भैरवी में गाई ठुमरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाई रीता गांगुली की राग भैरवी में गाई ठुमरी। गीत के बोल थे सांवरिया ने जादू डारा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए, आप सुनते हैं अरुण बख्शी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये बेहतरीन गीत। आवाज़ें हैं साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की। जी हाँ, फिल्म का नाम आप पहचान चुके होंगे, त्रिदेव।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: संगीत के कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं अनु मलिक के संगीत में अगला गीत। लिखा है रानी मलिक ने, आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं अब सुनते हैं फिल्म यारा दिलदारा का ये गीत, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के स्वर में है। लिखा है इसे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत जतिन ललित का है, बल्कि जतिन ललित का ये फिल्मी सफरनामे का पहला गीत है।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की, लिखा है इसे कातिल शाजाई ने, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है सर।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

लीजिए आप सुनते हैं फिर तेरी कहानी याद आई। इस फिल्म से अगला गीत कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में, अनु मलिक का है संगीत और लिखा है से कैफी आजमी ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म साया से कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर हैं और लिखा है इस गीत को आनंद बख्शी ने, संगीत MM क्रीम का है।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं नादा पौडवाल कुमार शानू को। फिल्म का नाम है सड़क, संगीत है नदीम श्रवण का और लिखा है इसे समीर ने।

फिल्म सड़क के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे फोन इन पर हमारा खास कार्यक्रम हेलो बीकानेर, और आज की सूत्रधार है श्रीमती प्रतिमा तिवारी, प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने। तो सुनते हैं हेलो बीकानेर।

0: हेलो बीकानेर, कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, इस जीवन की उतार चढ़ाव रूपी नैया में हम सभी सवार हैं और ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते रहते हैं और इससे जुड़ी हुई चिंताएं भी हमारे जीवन में रहती हैं। और चिंताएं तो श्रोताओं, चाहे संत हो या संसारी, दोनों के मन में ही होती हैं। यानी कि हम जो हैं वो अपने स्वार्थों से जुड़ी हुई चिंताओं से घिरे हुए रहते हैं। दोनों में कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है। हमें भी क्रोध आता है, संतों को भी क्रोध आता है। हम भी लोभ करते हैं, संतों में भी लोभ देखने को मिल जाता है। लेकिन दोनों में समानता होने के बावजूद भी एक दूसरे के भाव जो है वो बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यदि अपने जीवन में संग्रह है, लोभ है, पर हमने अपने द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति का उपयोग दान में, पुण्य में लगाया, परहित में, परोपकार में लगाया, तो ये दान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशियों को देखना, इन्हीं सब संसारी चीजों को देखते हुए अगर हम ये सब काम करते हैं तो इस संसार में रहते हुए और संसारी दिखते हुए भी कहीं न कहीं हमारे अंदर संतों वाले गुण आते ही आते हैं। अपने इन विचारों में आप देखेंगे कि हम जब दूसरों की सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सा सुकून आता है और यही सुकून हमें इंसान बनाता है, स्वार्थ से ऊपर उठाता है, हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है। और इसी सुधार के चलते हुए श्रोताओं, हम कहते हैं कि आम इंसान जो है अगर अपने अंदर सुधार लेकर के आ जाता है और हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करता है, तो फिर जीवन में जीने का आनंद ही अलग हो जाता है। और इसी आनंद को श्रोताओं बनाए रखने के लिए आप और हम नित नए प्रयास करते हैं कि हम अपने कार्यक्रमों में अच्छे अच्छे लोगों से बात करें, अच्छे अच्छे संदेश ग्रहण करें और आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, जन जन का है, क्योंकि ये आकाशवाणी जन जन की वाणी है। तो आइए देखते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में कौन कौन जुड़ता है और बनता है हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम का साथी। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश। जी
0: जी संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी मैम, बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत ही प्यारा सा आकाशवाणी केंद्र होता है बीकानेर, जिसकी प्रस्तुति बहुत ही खास और आपकी आवाज होती है मैडम बहुत ही लाजवाब होती है।
0: धन्यवाद संतोष जी, ये आप जैसे श्रोताओं का ही बड़प्पन है जो आकाशवाणी बीकानेर के सभी जो कार्यक्रम देने वाले लोग हैं उनकी हौसला अफजाई आप लोग करते हैं और हमारा कार्यक्रम देखिए इतना अच्छा बन जाता है।
1: जी बिल्कुल,

0: शब्दों का जो चयन होता है बहुत ही स्पष्ट और सटीक होता है, क्योंकि जो शब्दों का चयन करवाता है आकाशवाणी, इसमें इतनी शानदार शब्दों का चयन करवा पाते हैं, क्योंकि छोटे लोग भी सुनते हैं, बड़े लोग भी सुनते हैं, खास करके जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग भी रेडियो का प्रसारण सुनते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रम को सुनना जिसमें हमारे शब्दों को आनंदमय बना पाते हैं हमारे शब्द ही।
1: जी हाँ, एक बार मुझे कार्यक्रम में याद है एक हमारे श्रोता थे, वो ये कह रहे थे कि हमने जो बोलना सीखा है, मेरे बच्चों ने जो उच्चारण करना सीखा है वो आकाशवाणी के शब्दों के माध्यम से ही करना सीखा है।
0: बिल्कुल, सुबह का जो कार्यक्रम आता है, भक्तिमय गीत होते हैं, रामचरितमानस के जो पाठ होते हैं वो सुबह के सभा में प्रसारित किए जाते हैं, जो अपने आप में खास होते हैं, और जो रामचरितमानस के पाठ जो कोई सुन लेता है उसमें शब्दों का चयन, उसमें पूरा वर्णन हो ही जाता है।
1: बहुत बहुत बहुत खूब आपका संतोष जी, आपका आपने जो इतने अच्छे तरीके से वर्णन करा ये बहुत अच्छी बात है संतोष जी। तो संतोष जी क्या काम करते हैं आप मध्य प्रदेश में?
0: जी मैं तो कृषि कार्य से जुड़ा हूँ, साथ में आकाशवाणी पर वार्ता करता हूँ। मेरे यहाँ पे एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी स्टूडियो शेड्यूल मौजूद है, जहाँ पे मैं किसान वाणी कार्यक्रम के लिए अपनी वार्ता रख पाता हूँ। मैडम जी
1: बहुत अच्छी बात, लेकिन वैसे भी आप आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे श्रोताओं के माध्यम से ये कार्यक्रम लोगों तक पहुँचता है, जन जन की वाणी बन जाता है आकाशवाणी।
0: जी मैम, खास करके जो हमारे ग्राम सभा में किसान वाणी कार्यक्रम के लिए जो हमारे किसान भाई होते हैं जो अपनी मेहनत को लगन बनाते हैं, और इस समय तो क्या होता है जो बारिश का सीजन होता है, अपनी खरीफ की फसलों के लिए जाना जाता है, तो लोगों में खासा उत्साह होता है, परिश्रम करते हैं लेकिन रेडियो का प्रसारण लगातार सुनते हैं, तो उनके लिए जो कार्यक्रमों का प्रसारण होता है रेडियो के जरिए, जो दिया जाता है जानकारी वो उन तक सीधे सीधे पहुंच पाता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फोन इन कार्यक्रम में तो भाग नहीं ले पाते, लेकिन जो कार्यक्रमों को सुनते हैं तो उन तक ये कार्यक्रम पहुंचता, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण, क्योंकि आकाशवाणी में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण हो पाता है।
1: जी बहुत शुक्रिया संतोष जी। बताएं मौसम का क्या हाल है वहाँ के?
0: एमपी में लगातार बारिश हो रही है, और रिमझिम बारिश की फुहार इस समय पड़ रही है मैडम। अच्छा? लगातार 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है, और अच्छा, बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ सुहावना बन चुका है।
1: चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में जो है वो मानसून का आगमन हो गया, राजस्थान अभी थोड़ा सूखा है।
0: जी बिल्कुल मैम, इस समय क्या हो ना लेट मानसून पहुंचा है, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा लेट पहुंचा है, लेकिन फिर भी बारिश जैसे मध्य प्रदेश पर पहुंची है उस प्रकार से राजस्थान पर भी मौसम मेहरबान होगा, और जमकर बारिश वहां पे भी मेघ बरस पाएंगी।
1: जी उम्मीद करते हैं कि आपने जो प्रार्थना की है वो स्वीकार हो और जल्दी से राजस्थान में भी बारिश हो जाए।
0: मैम
1: जी संतोष जी बताए आप गीत कौन सा सुनना चाहते हैं?
0: मैडम बहुत ही प्यारा सा गाना है, मूवी का नाम रहेगा आहुति, इसमें बहुत ही प्यारा सा गाना है, नौकरी 100 की 1000 की कीमत नहीं होती प्यार की, प्यार अनमोल है ये दो मीठा बोल है, मीठी मीठी बातें यार की, ऐसा करके सॉन्ग है।
1: वाह आपने तो गा के भी सुना दिया। चलिए अब आप सुनते हैं ओरिजिनल आवाज में, किशोरदा की आवाज में ये गाना है आहुति फिल्म का।
0: जी बहुत बड़ा आभार आपका, नमस्कार।
1: नमस्कार संतोष जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं मंसूर अली बोल रहा हूँ, राजस्थान जिला बीकानेर गंगा शहर से। आकाश में डोलमार पूरी टीम को और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: मंसूर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और नमस्कार के साथ बात आगे शुरू करते हैं कि बताइए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ कि संदेश ये पहुँचा रहा हूँ, जब भी हम खाना खाएं तो सुपाच्य हो और पौष्टिक हो, खाना ताजा हो, ठीक है, और जितना हो सके फास्ट फूड ना हो थाली के अंदर।
0: हाँ,
1: जी, और क्योंकि देखिए मौसम के मुताबिक भी खाना होना चाहिए।
0: हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मौसम देखिए, अभी ये बारिश का जो है हल्का सा शुरू हो रहा है,
1: स्टार्ट हो चुका है।
0: हाँ, ऐसे में जो है वो जितना सुपाच्य भोजन होगा, हल्का होगा, तो हमारे पाचन क्रिया जो है वो बिल्कुल सही रहेगी, और हम कहीं भी बदहजमी या पेट की जो गड़बड़ हो जाती है उन सभी से बचे रहेंगे,
1: हम स्वस्थ रहेंगे और अपनों का ख्याल भी रख सकेंगे।
0: जी बिल्कुल। और अपने तो देखिए, अपनों की तो बात ही क्या करें कि अपनों के बिना कोई जिंदगी नहीं है, है ना। हम जैसे ही काम पर होते हैं तो हमें अपना घर दिखाई देता है कि घर में परिवार है, उन सभी के संग पास जाना,
1: परिवार के जो भी सदस्य होते हैं या हमारे आसपास के जो भी रहने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो उनका भी हमें ख्याल रखना रहता है।
0: हाँ, और मंसूर जी, सबसे खास बात यह कि ऐसा नहीं है कि हम अब ये कहें कि हमारे जो खून के रिश्ते हैं वही हमारे लिए अपने हैं। कई बार कुछ ऐसे अनजान रिश्ते भी बन जाते हैं जो इतने खास हो जाते हैं, अपने हो जाते हैं, कि उनके बिना फिर हमारा गुजारा नहीं होता।
1: नहीं हो सकता,
0: नहीं, बिल्कुल।
1: मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ।
0: जी कहिए।
1: ऐ खुदा मुझे तेरा एक एहसान चाहिए, ऐ खुदा मुझे तेरा एक एहसान चाहिए, अपनों के चेहरे पर सदा मुस्कान चाहिए।
0: बहुत खूब बात है कि अपने अगर मुस्कुराते रहेंगे तो हम खुद ही मुस्कुराएंगे, है ना जी। बहुत अच्छा संदेश मंसूर जी आपका, और आपके माध्यम से आकाशवाणी बीकानेर के सारे श्रोताओं तक पहुंचेगा। जहां जहां तक ये कार्यक्रम सुना जा रहा है वहां वहां तक ये संदेश पहुंचेगा और मंसूर जी का नाम रोशन होगा।
1: जी,
0: बताएं, अब गीत बता दें कौन सा सुनना चाहते हैं।
1: मैं अपने फिल्म के टाइटल होंगे जिसे गाया सोनू निगम, जीएस गांधी और जस्टिंदर नरोला ने, संगीत है इनमें से सुनिया का
0: जी,
1: और गीत को लिखा है समीर ने।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही जैसी आपने बात की वैसा ही आपने गीत सुन लिया, है ना।
1: गीत सुनवाने के लिए जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया मंसूर जी।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं हमारे फ़ोन नंबर हैं 0151-2528-041 और 0151-2528-042। ये दोनों ही लाइन हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हैं, तो आप भी मिलाइए एक फ़ोन और जुड़िए हमारे कार्यक्रम हेलो बीकानेर से। आइए देखते हैं अगले साथी हमारे कौन जुड़े हैं। हेलो
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राधेश्याम कटारिया श्री कर्णपुर जिला श्री गंगानगर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी राधेश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैडम।
0: जी राधेश्याम जी, बताएं राधेश्याम जी क्या मौसम है, क्या बारिश है, कैसा आलम है?
1: कल बारिश हुई है मैडम, मौसम सुहाना हो गया है
0: जी,
1: दिल खुश हो गया कल।
0: हाँ,
1: भी खुश है, हम भी खुश है, पब्लिक भी खुश है जी।
0: सही बात है सर, कि इतने लंबे समय से इंतजार चल रहा था जो बारिश का, वो थोड़ा सा, हाँ उस पे थोड़ा सा विराम लगा है। हालांकि इतनी सी बारिश से काम तो नहीं चलने वाला है, आगे और भी बारिश अच्छी हो तभी बात बनेगी।
1: आस पे तो दुनिया बैठी है जी, आस तो लगाएंगे बरसात अच्छी हो।
0: और सबसे ज्यादा आस उन किसानों को है जो बीज अपने डाल के जमीन में बैठे हैं, अंकुरित होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत होती है कि वो खेती बाड़ी पर ही निर्भर होते हैं, और ऐसे में अगर बारिश समय पर ना हो तो उनकी किसानी खेती खराब हो जाती है।
1: हाँ जी मैडम, उनका जो किया कराया होता है वो भी पानी फिर जाता है।
0: पानी फिर जाता है, पानी वैसे तो नहीं फिरता बारिश के माध्यम से, लेकिन वैसे पानी फिर जाता है।
1: हाँ वैसे मैंने उसे पानी फिर जाता उनकी ना।
0: जी बिल्कुल, बहुत मेहनत सर, आप समझ सकते हैं, आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि कितनी मेहनत होती है खेती बाड़ी करने में।
1: हाँ जी मेहनत तो बहुत होती है मैडम,
0: बहुत मेहनत होती है, और मेहनत
1: दिन में और रात में वो चले लगे रहते हैं,
0: लगे रहते हैं, और मेहनत का फल न मिले तो देखिए कितना बुरा लगता है।
1: हाँ जी मैडम,
0: है ना, कई बार हम सुनते हैं सर्दियों का मौसम होता है और रात के समय में उनकी पानी की बारी आती है, तो
1: मैडम एक बार है अपने को भी रात को 2 बजे अपने रिश्तेदार को स्टेशन ले जा रहे, वो भी अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाती है।
0: बिल्कुल, जो कि कभी बरसों में एक दो बार होता है।
1: हाँ जी,
0: है ना,
1: किसान तो बेचारे रात को और दिन में मेहनत पूरी करते ही करते
0: पूरी
1: हैं।
0: मेहनत करते हैं, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं राधेश्याम जी कि भाई अच्छी बरसात हो और खूब धन धान्य से हमारी धरती भरी रहे और किसानों के जीवन में हरियाली और खुशहाली दोनों आए।
1: जी मैडम।
0: जी जी राधेश्याम जी, अब बताएं गीत कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है प्रेमनगर है मैडम
0: जी।
1: ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया,
0: तो यानी कि जब बरसात हुई तो आपको ये गाना याद आ गया।
1: जी
0: जी राधेश्याम जी, चलिए बहुत अच्छा सा गीत है, आप और हम सभी मिलकर के सुनते हैं, और आपने हमें फोन किया इसके लिए बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो,
1: हरी ओम साहब, नमस्कार।
0: नमस्कार। परिचय दे दें अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूँ कमला कॉलोनी से, सुभाष छत्री जयदू के 11 से 5 बोर्ड ही रहते हैं, पर समय आपके लिए निकालते हैं इस
0: अरे वाह
1: प्रोग्राम,
0: सर,
1: क्योंकि
0: बहुत बहुत
1: आपसे
0: बहुत
1: हमारा लगाव है
0: जी,
1: इसलिए।
0: बहुत शुक्रिया सर। ये आकाशवाणी की महिमा है, देखिए इतने पुराने श्रोता, दिग्गज श्रोता हम लोगों से जुड़े हुए हैं और वो समय निकालते हैं सुनने के लिए, जुड़ने के लिए। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है सर।
1: मैं तो इसलिए प्रोग्राम में हिस्सा लेता हूँ कि उस ज्ञान की बातें श्रोताओं को सुनाऊं, ताकि क्या है कि घर बैठे उनको ज्ञान मिले।
0: सही कह रहे हैं सर। तो आज का ज्ञान शुरू होता है सुभाष जी के माध्यम से।
1: मैं ये कहता हूँ, इस संसार में 4 प्रकार के लोग देखे गए। पहले
0: जी
1: ये है कि तरन तारन, यानी खुद भजन करके, पाठ पूजा करके समाज को भी तारते हैं, खुद को भी तारते हैं, दूसरों को भी तारने की प्रेरणा देते हैं कि इस
0: जी
1: ढंग से जीना चाहिए। दूसरे प्रकार के लोग है केवल तारण, खुद भजन करेंगे, जंगलों
0: हाँ
1: में जाके पहाड़ पूजा करेंगे, भगवान को याद करेंगे। तीसरे ऐसे कि खुद तो क्या है, गलत काम में फंसे रहेंगे और दूसरों को उपदेश दे के उनको तारेंगे, केवल तारण। और चौथे प्रकार के ना तो खुद तारेंगे ना दूसरों को तारेंगे,
0: जी
1: ना तो खुद डूबेंगे दूसरों को डुबाएंगे।
0: डुबाएंगे।
1: तो
0: हाँ
1: मेरा कहने मतलब, पहला जो मैंने बताया है, पहला चरण
0: हाँ
1: वो इस्तेमाल करना चाहिए, खुद को भी तारो दूसरों को
0: सही
1: भी तारने।
0: सर। और ये
1: आदमी को
0: देखिए
1: हमेशा क्या है, प्रेम से रहो, आए हो कुछ दिन के लिए, ये तो है नहीं, जिंदगी भर जीना है। प्रेम
0: जी जी
1: से रहो, शांति से रहो, अपना काम करो, कर्म करो, लेकिन सुख क्या मिलता है, पिछले कर्म में अगर पिछले जन्म में आपने कुछ किया है,
0: जी
1: उसका फल अभी भी मिलेगा, और
0: जी
1: आज यह है तो आज भी मिलेगा और आने वाले भी मिलेगा। तो
0: जी सही सर।
1: अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे गुणगान करो, भगवान का काम करो, कथा सुनो।
0: नहीं
1: आज
0: सही
1: अगर घर में नौकर नौकरानी है तो भी क्या फुर्सत,
0: अभी भी हैं। अब वो ये सर, धीरे धीरे वो इंसान जो है वो
1: नहीं
0: नया
1: तो
0: युग चल
1: काम नहीं
0: रहा है,
1: करेंगे तो बीमार पड़ेंगे। आप
0: तो देख
1: बैठे
0: ही
1: रहो
0: रहे हैं
1: घर
0: सर
1: पे,
0: हम,
1: कोई काम नहीं करोगे, जब तक हाथ पैर नहीं लाओगे तो कैसे होगा।
0: कैसे होगा। देख ही रहे हैं सर हॉस्पिटल में किस तादाद में लोग हैं, दिन पे दिन संख्या बढ़ती जा रही है। कोई भी नया
1: बिल्कुल
0: हॉस्पिटल खुलता है वो भरा हुआ ही होता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वही
1: एक बेड खाली हुआ दूसरा आ गया।
0: बिल्कुल, लाइन लगी हुई है सर हॉस्पिटल्स में, तो आप देखिए। और यही कारण
1: इसका
0: है कि
1: कारण यही है कि मेहनत नहीं करते।
0: और दूसरी चीज, खान पान हमारा बहुत बिगड़ गया है।
1: बिल्कुल, खान पान तो ऐसा हो गया है कि अब पूछो नहीं, बच्चे क्या है होटलों में खाते हैं, घर पे खाने को नहीं दो तो वहां जाके खाएंगे,
0: बच्चे बड़े सर
1: गंदी
0: सब एक
1: चीजें
0: ही समान
1: खाएंगे।
0: है। बिल्कुल सही, बिल्कुल
1: गलत है ना ये, पिज्जा
0: हाँ। और ऐसे मौसम में जब
1: ये
0: ये मानसून वाला जो मौसम आता है, जहाँ पे पानी जो है वो, खासकर पानी की जो है वो शुद्धता कम हो जाती है, और ऐसे में जो पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो इन दिनों में कितनी प्रभावी हो जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: सुभाष जी।

0: बहुत अच्छा संदेश है आपका, और हम समझते हैं कि जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और सभी अगर इसे अमल में लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और तरण ताड़न बनने की हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए।
1: कुछ भी करें दूसरों को भी करें।
0: अब गाना बता दें सर, इतना अच्छा सा
1: गाना तो मीठा मीठा है, मधुमती का, जंतीमाला दिलीप कुमार की बेहतरीन फिल्म थी
0: जी,
1: उसका गाना सुना दे, ब्लैक एंड व्हाइट, और मधु गाने तो मधुर ही रहे।
0: सुभाष जी, आपने हमें फोन किया इसके लिए बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमसे यूं ही जुड़े रहें।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं, सबसे ज्यादा आस हमें किसकी है? अगर आज के वक्त को देखते हुए कहें तो हम सभी एक ही चीज के लिए तरस रहे हैं और इसीलिए ये संदेश आप सभी तक मैं पहुंचाना चाह रही हूं। निर्मोही मेघों को जाकर वसुंधरा की पीर सुना दो, कैसे तड़प रही है अवनी, कैसे बरसे नीर सुना दो, कैसे नदियां ताल पोखरे, कैसे सूखी झील सुना दो। निर्मोही मेघों से जाकर वसुंधरा की पीर सुना दो, कैसे झूले सावन के झूले, कैसे गाएं गीत सुना दो, कैसे मोर पपीहे झूमे, कैसे नाचे मीत सुना दो। निर्मोही मेघों से जाकर वसुंधरा की पीर सुना दो, पूछो इन मेघों से जाकर, पूछो इन मेघों से जाकर, वो हवा बावरी कहाँ गई, बूंदों से आने वाली वो सुगंध, वो सुहानी कहाँ गई, कैसे बेसुध हुई वसुधा, कैसे फूटी तकदीर सुना दो। निर्मोही मेघों से जाकर वसुंधरा की पीर सुना दो, निर्मोही मेघों से जाकर वसुंधरा की पीर सुना दो। वसुंधरा की पीर अगर मेघ सुन रहे हैं और अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर ये बात पहुंच रही है मेघों तक, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारी वसुंधरा जो है वो उसकी जो तड़प है वो जल्द मिटेगी और हम भी खुशहाल होंगे बारिश की बूंदों के साथ में। अभी देखते हैं, अभी खुशहाल होने का समय, हमारे साथी कौन है उनके साथ में। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दें अपना।
1: मैं वृंदावन कॉलोनी से राजेंद्र बिडवालकर।
0: जी राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी। राजेंद्र जी बताएं, आज क्या संदेश दे रहे हैं?
1: संदेश ये है कि अपने को जीवन में तो सच बोलना चाहिए
0: जी,
1: और अपन जो भी काम करे उसको 100%

0: डिफरेंट उसमें दे रहे ना अपने, जैसे आप लोग इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपकी पूरी टीम 100% देती है और कितना उत्कृष्ट इस कार्यक्रम को बनाती है, हमें इंतजार रहता है हर बुधवार को हर शनिवार को ये कब प्रोग्राम आवे, कब सुने, कब रिकॉर्डिंग करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए जो काम कर रहे हैं उसको जब तक हम शिद्दत से नहीं करेंगे तो उसकी जो उसकी जो हम गरिमा चाहते हैं या हम जो उसका जो उसकी महत्ता चाहते हैं वो पूरी नहीं होगी। कोई भी एग्जाम अगर हम देते हैं और अगर हम ढुलमुल तरीके से देंगे तो रिजल्ट फिर हमें पता है कैसा ही आना है। और जब आकाशवाणी की बात हो जहाँ हमारे इतने अच्छे श्रोता, नियमित श्रोता, पुराने नए सब तरीके के श्रोता सुनते हैं और कहाँ कहाँ तक आकाशवाणी की बात पहुँचती है,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ, तो अगर सभी तक ये प्रोग्राम पहुंचता है और उसमें कहीं कोई खामी होती है तो समझिए कि वो फिर डायरेक्ट हमारे ऊपर ही बात आती है कि भाई ये प्रोग्राम अच्छा नहीं था, पिछला प्रोग्राम अच्छा नहीं था।
0: नहीं, आपका तो लाजवाब प्रोग्राम रहता है। बिल्कुल,
1: बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। आप जैसे श्रोताओं की हौसला अफजाई की वजह से ही हम और उत्साहित हो जाते हैं और इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जी राजेंद्र जी, कल बारिश हुई थोड़ा सा।
0: हाँ, कल कम बारिश हुई है, थोड़ी सी हुई है
1: जी।
0: तो राजेंद्र जी का को फिर निवेदन करते हैं,
1: जी,
0: बरखा रानी जम के बरसो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब आज आप ये गाना सुनना चाहते हैं।
0: हाँ जी, मौसम के हिसाब से ताकि कुछ ठंडक हो, गर्मी कम हो।
1: बिल्कुल, पिछले पूरे एक महीने की एक महीने की तपन है ये, पिछले जो समय निकला है अपने बीकानेर में और आसपास के क्षेत्रों में एक बूंद पानी नहीं बरसा। और अब कहते हैं कि जब तक खुल के नहीं बरसेगा 4-5 बार तब तक धरती माँ जो है वो सूखी ही रहने वाली है।
0: हाँ,
1: है ना। और ऐसे में देखिए किसानों के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, बरसात अच्छी होती है तो फसलें अच्छी
0: होगा।
1: जी बिल्कुल,
0: पशु पक्षियों के लिए भी राहत मिलेगी, उनको भी ठंडक से, इंसानों को भी मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मौसम में थोड़ा परिवर्तन होगा, तापमान कम होगा तो आप और हम सभी राहत की सांस लेंगे।
0: बिल्कुल, और ये होगा जरूर, ये तो प्रकृति का नियम है।
1: सही बात है, बस थोड़ा देर हो गई है इस बार अपने बीकानेर में बारिश होने में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सावन अभी आने वाला है तो जम के बरसेगा सावन।
0: जी बिल्कुल
1: जी राजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, नियमित होता है हमारे, आप हमें हमेशा फोन करते रहें और आपकी पसंद पर हम सुनवा देते हैं सबक फिल्म का ये गीत।
0: धन्यवाद मैडम।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम में आइए देखते हैं अगले साथी हमारे कौन जुड़े हैं। हेलो
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: गांव खोकरामली से विनोद बरासा निवेदन कर रहा हूँ।
0: जी विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल, मैं तो नियमित आपके प्रोग्राम सुनता रहा हूँ
0: जी।
1: बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी प्रस्तुति बहुत बढ़िया शानदार रहती है।
0: धन्यवाद।
1: और कुछ दिनों से तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो बरसात भी वगैरह भी नहीं हुई।
0: बिल्कुल, थोड़ी सी बारिश बीकानेर में हुई है।
1: आपके शहर में तो होगी
0: थोड़ी सी,
1: बताइयो।
0: मतलब आप तक सूचना पहुंची हुई है?
1: हाँ जी, हाँ जी, समाचारों में पढ़ा है।
0: हाँ, हल्की बारिश सर, ऐसा कोई ज्यादा अच्छी बारिश नहीं हुई है। ठीक है कि हाँ, हम ये कहेंगे कि शुरुआत हो गई।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: है ना। तो बस वो थोड़ा सा मन को राहत मिल गई, सुकून मिल गया, कुछ बूंदें पड़ गई तो अच्छा लगा। और मौसम तो हालांकि अभी भी जबरदस्त बाहर गर्मी है, उमस है, धूप है,
1: उमस है।
0: हाँ, तो जब तक जम के नहीं बरसेगा ना सर, तब तक अभी अपन को राहत नहीं मिलने वाली है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत सुनना, बहुत ही पुरानी फिल्म का, बरखा।
0: हाँ, ओ सजना बरखा बहार आई।
1: हाँ जी,
0: यही सुना देते हैं। चलिए आपकी पसंद पर। और आपके सभी जो साथी लोग हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं, उन सभी की पसंद?
1: बिल्कुल, साथ में बैठे हैं
0: जी।
1: बरासा है, विकास बरासा है, रोशनी बरासा है, सगुन बरासा है।
0: हाँ, सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।
1: ओके बहन जी,
0: धन्यवाद।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम से जुड़ने के लिए श्रोताओं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0151-2528-041 और 0151-2528-042। नियमित श्रोता हमारे हैं जो हमसे बातचीत करते रहते हैं, कुछ कुछ नए श्रोता भी जुड़ते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फ़ोन नंबर्स आप ध्यान में रखेंगे और अगली बार आप हमें कॉल जरूर करेंगे हेलो बीकानेर कार्यक्रम में। आइए देखते हैं अगली कॉल किसकी आ गई है। हेलो,
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हाँ शहजादा जी का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैडम
0: जी। शहजादा जी बताएं कि गर्मी के मौसम में

0: हैं, अभी बारिश का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान अपन देख नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कैसे पार पड़ रही है बताएं? काम धंधे पे तो जाना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो करनी पड़ेगी, पेड़ बनना कमाना पड़ेगा। बरसात तो अभी दूर है, गर्मी से मोहब्बत निभा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, बरसात दूर है और ऐसे में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खास जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो गर्मी का ध्यान रखना बहुत। घर में बैठे हैं तो एक ही तापमान है निश्चित है, वो हम बैठे हैं अच्छी बात है, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, हो सके तो नींबू पानी, नींबू पानी अवश्य पिए, और खाना जो है वो थोड़ा सा ऐसा ही लें जो हल्का हो, सुपाच्य हो, हमारे पेट में कोई खराबी ना हो।
1: जी जी,
0: है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है शहजादा जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, बरसों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके संदेश भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपसे बात करके हेलो बीकानेर कार्यक्रम की जो गर्मा है वो और भी बढ़ जाती है। और बिल्कुल जी, जी अरे नहीं सर, आप हमारा अपनापन कहेंगे, हम कहेंगे कि ये आपका अपनापन है जो आप आकाशवाणी बीकानेर के नियमित होते हैं और देखिए इतने बरसों से जुड़े हुए हैं सर। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो रेडियो जो है वो वैसे रेडियो का दौर खत्म हो रहा है ना। टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी देन है कि हम मोबाइल के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं और आप सभी लोग मोबाइल पे ये सब सुन पा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और उसी वजह से आप लोगों का अपनापन है, वरना बहुत से लोगों ने छोड़ भी दिया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सही है ना। तो ये हमारा अपनापन, उसके साथ में आपका बड़प्पन जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है शहजादा जी। आपका आपने कहा कि अपनेपन के माध्यम से ही बातचीत होती है और ये अपनापन ही है जो हमें जुड़े हुए है आकाशवाणी से।
1: जी,
0: अब बताए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? जी
1: गायक लता मंगेशकर है
0: जी,
1: बोले तड़फाओगे तड़फाओगे, मन का बेहतरीन गाना है ये।
0: हाँ बेहतरीन गाना है और इन दिनों वापस एक बार फिर से फेमस हुआ है ये।
1: जी जी जी,
0: जी तो आइए सुन लेते हैं।
1: याद आ गया मेरे को, चलो।
0: हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, देखिए नए पुराने सारे गानों की मिलावट में ये प्रोग्राम बनता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ जी हाँ
0: जी, तो बरखा फिल्म का ये गीत है लता जी की आवाज में, आइए सुनते हैं शहजादा जी आपकी पसंद पर। धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही।
0: डॉक्टर अशोक कुमार शाही जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपको भी।
0: जी बिल्कुल।
1: अब ऐसा है कि आज मेरा कव्वाली का मन करा, और
0: अच्छा
1: भी हमारे श्रोता भी सुन लेंगे, बहुत अच्छी कव्वाली है
0: जी।
1: बजरंगी भाईजान की, अगर वो आप सुनवा सकें।
0: जी हाँ बिल्कुल सर।
1: हाँ, भर दो झोली
0: भर दो झोली मेरी या
1: मोहम्मद,
0: मोहम्मद,
1: खाली हाथ मैं यहाँ से जाऊंगा।
0: बिल्कुल सही। परवरदिगारे आलम जो हैं उनके आशीर्वाद, उनका वरद हस्त्र हमारे सर के ऊपर हमेशा रहना चाहिए सर।
1: जो कव्वाली की खूबी होती है
0: जी
1: वो एक अपनी बात कहने का तरीका बहुत ही दूर अंदाज में होता है, चाहे
0: बिल्कुल।
1: वो ईश्वर से हो, चाहे प्रेमिका से हो, चाहे किसी और से भी हो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: इनके लड़ने झगड़ने का भी अंदाज बहुत अच्छा होता है। जैसे पुतली बाई की कव्वाली में कितनी झगड़ालू कव्वाली है।
0: वो झगड़ा भी सुनने में आनंद आता है सर,
1: बहुत आनंद आता है। लेकिन पहले तो कव्वाली हर फिल्म संगीत में एक कव्वाली तो कम से कम महीने में दो बार तो सुनाई देते थे।
0: और
1: तो फिल्म संगीत में बहुत कम स्टेशन कव्वाली देते हैं
0: जी। और सर दूसरी चीज ये है कि फिल्मों में भी तो अब कम आती है ना कव्वालियाँ। पहले की फिल्मों में 10 फिल्मों में एक में कव्वाली होती थी।
1: हाँ, पहले वाली फिल्मों की कभी कभी सुना दे तो याद ताजा हो जाती है, और नोक झोंक भी होती है उनमें तो वो भी याद आ जाती है। हम जैसे जो हैं 70+ में, हमने ये फिल्में देखी है, पुरानी कव्वालियाँ बहुत अच्छी है। धर्मा की कव्वाली आपको याद हो तो बहुत अच्छी हुई थी, बहुत हिट हुई थी, हर रेडियो स्टेशन से बजती थी।
0: सही बात।
1: और इस तरह से है, बरसात की रात की कव्वाली बहुत मकबूल हुई थी, हर स्टेशन से रेडियो सिलोन तक बजती थी।
0: सर हम तो देखिए चिंता करते नहीं है, क्योंकि आप जैसे श्रोता हमारे पास बैठे हैं जो पुराने नए कव्वाली सब तरीके के गाने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनते हैं और हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगवा देते हैं।
1: मल्टी कलर दिखना चाहिए प्रोग्राम, कोई चीज भी आना चाहिए ना।
0: बिल्कुल,
1: मेरा सुझाव है, कंपल्सन नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल, सुझाव ही है सर, और सुझाव अगर उचित लगता है तो हम जरूर उसके ऊपर अमल करते हैं। डॉक्टर शाही बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और हाँ हम चाहेंगे कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें।
1: हाँ जी, कोशिश तो करते हैं, फोन लग जाए तो।
0: जी बिल्कुल, शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम में नए पुराने श्रोताओं के माध्यम से चार चांद लगते हैं और जब नए श्रोता जुड़ते हैं तो इस कार्यक्रम में हमें और भी आनंद आ जाता है। इसीलिए हम पुनः आपको अपने नंबर बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे और वो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और बने हमारे इस कार्यक्रम के नियमित श्रोता। तो आइए देखते हैं अब हमारे साथी कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, मैं भगवान दास बंसल, रिटायर्ड इंजीनियर फ्रॉम शिव कॉलोनी सुभाषपुरा बीकानेर।
0: जी बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी आप काफी समय बाद आपका फोन लगा है सर।
1: नहीं, डेढ़ महीना हो गया। ट्राई तो कर रहा हूँ। और
0: ट्राई कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। आप जैसे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं जो इतना शिद्दत से ट्राई करते रहते हैं, नहीं मिलता है फिर भी लगे हुए रहते हैं, और देखिए सब्र का फल मीठा होता है, तो ये आखिर

0: आपका फोन लग ही गया।
1: गाने सुनता रहता हूँ दूसरों के।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी, नहीं आज हम आपका गाना सुनवाएंगे सर।
1: कभी तो लगे गई।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही करें। स्वास्थ्य आपका ठीक है सर?
1: बस ठीक है जी।
0: बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुनाइए मैडम। फिल्म आरजू, फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया।
0: अभी फूलों की बहार आने वाली है बारिश के साथ साथ, है ना? तो आपने गाने का जो है वो पहले ही सुनना पसंद कर लिया कि हम फूल तो जब खिलेंगे तब खिलेंगे, मौसम आने वाला है, लेकिन गाने की शुरुआत कर लेते हैं पहले से ही।
1: जी बिल्कुल, शुरुआत तो पहले ही कर लेते हैं।
0: जी और क्या संदेश देंगे?
1: यही देंगे कि हर एक आदमी को हमेशा पॉजिटिव नेचर में रहना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए माइंड में।
0: बिल्कुल,
1: कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, हमेशा आदमी को पॉजिटिविटी में रहना चाहिए।
0: सही बात है।
1: इससे वो दूसरों की समस्याएं भी हल होंगी, खुद की समस्या भी हल होगी, मेरा ये मानना है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है सर आपका। और देखिए ये आप अपने अनुभव से कह रहे हैं, है ना, कि जितनी पॉजिटिविटी रहेगी और उतना ही हम नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। और कई बार क्या होता है कि जब हम नकारात्मकता की तरफ जाते हैं तो दूसरे लोगों पर भी बहुत असर पड़ता है और हम खुद मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं।
1: बिल्कुल मैडम, यही मेरी सोच है।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है सर आपका। और हम सोचते हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं, सकारात्मकता और नकारात्मकता, ये दोनों ही हमारे जीवन में हालांकि आती हैं, उतार चढ़ाव रहता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन जितना हो सके हमें सकारात्मक रहना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया बंसल साहब, आपने हमें फ़ोन किया और हम उम्मीद करते हैं आप से हमेशा जुड़े रहेंगे और आपका फ़ोन हर बार लगे ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं।
1: थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द कॉल।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।

श्रोताओं, हेलो बीकानेर कार्यक्रम में अभी आपने बहुत से श्रोताओं की बातें सुनी और उनकी पसंद के गीत भी सुने। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हेलो बीकानेर कार्यक्रम को सफल बनाने में आकाशवाणी बीकानेर की पूरी टीम का सहयोग रहा। प्रस्तुतकर्ता थी बरखा।

श्रोताओं, हेलो बीकानेर कार्यक्रम में अभी आपने बहुत से श्रोताओं की बातें सुनी और उनकी पसंद के गीत भी सुने। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हेलो बीकानेर कार्यक्रम को सफल बनाने में आकाशवाणी बीकानेर की पूरी टीम का सहयोग रहा। प्रस्तुतकर्ता थी बरखा थानवी व्यास, कार्यक्रम के संयोजक थे अमित सिंह और सूत्रधार मैं आपके साथ प्रतिमा तिवारी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफिल्म पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार

प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दिन के 12:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी बीकानेर कठुआ मेरे चैनल से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से होंगे। अब से कुछ ही देर बाद 12:10 पे हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे दिन के 1:00। महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम होगा महिला जगत दिन के 1:05 पर। मिड डे न्यूज दोपहर 2:00 आप सुन पाएंगे, उसके बाद आप सुनेंगे दोपहर समाचार 2:15।

हमारी आज की इस सभा में दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हमारी आज की दूसरी सभा में शाम 5:05 पर युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी शाम 5:05। हमारी आज की दूसरी सभा में आप सुनेंगे शाम 6:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम होगा शाम 6:40 पे। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे शाम 6:45 पर। ग्रामीण साथियों का मनपसंद कार्यक्रम ग्रामीण जगत आप सुन पाएंगे शाम 7:00। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुवाड़। हमारे आज की इसी सभा में शाम 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ठोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। अभी इस वक्त दिन के 12:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

ये आवाज थी शोभना राव की। इस गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। अभी दिन के 12:40 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

को लिखा था इंदु जैन ने। अगला गीत लिया है हमने फिल्म हेरा पन्ना से, और ये युगल आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत आर डी बर्मन का है।

हीरापन ये फिल्म थी और युगल आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। अगला गीत लिया है हमने फिल्म एतबार से और ये युगल आवाज़ें हैं आशा भोसले और भूपेंद्र की। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और संगीत बप्पी लहरी का है।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम माई भारत के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय भागीदारी बनाना है। कार्यक्रम 4 जून से 30 जून तक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों में आयोजित किया गया। इसमें देश भर से चयनित 400 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता, सांस्कृतिक

प्रदेश में भी आज देवशयनी एकादशी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। श्रद्धालु गोवर्धन की सप्तकोशी परिक्रमा भी कर रहे हैं। आज से चातुर्मास का भी आरंभ हो गया है। इसके साथ ही अगले 4 माह तक विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य नहीं होंगे। भरतपुर रेंज पुलिस ने प्रहार अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 666 वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विभिन्न मामलों में 157 नए प्रकरण दर्ज किए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में 4 इनामी बदमाश और 12 कुख्यात अपराधी शामिल हैं। पुलिस महानिरीक्षक डॉ. प्रीति चंदा ने बताया कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग जिलों में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों की 303 टीमों ने लगभग 2000 स्थानों पर दबिश देकर यह कार्रवाई की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी तथा 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा दर्ज की है। सबसे अधिक वर्षा सिरोही जिले की माउंट आबू तहसील में 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा सिरोही में 9 सेंटीमीटर, श्रीगंगानगर जिले के करणपुर में 8 सेंटीमीटर, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में 7 सेंटीमीटर तथा बाड़मेर जिले के बालोतरा और जोधपुर जिले के ओसिया में 6-6 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अजमेर जिले की जवाजा और सरवाड़ में भी 5-5 सेंटीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश संभागों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे बना हुआ है। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। ये शोध भविष्य में मानसिक रोगों की शुरुआती पहचान, बेहतर उपचार, स्वस्थ वृद्धावस्था और एआई

0: समझने और उनके उपचार के नए रास्ते खोज सकती है। प्रोफेसर दीपांजन रॉय ने बताया कि यह अध्ययन केवल मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके निष्कर्ष स्वास्थ्य सेवाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा, संचार तकनीक और सहायक उपकरणों के विकास में भी उपयोगी साबित होगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। अभी इस वक्त दिन के 1:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं महिला जगत कार्यक्रम।

0: कभी काम करते करते अचानक कोई पसंदीदा गीत याद आ जाए और सहसा हम उसे गुनगुनाने लग जाएं, तो थकान जैसे खुद ब खुद हल्की होने लगती है ना। हाथ काम करते रहते हैं लेकिन होंठ जो है वो अनजाने में ही गुनगुनाने लगते हैं।
1: सच कहूं कोमल, कई बार संगीत हमें वहां पहुंचा देता है जहां हम वर्षों से नहीं गए होते। बचपन की गलियां, स्कूल के दिन, त्योहारों की रौनक या फिर माँ की वो मीठी लोरी, एक छोटी सी धुन कितनी सारी यादों को दरवाजे पर खोल देती है ना।
0: बिल्कुल, और यही तो संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती है नेहा। ये सिर्फ कानों से नहीं सुना जाता, इसे दिल महसूस करता है। उदासी में यही सहारा बनता है, खुशी में यही उत्सव बन जाता है और अकेलेपन में यही सबसे प्यारा साथी लगने लगता है।
1: अच्छा कोमल, कभी ध्यान दिया है कि सुबह चिड़ियों की चहचहाट एक मधुर आलाप जैसी लगती है ना। मंदिर की घंटियों में भक्ति की धुन सुनाई देती है और हवा की सरसराहट जैसे कोई धीमा संगीत बजा रही हो।
0: हाँ, और घर के भीतर भी तो किसी एक छोटी सी कितनी सी लय होती है ना। रसोई में चम्मच की खनक, चूड़ियों की खनक और बच्चों की खिलखिलाहट, आंगन में चलती बातचीत, और नेहा अगर ध्यान से सुनो ना तो हर आवाज अपनी एक अलग धुन रच रही होती है।
1: यहाँ तक कि कोमल, हमारी सांसों की गति और दिल की धड़कन भी एक ताल में चलती है। सोचिए, जब जीवन की शुरुआत ही एक धड़कन सी होती है तो संगीत से हमारा रिश्ता कितना गहरा होगा, है ना।
0: शायद इसी वजह से नेहा हमारे जीवन का कोई भी अवसर संगीत के बिना पूरा नहीं लगता है। जन्म हो तो लोरियां, त्योहार हो तो लोकगीत, शादी हो तो मंगल गीत और पूजा हो तो भजन। हमारे संस्कारों से लेकर हमारी भावनाओं तक हर जगह संगीत किसी न किसी रूप में मौजूद ही होता है।
1: और यही संगीत हमें जोड़ता भी है ना सखियों, क्योंकि सुरों की भाषा तो हर दिल समझता है। तो आइए इसी सुरमय गीत को सुनते हैं, साथ मुस्कुराते हैं और साथ गुनगुनाते हैं।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: कोमल, कभी ध्यान दिया है कि हम बच्चों को सड़क पार करना सिखाते हैं, आग से दूर रहना सिखाते हैं, लेकिन पानी के पास सुरक्षित रहना उतनी गंभीरता से नहीं सिखा पाते।
2: हाँ नेहा, जबकि पानी के पास होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं वो कई बार बिना किसी चेतावनी के हो जाती है। कभी खेल खेल में, कभी जिज्ञासा में, तो कभी थोड़ी सी असावधानी में स्थिति अचानक गंभीर बन जाती है।
1: इसलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है कोमल, ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी जिसे जल में डूबने से बचाव दिवस भी कहा जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सावधानी, जागरूकता और समय पर उठाया गया सही कदम किसी की जान बचा सकता है।
2: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है नेहा कि डूबने की कई घटनाएं बहुत आसान सावधानियों से रोकी जा सकती है। बस हमें खुद भी सतर्क रहना है और अपने बच्चों को भी जल सुरक्षा के बारे में समझाना है।
1: कोमल, इसी बात पर मुझे एक घटना याद आ रही है जो मैंने कुछ समय पहले अखबार में पढ़ी थी। उसमें कुछ यूं था कि एक परिवार छुट्टियों में घूमने किसी झील के किनारे गया।
2: अच्छा।
1: बच्चे पानी के पास खेल रहे

0: थे और सेल्फी ले रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चा थोड़ा आगे चला गया और पानी में अपना संतुलन खो बैठा। सौभाग्य से कोमल वहां उपस्थित एक युवक को तैरना आता था और उसने तुरंत बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और पता है कोमल, वहां उपस्थित कई लोगों के बयान भी अखबार में छपे थे कि अगर बच्चों को लगातार वॉच किया जाता या वीडियो फोटो खींचने के काम उन्हें कम ध्यान दिया जाता तो इस तरह की लापरवाही नहीं होती।
1: ये घटना हमें बहुत बड़ी सीख देती है नेहा, कि अगर हम किसी ऐसी जगह घूमने जाएं जहां झरना हो, गहरा पानी हो, तालाब हो, झील हो, तो वहां वीडियो फोटो शूट करने के बजाय अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। और साथ ही कुछ विशेष बातों का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। बच्चों को पानी के पास अकेला ना छोड़ें, खुद भी तैरना सीखें और बच्चों को भी तैरना सिखाएं बहनों। किसी भी गहरे पानी में कभी ना उतरें। नाव में यात्रा करते समय लाइफ जैकेट का उपयोग भी आपको जरूर करना है। और किसी को पानी में संघर्ष करता अगर आप देखते हैं तो तुरंत उनकी सहायता करने का प्रयास जरूर करें और किसी को मदद के लिए जरूर बुलाएं।
0: बिल्कुल सही। एक और जरूरी बात है कि अगर कोई पानी में डूब रहा है तो बिना सोचे समझे खुद गहरे पानी में ना उतरें। पहले आसपास के लोगों को आवाज दें, रस्सी, लकड़ी या किसी सुरक्षित साधन से मदद करने का प्रयास करें और आवश्यकता हो तो आपातकालीन सहायता बुलाएं।
1: हाँ नेहा, कई बार हम सोचते हैं ना कि हमें तो पानी का अनुभव है, लेकिन पानी की जो गहराई है और उसका जो बहाव है वो पल भर में स्थिति बदल सकते हैं। इसीलिए सतर्क रहना हर उम्र की व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
0: और याद रखिए कि बच्चों को सिर्फ पानी के पास मत जाओ कहना काफी नहीं होता है। उन्हें ये भी समझाना चाहिए कि पानी के आसपास कैसे व्यवहार करना है, कहाँ तक जाना सुरक्षित है और खतरा महसूस होने पर तुरंत किसी बड़े को आवाज देनी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी किसी परिवार की सबसे बड़ी खुशी को सुरक्षित रख सकती है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अब सुनिए एक सुंदर सा गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अपने लिए ऐसे ही दोपहर निकाल लूं तो हवा में बैठूं, कॉफी की चुस्कियों के साथ अखबार पढूं।
1: बिल्कुल नेहा, अपने लिए दो क्या चार पल निकालो, बस खुश रहो। लेकिन यही बात हमको हमारी सखियों को भी समझानी है कि हमें बेशक सबका ध्यान रखना है लेकिन खुद को नहीं भूलना है, क्योंकि अक्सर महिलाएं यही सोचती हैं कि हमारी थकान, हमारी पसंद, हमारी भावनाएं शायद उतनी जरूरी नहीं है।
0: लेकिन सच तो ये है कि आत्मसम्मान की शुरुआत यहीं से होती है कोमल, खुद को ये याद दिलाने से कि मैं भी महत्वपूर्ण हूँ।
1: बिल्कुल, और आत्मसम्मान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हर बात पर नाराज हो जाएं या अपनी बात मनवाने के लिए लड़े, बल्कि उसका अर्थ है कि अपनी गरिमा को संभाल कर रखें।
0: बिल्कुल सही, इसी बात पर एक शायरी अर्ज है कोमल। मैंने रिश्तों को दिल से निभाया, मैंने रिश्तों को दिल से निभाया, हर अपने को अपना बनाया, बस इतना हक खुद को भी दे दूं कि मैंने खुद को भी सम्मान दिया।
1: वाह वाह, क्या शायरी कही नहीं जी। सखियों, खुद का सम्मान और खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज के समय में हमें घर के साथ साथ ऑफिस, आस पड़ोस और समाज में भी अपने आत्मसम्मान को उतनी ही समझदारी से संभालना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: ऑफिस में कई बार लोग ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति विनम्र है वो हर अतिरिक्त काम बिना कुछ कहे कर देगा। ऐसे में अपनी क्षमता और समय के अनुरूप काम करना और जरूरत पड़ने पर विनम्रता से कहना कि मैं ये काम कर दूंगी लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा।
0: बिल्कुल सही,
1: और ये भी आत्मसम्मान की रक्षा करना ही है।
0: और कोमल, अपनी मेहनत का श्रेय लेना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: कई महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं लेकिन संकोच में अपनी उपलब्धियों का जिक्र ही नहीं करती, जबकि अपनी मेहनत को स्वीकार करना अहंकार नहीं बल्कि अपने प्रयासों का सम्मान करना है।
1: सही कहा नहीं है, और आस पड़ोस में भी तो नहीं, कभी कभी लोग तुलना कर देते हैं ना कि उनकी बहू तो ऐसा करती है, उनकी बेटी वैसी है। अगर हम हर बात में खुद को कमतर

0: महसूस करने लगे तो हमारा आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही, इसलिए जरूरी है कि हम मुस्कुराकर अपनी पहचान को स्वीकार करें। हर घर की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, हमें किसी और जैसा बनने की नहीं बल्कि अपने भीतर के संतुलन और सम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता है।
0: और नेहा, एक बात मैंने अपने अनुभव से सीखी है कि आत्मसम्मान की रक्षा हमेशा बड़ी बड़ी परिस्थितियों से ही की जाती है, से नहीं हो पाती है बल्कि रोजमर्रा की जो छोटी छोटी बातें हैं ना उनसे भी होती है।
1: जैसे
0: जैसे अगर कोई हमारी बात बीच में बार बार काट देता है, हमारी मेहनत को हल्के में लेता है या मजाक के नाम पर ऐसी बातें कह देता है जो मन को चोट पहुंचा दे, तो उस समय मुस्कुरा कर चुप रह जाना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता हमारे पास। हम बहुत शांति से कह सकते हैं कि आपकी बात से मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ।
1: सही कहा, अपनी भावना को व्यक्त करना झगड़ा करना नहीं होता बल्कि ये सामने वाले को ये बताना होता है कि हमारे मन की भी एक गरिमा है। कई बार ना हम खुद के ही आत्मसम्मान को कमजोर कर देते हैं, अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हमें अपने मन से भी उतनी ही नरमी से बात करनी चाहिए जितनी हम अपने बच्चों या किसी प्रियजन से करते हैं।
0: सही कहा, तो सखियों खुद से एक छोटा सा वादा करें कि हम दूसरों का सम्मान करेंगे, प्रेम और सहयोग भी देंगे, लेकिन अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को कभी अनदेखा नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अनदेखा नहीं करेंगे ये कि आपको एक खूबसूरत गाना सुनाना है।

0: सिक्योर किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सच्चा पैमाना उसकी महिलाओं का सम्मान, अवसर और आत्मविश्वास होता है। जब नारी आगे बढ़ती है तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों नई ऊंचाइयों को छूते हैं। आइए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर एक वार्ता सुनते हैं, जिसका विषय है भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, दशा और दिशा, और वार्ताकार है श्रीमती विजय लक्ष्मी पालीवाल।
1: भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, दशा एवं दिशा। भारत में नारी की स्थिति में समय के साथ साथ कई उतार चढ़ाव आए हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक और वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों से प्रभावित हुई है। हालांकि प्राचीन काल में कुछ सुधार थे। प्राचीन काल

में जहाँ नारी को सम्मान और शिक्षा प्राप्त थी, वहीं मध्यकालीन काल में नारी के अधिकारों का हनन हुआ। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और आधुनिक काल में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, परंतु कानूनी समानता के बावजूद आज भी लैंगिक असमानता, हिंसा और उत्पीड़न जैसी समस्या बनी हुई है। संवैधानिक प्रावधान महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा देते हैं, लेकिन लिंगानुपात में कम और सामाजिक कुरीतियों जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और बाल विवाह से महिलाओं की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। वैदिक काल में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता थी और वह धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय थी। बौद्ध काल में भी महिलाओं की स्थिति में सुधार था। मध्यकाल 500 से 1500 ईस्वी के अवधि में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। महिलाओं को अबला माना गया, संपत्ति का अधिकार छीना गया और विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी गई। साथ ही बाल विवाह को बढ़ावा दिया गया। आधुनिक काल में महिलाओं को संविधान में पुरुषों के समान दर्जा दिया गया है। आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी बनी हुई है। महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल जैसे क्षेत्रों में प्रगति कर रही है, आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही है और विज्ञान, कला और राजनीति में भी अपनी पहचान बना रही है। हालांकि घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और लैंगिक वेतन अंतर जैसी समस्याएं अभी भी विद्यमान है, संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी योजनाओं के बावजूद महिलाओं के विकास की प्रगति धीमी है। किसी भी भव्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिए जल, वायु, भोजन है। स्त्रियां ही समाज की हर परंपरा में मुख्य भूमिका निभाती है। फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही है। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा है। इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यंत निचले स्तर पर है। भारतीय समाज की परंपरागत व्यवस्था में महिलाएं आजीवन पिता, पति, पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती रही है। भारतीय संविधान में पुरुषों व महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिए जाने के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलाएं अभी पुरुषों से काफ़ी पीछे है। जिस समाज की महिलाएं उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होती है, वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। नारी की स्थिति में कोई बदलाव तभी आ सकता है जब नारी अपनी सोच बदलेगी। दरअसल गुलामी के बंधन तभी टूटते हैं जब बंधनों में जकड़ा आदमी अपने आप को आज़ाद महसूस करता है। महात्मा गांधी ने कहा कि अब जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब जेल में रहकर आदमी ज़्यादा आज़ाद होता है बजाय बाहर रहकर अनुचित कानूनों के मानने के। आज यही स्थिति नारी पर लागू होती है। वैदिक काल में भारतीय समाज में नारी की स्थिति अत्यंत सम्मानजनक थी। इस समय में महिलाएं समाज के विभिन्न कार्यों में भाग लेती थी और धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करती थी। वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलते थे। विवाह और परिवार में उनके अधिकारों को महत्व दिया जाता था। नारी का कर्तव्य पतिव्रता धर्म के पालन तक सीमित था, लेकिन इस समय का समाज महिलाओं के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संवेदनशील था। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत होने लगी और महिलाओं के अधिकार सीमित किए गए। इस काल में शिक्षा, धार्मिक कार्यों और समाज के प्रमुख निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी कम हो गई। इस काल में कई सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का जन्म हुआ। पर्दा प्रथा ने महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया। इस समय में महिलाओं को शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण अवसर कम मिले। इसके बावजूद कुछ महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रही। उदाहरण स्वरूप रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा जैसी शासक महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा। समाज में महिलाओं का स्थान परिवार के भीतर था और उनकी स्वतंत्रता, शिक्षा और विकास लगभग असंभव था। ब्रिटिश काल में भारतीय समाज सुधारक महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन हुए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया और इसको बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया। 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ। इसी तरह महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिलवाया। महिला अधिकारों के लिए आंदोलनों की शुरुआत हुई, जैसे महिला वकालत, महिला शिक्षा और विधवाओं के लिए पुनर्विवाह के अधिकार।

हालांकि इस सुधारों के बावजूद महिलाओं की स्थिति में अब सुधार नहीं हुआ था, क्योंकि समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत थी। भारत में अभी भी बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद बहुत सी लड़कियां इस बीमारी से पीड़ित हैं। इस बाल विवाह की बीमारी से लड़कियों को गंभीर परिणाम मिलते हैं, जिसमें शिक्षा में रुकावट, समय से पहले गर्भधारण के कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और व्यक्तिगत एवं आर्थिक विकास के सीमित अवसर शामिल। भेदभाव के पीछे सांस्कृतिक मान्यताओं एवं सामाजिक नियमों का अधिक हाथ होता है। स्वतंत्रता पूर्व महिलाओं को अपने परिवार और पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था। को स्त्री चाहे भूख प्यास से कितनी भी पीड़ित हो, उसके द्वारा आर्थिक क्रिया करना उसके स्त्रीत्व और कुलीनता के विरुद्ध माना जाता था। इसलिए स्त्री अमान्य व्यवहार के पश्चात भी पुरुषों की दया पर आर्थिक रूप से आश्रित थी। बाल विवाह के कारण महिलाओं में शिक्षा का स्तर निम्न रहने से अज्ञानता बढ़ी, जिससे महिलाएं समाज की मौलिक स्थिति को समझकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सके। छोटी उम्र में विवाह होने के कारण पारिवारिक उत्तरदायित्व शीघ्र ही आ जाते थे, जिससे महिलाओं को विकास प्रभावित होता था। समाज में आज कामकाजी नारी का सम्मान स्थान है, वह घर से बाहर जाकर सक्रिय हो रही है। साथ ही नारी ने अपनी घरेलू भूमिका को भी निभाया है। आज भी घर की जिम्मेदारी महिला की है। महात्मा गांधी ने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कहा। कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई, अरुणा आसफ अली जैसी महिलाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार। आजादी के बाद लगभग 12 महिलाएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी है। भारत सॉफ्टवेयर उद्योग में 21% पेशेवर महिलाएं हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट तथा उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहां वर्षों पहले महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, यहां सिर्फ नारी स्वयं को स्थापित ही नहीं कर पाई बल्कि सफल भी रही है। यदि हमें समाज का विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। जवाहरलाल नेहरू महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो सुधार आंदोलन प्रारंभ किया, उस समाज में एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई है। शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। गांधी जी ने कहा था कि एक लड़की की शिक्षा, एक लड़के शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन के वह सभी द्वार खोल देती है जो आवश्यक रूप से सामाजिक है। शिक्षित होने से महिलाओं को अपनी स्थिति व अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी। शिक्षा ने उन्हें आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक न्याय तथा पुरुष के साथ समानता के अधिकार लेने को प्रेरित किया। पहले दशक में विस्तृत सर्वेक्षण कर विकास की नीतियों के चरण निर्धारित किए गए। महिला दशक की वैचारिकता ने उनके विकास के मुद्दों की नई दिशा प्रदान की। इतिहास में पहली बार महिलाओं के विकास कार्यक्रम में भागीदारी की पहचान बनना प्रारंभ हुआ। शिक्षा तथा कल्याण कार्यक्रमों का सवेरा दिखाई दिया तथा परिवार महिलाओं के अधिकारों और समानता के प्रति जागरूकता के विकास की झलक मिलने। औरत आखिर एक इंसान भी होती है। स्त्री और मुक्ति आज भी नदी के दो किनारे की तरह है, जो कभी मिल नहीं पाती। सतही तौर पर देखा जाए तो लगता है कि भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाती स्त्रियों ने अपनी पुरानी मान्यताएं बदली है। आज की स्त्री की अस्मिता का प्रश्न मुखर होता जा रहा है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती हुई स्त्रियों ने लंबा रास्ता तय कर लिया है, परंतु आज भी एक बड़ा हिस्सा सदियों से सामाजिक न्याय अन्याय का शिकार है। भारत के कई भागों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं के लिए अभी भी समाजीकरण के मापदंड अलग अलग है। महिलाओं से मृदुभाषी, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है। उनमें निश्चित तरीके से चलने, बात करने, बैठने और व्यवहार करने की उपेक्षा होती है। इसकी तुलना में पुरुष अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। पिंजरे में बंद मैना को किस्सा गोई का पाठ पढ़ाते रहे, लाज शर्म का हिसाब लगाते रहे, तालाबंदी का हक जताते रहे। जो पुरुषों ने पाया वो उसका सामर्थ्य, नारी ने स्वयं कुछ किया तो बेहयाई। तो बताओ समाज वालों, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई। वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण के कई उपाय किए जा रहे हैं। महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण किया गया है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला सशक्तिकरण योजना और राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। उन शोषण, लैंगिक भेदभाव, असमान व्यक्ति जैसी समस्याएं भी मौजूद है। महिलाओं की

0: तस्करी और बाल श्रम जैसे अनैतिक कृत्य भी समाज में महिलाओं की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक नारी की स्थिति में कई परिवर्तन हुए हैं लेकिन अभी भी समाज में कई तरह की समस्याएं बनी हुई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाज में जागरूकता और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है लेकिन पूर्ण समानता और शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक जागरूकता, सरकारी नीतियां और कानूनों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार के मायने भी बदल कर रख दिए हैं। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है। हम ये तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गए हैं, पर पहले की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत है। महिलाएं अब अपनी पेशेवर जिंदगी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक को लेकर बहुत अधिक जागरूक है, जिससे वे अपने परिवार तथा रोजमर्रा की दिनचर्या से संबंधित खर्चों का निर्वाह आसानी से कर सके। वर्तमान समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से लैंगिक अनुपात और लड़कियों के नामांकन से सुधार हुआ है। महिलाओं के लिए डिजिटल और कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार के प्रयास से महिलाओं को स्वयं सहायता समूह जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को वित्तीय पहुंच मिली है। मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से महिला उद्यमियों को समर्थन मिला है। महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं लेकिन फिर भी महिलाएं अनेक स्थानों पर पुरुष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही है। लेकिन इस संदर्भ में युग नायक एवं राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद का यह कथन उल्लेखनीय है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों की ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। हमें नारी शक्ति के उद्धारक नहीं वरन उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों के भांति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी प्रकार स्त्री एक अच्छे समाज की और राष्ट्र का स्रोत होती है। शिक्षा ही हमें सामाजिक भेदभावों और ऊंच नीच की भावनाओं को उबारने का काम करती है। इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि महिला के विचार ही उनके बच्चे होते हैं। अगर वो अपने बच्चों को इस रूढ़िगत विचारों से दूर रखे, इसी आधार पर भारत के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं सन्निहित। जय हिंद।
1: तो सखियों, ये थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पालीवाल द्वारा प्रस्तुत वार्ता, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, दशा और दिशा। आशा है इस वार्ता ने आपको सोचने, समझने और सकारात्मक बदलाव की दिशा में प्रेरित किया होगा। और इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं एक ऐसा संदेश जो हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों, एकता और समर्पण का भाव याद दिलाता है। सुनिए भारतीय सेना को समर्पित कैलाश खेर की आवाज में ये प्रेरणादायक संदेश।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: नया आजकल जिंदगी कितनी आसान हो गई है ना, घर बैठे ही राशन मंगवा लीजिए, कपड़े खरीद लीजिए, बच्चों की किताबें, दवाइयाँ, यहाँ तक कि छोटे छोटे घरेलू सामान भी कुछ ही क्लिक में घर पहुँच जाते हैं।
1: बिल्कुल कोमल, पहले बाजार जाने के लिए समय निकालना पड़ता था, लेकिन अब मोबाइल ने मानो पूरा बाजार ही हमारी हथेली में ला दिया है ना। खासकर महिलाओं के लिए जो घर और काम दोनों की जिम्मेदारियां निभाती है, उनके लिए ऑनलाइन खरीदारी काफी सुविधाजनक साबित हुई है।
0: सही कहा आपने, लेकिन जहाँ सुविधा होती है ना, वहाँ थोड़ी सी सावधानी भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर हम सतर्क न रहे तो ऑनलाइन खरीदारी का अनुभव परेशानी का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए आज हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी खरीदारी सुरक्षित और संतोषजनक रहे।
0: नेहा, सबसे पहली बात, ऑनलाइन खरीदारी हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट या आधिकारिक मोबाइल ऐप से ही करें। कई बार नकली वेबसाइट बिल्कुल असली जैसी दिखाई देती है और लोग धोखे का शिकार भी हो जाते हैं।
1: और अगर कोई वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज किसी महंगे सामान पर 90% छूट या सिर्फ आज के लिए ऑफर जैसे आकर्षक संदेश दे रहा है, तो बिना जांच पड़ताल के तुरंत भुगतान न करें। कई बार ऐसे ऑफर सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए भी बनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल, ऑर्डर करने से पहले उस उत्पाद की जानकारी ध्यान से जरूर पढ़ें, उसके आकार, गुणवत्ता, वारंटी और वापसी यानी कि रिटर्न पॉलिसी जो होती है उसको भी आप जरूर समझ लें। साथ ही दूसरे ग्राहकों की समीक्षाएं पढ़ना भी एक अच्छी आदत है।
1: भुगतान करते समय भी विशेष सावधानी रखें, जहां तक संभव हो सुरक्षित पेमेंट गेटवे का उपयोग करें, और याद रखिए बैंक का ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। कोई भी बैंक या कंपनी फोन करके ये जानकारी नहीं मांगती है।

0: बिल्कुल। और एक और बात बहनों, अगर आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो कहाँ कहा जाए कि आपका पर्सनल जो है वो रिफंड लेना है आपको, या फिर पार्सल है वो अटक गया है कहीं पे, तो लिंक पर क्लिक कीजिए तो तुरंत उस पर भरोसा ना करें, पहले संबंधित कंपनियों के आधिकारिक माध्यम से जानकारी की पुष्टि जरूर करें।
1: बिल्कुल सही। और सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग ना करें, ऑनलाइन भुगतान करने से बचें, कैश ऑन डिलीवरी का उपयोग ज्यादा करें, कोशिश करें कि मोबाइल और शॉपिंग ऐप को समय समय पर अपडेट करते रहें ताकि सुरक्षा भी बनी रहे।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन खरीदारी का मतलब सिर्फ सामान खरीदना नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करना भी है। जितनी समझदारी से हम पैसे खर्च करते हैं बहनों, उतनी ही समझदारी से अपनी जो है डिजिटल सुरक्षा का भी हमें ध्यान बिल्कुल रखना है।
1: सही कहा, तकनीक तभी हमारे लिए वरदान बनती है सखियों जब हम उसका उपयोग जागरूकता और सावधानी के साथ करते हैं।
0: तो अगली बार जब भी ऑनलाइन खरीदारी करें, याद रखिए जल्दबाजी नहीं, समझदारी से लिया गया निर्णय ही सबसे सुरक्षित खरीदारी की पहचान है। थोड़ी सी सतर्कता आपको आर्थिक नुकसान और साइबर धोखाधड़ी से बचा सकती है।
1: फिलहाल हम आपको अभी खूबसूरत गीत सुनवाकर सुकून के पल दे सकते हैं, जिसका आपको कोई ना तो ऑनलाइन भुगतान करना है और ना ही कैश ऑन डिलीवरी। ये खूबसूरत गीत आपके लिए बिल्कुल फ्री है।

0: आस के माहौल को भी खूबसूरत बना सकती है,
1: क्योंकि जिंदगी की राहें चाहे जैसी भी हो उनमें उम्मीद चेहरे पर मुस्कान और कदमों में आत्मविश्वास बनाए रखिए। यही छोटी छोटी बातें जीवन को बड़ा और सुंदर बना देती है। फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं कोमल पुरोहित,
0: मैं नेहा गोस्वामी, नमस्कार।

0: And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1,00,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश टोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
3: रिजर्व की 32 प्लाटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का

0: रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले दो से तीन दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजेपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहे।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक

0: दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी बीकानेर का ठोला हमारा चैनल है मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अगला गीत सुनते हैं और ये आरडी बर्मन का ही संगीत है। गीत को लिखा है गुलजार ने, फिल्म इजाजत, और ये आवाज है आशा भोसले की।

ये फिल्म थी और आवाज आशा भोसले और अमित कुमार की थी। अगला गीत हमने लिया है ये फिल्म है हीरा पन्ना और आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यही समाप्त होती है। हम आपसे हमारी दूसरी सभा में फिर मिलेंगे।

0: स्ट्रीम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5 बजने वाले हैं। हमारे आज के प्रसारणों की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा के आरंभ में सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बीच सरकार

0: और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा हो रही है। भाजपा ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो

0: उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत देश के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपनी उपलब्धियों तथा समर्पण से हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। अनहत जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना युवा वाणी कार्यक्रम।

0: राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही चमकता है।
1: पर टूटे धनुष से रण नहीं जीता जाता मेरे दोस्त, ये तन ही वो रथ है जिससे हर इंसान किस्मत से लड़ता है।
0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में और मैं हूँ आपका दोस्त आनंद
1: और मैं हूँ आपकी साथी शिवानी।
0: दोस्तों, मनुष्य का जीवन संघर्ष की एक अंतहीन कहानी है। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नया मैदान, और हम सब अपनी मंजिलों को पाने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन इस अंधी दौड़ में हम अक्सर एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं, जानते हैं?
1: बिल्कुल आनंद, हम जीवन के संघर्षों से लड़ने के लिए हथियार तो बहुत धारदार चुनते हैं, जैसे अच्छी शिक्षा, बड़ा करियर, बड़ी गाड़ियां, लेकिन हम उस योद्धा को ही भूल जाते हैं जिसे ये जंग लड़नी होती है।
0: वही तो, और वो योद्धा है हमारा यह स्वयं का शरीर, यानी हमारा स्वास्थ्य। दोस्तों, अगर हमारा शरीर ही कमजोर हो जाए, अगर स्वास्थ्य ही

0: आप दे दे तो जीवन के सारे संघर्ष, सारी जीत और सारा सुख बेमानी हो जाता है।
1: हम अक्सर मंजिल की फिक्र में इस कदर दौड़ते हैं साथियों कि उस रथ को ही भूल जाते हैं जिस पर हम सवार हैं, यानी हमारा ये शरीर। और इसी रथ को फौलाद बनाने का नुस्खा आज हमारे पास है।
0: ओहो, क्या बात है।
1: और बिल्कुल, अगर जिंदगी में रफ्तार चाहिए तो मैदान का रुख तो करना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल, यानी आज की बात जो है वो है खेल की, जो हमारी रगों में नया जोश पैदा करता है दोस्तों।
1: बिल्कुल, आज का युवा सुबह की ताजा हवा के बजाय स्क्रीन की नीली रोशनी में जागता है, पर असली जादू तो ये खेल के उस मैदान में है दोस्तों। पर आनंद आजकल के बिजी शेड्यूल में युवा खेल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे कैसे?
0: अरे, इसके लिए कोई ओलंपिक की तैयारी थोड़ी करनी है। बस शाम को 30 मिनट दोस्तों के साथ बैडमिंटन या गली क्रिकेट ही बहुत है। जब मैदान पर पसीना बहेगा तो चेहरे पर वो चमक आएगी, ऐसी चमक आएगी कि जैसी चमक किसी क्रीम से नहीं मिल सकती।
1: क्या बात है। लेकिन पता है आनंद, जब मैं कुछ दिनों पहले पार्क गई थी ना, तो वहाँ कुछ बुजुर्गों को बैडमिंटन खेलते देखा और उन्हें देखकर लगा कि खेल सच में किसी उम्र का मोहताज नहीं होता।
0: बिल्कुल शिवानी, चाहे बच्चे हो, नौजवान हो या बुजुर्ग ही क्यों ना हो, खेल हर वर्ग के लिए है, हर सेक्शन के लिए है। दौड़ भाग करने से शरीर तो फुर्तीला होता ही है, साथ ही साथ मानसिक तनाव भी तो दूर होता है।
1: बिल्कुल, खेल को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बिना दवाई के सेहतमंद रहने का सबसे मजेदार तरीका समझना चाहिए। बस रोज थोड़ा समय निकालो और तंदुरुस्त रहो।
0: शिवानी, तुम्हें पता है, सिर्फ शरीर ही नहीं, खेल हमारे दिमाग के तनाव को ऐसे छूमंतर करते हैं जैसे कोई जादू की छड़ी हो।
1: बिल्कुल, बच्चे तो खेल कूद करते ही हैं, लेकिन जब हम खेलते हैं यानी दूसरी आयु वर्ग के, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर छुपा हुआ वो छोटा सा मासूम सा बच्चा बाहर आ गया हो और जो सारे तनाव और चिंताओं को भूल जाने का प्रयास कर रहा हो।
0: ये बात बिल्कुल सही है। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी खुश होता है,
1: और जब मन में आनंद हो तो रूह को भी सुकून देने के लिए सुरों की महफिल सजाना तो लाजमी है।
0: हाँ बिल्कुल, तो चलिए लफ्जों का सफर यहाँ खत्म करते हुए और अब चलते हैं एक सुरों और साज की एक जादुई दुनिया में।

0: साथियों अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा सेगमेंट का यानी कि क्विज सेशन का। हम आपसे पूछेंगे दो सवाल जिनके जवाब मिलेंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तो दोस्तों तैयार हैं आप? आज का हमारा पहला सवाल है, वर्ष 2026 के एशियाई खेल का आयोजन किस देश में होना तय हुआ है? मैं अपना प्रश्न रिपीट कर देता हूं कि वर्ष 2026 के एशियाई खेल का आयोजन किस देश में होना तय हुआ है।
1: और इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है?
0: तो दोस्तों ये थे हमारे दो सवाल जिनके जवाब मिलेंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, उसे क्लिक में, अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: दोस्तों दुनिया में कितने देश हैं, हर देश की अपनी एक खूबी है, लेकिन जो विविधता, जो ठहराव, जो गहरा एहसास हमारे देश भारत में है वो कहीं और मिलना नामुमकिन है।
1: बिल्कुल, यहाँ की मिट्टी में जो विविधता और गहराई है वो दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल ही है। यहाँ कदम कदम पर बोलियां बदलती है, संगीत बदलता है, लेकिन दिल जो है वो सबका रहता है एक।
0: और शिवानी इन ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती तब और 100 गुना बढ़ जाती है जब प्रकृति इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है।
1: प्रकृति ने भारत को इतने अनूठे और सुंदर रंगों से नवाजा है कि यहाँ पर हर मोड़ पर परिदृश्य बदल जाता है। कहीं थार का मरुस्थल अपनी सुनहरी रेत में सम्मोहित करता है, तो कहीं केरल के बैंक वाटर्स में हरियाली की चादर बिछी होती है।
0: और इस पूरी प्राकृतिक सुंदरता की जो जान है वो है यहाँ की नदियाँ, यहाँ की झीलें। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियाँ सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है दोस्तों, वे हमारी सभ्यताओं की जननी है।
1: बिल्कुल, पानी के इसी सुंदर और ऐतिहासिक संगम का एक ऐसा जीवंत उदाहरण है आनंद हमारे देश में कि जिसे देखकर आंखें ठहर सी जाती हैं। यानी राजस्थान की वीर भूमि जिसे हम किलों और महलों के लिए जानते हैं, वहाँ एक ऐसा शहर भी है जिसे दुनिया झीलों की नगरी कहती है,
0: उदयपुर। बिल्कुल उदयपुर, और उदयपुर का नाम लेते ही सबसे पहले आंखों के सामने तैर जाती है पिछोला झील। क्या गजब सौंदर्य उसका, आपको जानकर हैरानी होगी। इस ऐतिहासिक झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में पीछू नाम के एक बंजारे ने करवाया था।
1: सच में? हाँ। एक बंजारे ने, और बाद में तो महाराणा उदय सिंह जी ने इसके निर्माण के लिए इसके किनारे अपनी राजधानी बनाई और इस झील का और भी विस्तार किया।
0: तभी तो ये भारत की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध कृत्रिम झीलों में से गिनी जाती है, जिसने इतिहास में कई उतार कई चढ़ाव देखे हैं।
1: और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो इसके बीचों बीच बने वो आलिशान द्वीप महल हैं, जैसे जग निवास और जग मंदिर।
0: हाँ, सफेद एकदम संगमरमर से बना ताज लेक पैलेस, तो ऐसा लगता है कि मानो पानी की लहरों पर कोई तैरता हुआ महल हो। और शाम के समय जब अरावली की पहाड़ियों के पीछे सूरज छिपता है तो इस झील का नजारा

0: किसी सुनहरे ख्वाब जैसा लगता है।
1: वाकई आनंद पिछोला झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास, अद्भुत वास्तुकला और प्रकृति के अनूठे मिलन की एक अमर कहानी है, जो हर सैलानी के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है।
0: तो दोस्तों, अगर आप भी अब तक इस जादुई दुनिया को नहीं देख पाए तो इस बार अपना बैग उठाइए और निकल पड़िए राजस्थान की इस खूबसूरत मरुधरा की ओर, और इसी खूबसूरत वादे के साथ कि हम अपनी धरोहरों का सम्मान करेंगे और गुनगुनाएंगे ये गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: दोस्तों, आज के दौर में हर कोई बिना मेहनत के और रातों रात अमीर बनना चाहता है, और इसी चक्कर में लोग सोशल मीडिया पर बिना रिस्क के लाखों कमाए जैसे विज्ञापनों के जाल में फंस जाते हैं। जी हाँ, ये ठग पहले फर्जी एप्स पर थोड़ा मुनाफा दिखाकर भरोसा जीतते हैं, और फिर जैसे ही कोई अपनी बड़ी कमाई लगाता है ये गायब हो जाते हैं।
3: बिल्कुल, असल में लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट कोई सट्टा या लॉटरी है, जबकि ये तो कंपनियों की हिस्सेदारी यानी शेयर्स को खरीदने और बेचने की एक मंडी है।
2: दोस्तों, जब कंपनी अच्छा काम करती है तो निवेशकों को फायदा होता है, वरना नुकसान। लेकिन डिजिटल युग में कुछ लोग जानबूझकर झूठी अफवाहें फैलाकर शेयर्स के दाम बढ़ा देते हैं,
3: और पैसों की ये दुनिया जितनी चमकती हुई दिखती है ना, इसके पीछे उतने ही गहरे गड्ढे भी हैं साथियों।
2: खूब गहरे।
3: पर अच्छी बात ये है कि इस बाजार के समुंदर में एक बड़ा चौकीदार मुस्तैद रहता है।
2: हाँ, ये तुमने बड़ी अच्छी बात कही, और उस चौकीदार का नाम है महानियंत्रक बोर्ड, यानी कि जिसे हम सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड कहते हैं।
3: इसकी नींव आज से करीब 38 साल पहले यानी 12 अप्रैल 1988 को एक आम संस्था के रूप में रखी गई थी, ताकि बाजार के कामकाज को संभाला जा सके।
2: उस समय दोस्तों इसके पास वो कानूनी डंडा नहीं था जिससे ये अपराधियों को सजा दे सके। फिर 30 जनवरी 1992 को संसद ने एक बड़ा कानून पास किया,
3: और उस कानून ने इस बोर्ड को असीमित शक्तियों और एक स्वतंत्र कानूनी दर्जा सौंप दिया। इसका मुख्यालय जो है वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में समंदर के किनारे गर्व से खड़ी है,
2: और इसका सिर्फ एक बड़ा मकसद है कि आपके और हमारे जैसे आम निवेशकों का भरोसा और पैसा इस बाजार में कभी डूबने ना पाए।
3: बिल्कुल, जो डिजिटल ब्रोकर कंपनियां होती है या जो कंपनियां बाजार से पैसा उठाती है, उन सबको इस अंपायर के कड़े नियमों के दायरे में ही रहना पड़ता है। आनंद,
2: दोस्तों अगर कोई कंपनी या कोई रसूखदार इंसान अंदर की खबरें लीक करके गलत तरीके से फायदा कमाने की कोशिश करता है तो ये बोर्ड चील जैसी नजर रखता है उसके ऊपर।
3: बिल्कुल, और ये तुरंत उनका खाता सील कर देता है, करोड़ों का जुर्माना ठोकता है और उन्हें हमेशा के लिए बाजार से बेदखल कर देता है। इस तरह ये हमें धोखाधड़ी से भी बचाता है।
2: बाजार में अंपायर तो मुस्तैद है, पर अपने घर के दरवाजे पर ताला हमें खुद ही लगाना होगा। दोस्तों, किसी भी अनजान लिंक या जादुई विज्ञापन पर कभी भरोसा ना करें। बिल्कुल, और हमेशा सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के जरिए ही निवेश करें, लालच से बचें और होशियार बने रहें।

माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आजकल युवाओं पर काम और करियर का इतना दबाव है आनंद कि न चाहते हुए भी उन्हें दिन रात लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन से चिपके ही रहना पड़ता है।
2: ये तुमने बड़ी सही बात कही, यह स्क्रीन टाइम अब उनकी मजबूरी बन चुका है। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो आधा जीवन इसी 5 इंच की स्क्रीन में सिमट गया है। सुबह की शुरुआत भी नोटिफिकेशन देखने से होती है और रात की नींद भी स्क्रीन स्क्रॉल करते करते उठती है।
1: बिल्कुल, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है। शायद आज की भाग दौड़ और पढ़ाई नौकरी के दबाव के बीच ये स्क्रीन ही उनके लिए मनोरंजन का, या यूं कहे कि सबसे बड़ा आसान साधन बन गए।
2: सही बात है।
1: लेकिन दिन भर का तनाव दूर करने के लिए उन्हें लगता है कि बस फोन उठाओ और दुनिया भूल जाओ।
2: सही बात है, बिल्कुल। और तनाव मिटाने के तरीके अब बहुत बदल गए हैं। पहले लोग शाम को दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते थे, लेकिन अब देर रात तक जाकर वेब सीरीज देखना या बाहर घूमना ट्रेंड बन गया है।
1: आजकल वीकेंड आते ही युवाओं में नाइट आउट का क्रेज साफ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि पूरी रात बाहर सड़कों पर घूमो या कैफे में बैठकर लाइफ एंजॉय करना और स्ट्रेस से दूर रहना।
2: लेकिन दोस्तों, मनोरंजन का ये तरीका सेहत और नींद के चक्र को पूरी तरह बिगाड़ देता है। देर रात बाहर रहने से सुरक्षा का तो जोखिम रहता ही है और घर पर माता पिता भी बड़े परेशान होते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो उनकी परेशानी हमको दूर करनी है।
1: वो तो है, तनाव दूर करने का ये तरीका खुद एक नया तनाव बन जाता है। इसलिए हमारे युवाओं को भी समझना होगा कि वे इस नाइट आउट के बढ़ते क्रेज से खुद को थोड़ा सा बचाएं।
2: इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि वे नाइट आउट की जगह डे आउट का प्लान बनाएं।
1: क्या बात है।
2: संडे की सुबह किसी पार्क में मिलना, कोई खेल खेलना या साथ में कोई हॉबी क्लास जाना, ये सुरक्षित भी है और मजेदार भी।
1: बिल्कुल, क्या शानदार आइडिया है। वैसे इसके अलावा युवाओं को दोस्तों के दबाव में आकर हाँ कहने के बजाय ना कहना भी सीखना होगा।
2: मना करने का अधिकार की हमेशा रक्षा होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और अगर सुरक्षा ही सही नहीं लगती तो साफ मना कर देना चाहिए।
2: बिल्कुल, और उसमें परिवार का साथ भी बहुत काम आता है। अगर वीकेंड पर घर का माहौल ऐसा हो जहाँ सब मिलकर इंडोर गेम्स खेले, बातें करें, तो युवाओं को रात में बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: बिल्कुल, घर में ही इलाज मिल गया। रात का समय शरीर को आराम देने के लिए होता है, ताकि हम अगले दिन के लिए तरोताजा हो सके। स्वस्थ मनोरंजन के ढेरों तरीके दिन के उजाले में भी मौजूद है।
2: इस नाइट आउट कल्चर की चकाचौंध से बचने का रास्ता किसी पाबंदी में नहीं है, बल्कि हमारी समझ में है। दोस्तों, जब हम रात के सन्नाटे का सम्मान करना सीख जाएंगे, उसे आराम और खुद से मिलने का जरिया बनाएंगे, तो हमारी सुबह अपने आप जादुई हो जाएगी। असल जिंदगी रातों के शोर में नहीं, बल्कि सुबह के उस शांत शुरुआत और उस मुस्कुराहट में है।
1: क्या बात है। और जब जिंदगी मुस्कुराती है, जब मन में ऐसा ठहराव हो और सुकून हो, तो रूह अपने आप ही गुनगुनाने लगती है, कोई धुन को ढूंढने लगती है। ऐसा लगता है मानो हवाएं भी हमारे कानों में कोई पुराना सा मीठा सा तराना घोल रही हो।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। तो दोस्तों, आप लोग नाइट आउट से बचे, और ये भी एक प्रकार से आपकी राष्ट्र के प्रति एक सेवा होगी, क्योंकि इस प्रकार रात्रि के समय घूमना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, और स्पेशली दूसरों की सुरक्षा के लिए भी हानिकारक होता है। और हमारे जो फौजी भाई है वो हर दिन रात राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं। तो आइए हम सुनते हैं कैलाश खेर का ये संदेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है, तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं।

0: कैलाश थे।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: दोस्तों, जिंदगी भी कितनी अनमोल है ना, लेकिन अक्सर हम इस भाग दौड़ में भूल जाते हैं कि इस खूबसूरत जिंदगी को जीने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है हमारा ये शरीर। आज हमने जो बातचीत की शुरुआत करी वो यहीं से तो की थी। हम यही तो बात कर रहे थे कि हमें स्वस्थ रहना है। हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि ये काया ही है जीवन का पहला श्रृंगार, स्वस्थ रहे जो तन तो महके संसार।
1: क्या बात है।
0: लाख कोशिश हो दुनिया में सब फीकी लगती है अगर टूट जाए इस सांसों के तार का दुलार।
1: क्या बात है।
0: तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल 100% सच। लोग गाड़ी की सर्विसिंग समय पर तो कराते हैं, मकान की मरम्मत भी करवाते हैं, लेकिन इस काया का क्या, इसको तो भूल ही जाते हैं।
0: हाँ।
1: जबकि सच तो ये है कि अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की

0: सारी दौलत, सारा ऐशो आराम, सब कुछ बेकार है।
1: बिल्कुल,
0: तंदुरुस्ती ही तो है जो असल में हमारी सबसे पहली और आखिरी पूंजी। और वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया।
1: जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो मन में सकारात्मक विचार आते हैं, चेहरे पर एक अलग ही नूर होता है, चेहरा चमकने लगता है शानदार तरीके से। इसलिए थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, अपने शरीर को थोड़ा बहुत घुमाना फिराना चाहिए, कष्ट देना चाहिए भाई साहब। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे इस विशाल और सुंदर शरीर को भीतर से संभाल कौन रहा है, यानी कि इसकी नींव क्या है?
0: नींव यानी वो अदृश्य ताकत या वो छोटे छोटे हिस्से जो मिलकर हमें हम बनाते हैं, यानी विज्ञान की नज़र से देखें तो वो है कोशिका, जिसे हम जीवन की सूक्ष्मता इकाई कहते हैं।
1: हाय हम खैर शिवानी, कोशिका दिखने में इतनी महीन कि आंखों से ओझल रहे, लेकिन इसका वजूद इतना गहरा है, इस पर भी एक छोटा सा ख्याल मन में आता है।
0: बिल्कुल,
1: जो सागर की एक बूंद है वही तो सागर का आधार है, जो इस मिट्टी का एक कण है उसी में तो पूरा संसार छिपा हुआ है। वैसे जो दिखती नहीं है इन आंखों से, आसानी से उसी एक नन्ही कोशिका में धड़कता जीवन का उपहार है।
0: क्या बात है, कितना गहरा और सुंदर विचार दिया है आनंद। सच में हम खुद को एक इंसान के रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे भीतर अरबों खरबों ऐसी नन्ही नन्ही कोशिकाएं हैं जो बिना थके बिना रुके लगातार काम करती रहती है। वे आपस में इस तरह तालमेल बिठाकर रखती है जैसे कोई बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो, जहाँ हर साज की अपनी ही एक अलग धुन है, अपना ही साज है।
1: क्या बात है, जब हम सांस लेते हैं, हम चलते हैं, यहाँ तक कि जब हम सोते हुए सपने भी देख रहे होते हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाएं हमारे भीतर एक मौन साधना में जुटी होती है। वे ऊर्जा बनाती है, हमारे जख्मों को भरती है और हमारे वजूद को बचाए रखती है। दोस्तों, हमारा शरीर एक जीती जागती चलती फिरती कायनात है। लोग इसे कई बार मशीन कह देते हैं, ये मशीन कहना वास्तव में इसकी तौहीन है।
0: बिल्कुल,
1: ये एक वास्तव में हमें ईश्वर के द्वारा मिला हुआ एक उपहार है, और इस उपहार की रचना में जो इकाई का काम करती है, जो ईंट का काम करती है, जो नींव का काम करती है, वो कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं के बिना ये शरीर अधूरा है।
0: बिल्कुल, और सबसे खूबसूरत बात ये है आनंद की कोशिकाएं सबसे हमसे कुछ भी नहीं मांगती, बस थोड़ा सा पोषण, शुद्ध हवा और हमारे मन की प्रसन्नता, और इसके साथ ही थोड़ी सी कसरत भी। जब हम खुश रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार लाते हैं और अपने शरीर का सम्मान करते हैं, तो हमारे भीतर की ये अरबों कोशिकाएं भी जैसे खिल उठती है, जैसे धन्यवाद कहती है कि वाह, तुमने तो हमारा दिन ही बना दिया।
1: सही कहा, इसलिए जीवन का महत्व तभी है जब इस शरीर का महत्व समझा जाए, और शरीर का महत्व तब है जब हम इसकी बुनियादी इकाई यानी इन कोशिकाओं की सेहत का ख्याल रखें। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस अनमोल काया को थोड़ा और ऊर्जावान बनाते हैं और सुनते हैं सुकून से भरा एक बेहद सुरीला गीत।

0: तो साथियों, अब वक्त है रोजगार सूचना का। हमारे युवा साथी इन सूचनाओं का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि आज के समय रोजगार प्राप्त करना हर युवा चाहता है और समय पर अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाना भी। तो दोस्तों, बेफिक्र रहिए, हम आपके लिए नियमित रूप से रोजगार सूचना लेकर आते हैं। तो आज की रोजगार सूचना है आरआरबी की ओर से। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड 3 भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
1: और इसके कुल पदों की अगर हम बात करें तो वो है 6557। इच्छुक युवा साथी 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
0: और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए rrbapply.gov.in पर विजिट किया जा सकता है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, अंतिम तिथि पास ही है। अभी जाइए, अपना फॉर्म सबमिट कीजिए और तैयारी में जुट जाइए।
1: बिल्कुल।

0: और दोस्तों अब वक्त हो चुका है आपसे पूछे गए सवालों का जवाब देने का। निश्चित रूप से हमारे दोस्तों ने उनके जवाब ढूंढ लिए होंगे, तो जल्दी से अपने आंसर्स मिला लीजिए। हमारा पहला प्रश्न था,
1: वर्ष 2026 के एशियाई खेल का आयोजन किस देश में होना तय हुआ है, और इसका सही उत्तर है जापान।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर तो आप सब जानते ही होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों ये थे हमारे दो सवाल। दोस्तों घड़ी की सुइयां कहती है कहानी, हर लम्हा है खास, ये समझना है जरूरी।
1: बीत गए वक्त को हम वापस नहीं ला सकते, इसलिए आज को जीकर मुस्कुराना है जरूरी।
0: क्या बात क्या बात क्या बात, बिल्कुल दोस्तों वक्त की कीमत को समझना जरूरी है। एक बार समय चला गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए अपने आज को खुल कर जिए। दोस्तों समय इशारा कर रहा है आपसे विदा लेने का।
1: उम्मीद है हमारी बातें आपके दिलों को छू गई होंगी। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें
0: और नमस्कार।

सभी युवा साथियों ने सुना अपना युववाणी कार्यक्रम। प्रस्तुति आनंद कुमार पुरोहित और शिवानी सोनी की थी। मीडियम वेव 215.05 मीटर पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

रात 8 बजे इस सप्ताह संसद में, रात 9:30 पर विज्ञान भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

ग्रामीण भाई अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7 बजे। आज के इस कार्यक्रम में आप ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपने फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गुंजे गांव गुआड़।

बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण प्रसारित होगा हमारे केंद्र से रात्रि 8:15 पर। आज आप सुनेंगे इसकी 154वीं कड़ी। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय के होंगे, प्रस्तुति श्रीमती पुनीत बिश्नोई की और संयोजन श्री अमित सिंह का।

फिल्म संगीत का शीर्षक गीत कार्यक्रम प्रसारित होगा हमारे केंद्र से 6:05 पर। अलावा इसके फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 9:15 पर।

तथा कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट

0: से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए CJP के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि NEET UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने

0: और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शीर्षक गीत। श्रोताओं, आज के इस शीर्षक गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 7 शीर्षक से कुछ फिल्मी गीत। ये है कार्यक्रम का पहला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। फिल्म का नाम है हमराज।

जी हाँ दोस्तों, हमारा भी वादा है कि आपका जो साथ हमें मिला है तो हम भी आपके लिए साथ शीर्षक से कुछ और गीत आपको सुनाएंगे। बहरहाल महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में ये था हमराज फिल्म का गीत। साहिर के बोल थे और संगीतकार रवि का संगीत। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए साथ शीर्षक से फिल्म कालिया का ये गीत। आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

0: दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कि अपनों का साथ इस जीवन में होना जरूरी होता है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: सौदागर फिल्म का ये शीर्षक गीत

यह बात चाहे सुख की हो या दुख की, हमें हमारे जीवन में साथ जरूरी होता है। रविंद्र जैन का लिखा और रविंद्र जैन का ही संगीतबद्ध फिल्म सौदागर का गीत आप सुन रहे हैं। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है साथ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और ये है तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी की गीत रचना है और शंकर जयकिशन की संगीत रचना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो आदर्श है हर साथी के लिए, हर जीवन साथी के लिए। फिल्म प्यासा सावन का ये गीत है कमलेश अवस्थी की आवाज में।

संतोष आनंद की इस गीत रचना को सुरों में ढाला है संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये गीत एहसास दिलाता है साथ न होने का और बताता है साथ का महत्व भी।

बस कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमारा साथी या हमारा जीवन साथी कभी भी हमसे रूठे नहीं। अगर रूठ जाए तो उसको मना लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम शीर्षक गीत, और आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक था साथ।

कमलेश अवस्थी की आवाज में गाई फिल्म प्यासा सावन के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन समाप्त, प्रदर्शनकारियों से तत्काल वापस लौटने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा युवाओं के हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। और प्रदेश में इस सीजन में अब तक कम बारिश हुई, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की बैठक हुई। इसके बाद सीजेपी की ओर से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई और प्रदर्शनकारियों से तत्काल प्रभाव से वापस लौटने का आग्रह किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास तथा आशुतोष राका से लंबी बातचीत की। इसके बाद हुई प्रेस वार्ता में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है।
1: हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की।

0: सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर इन ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। तो वी वुड लाइक टू ऑल्सो विथड्रॉ।
1: श्री नड्डा ने प्रेस वार्ता में बताया कि नीट पेपर लीक मामले के प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है, उन्हें नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में सुधारों पर मंथन होगा।
2: कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, तो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने के बाद कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है। एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन की घटनाओं से उनका मन दुखी था। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और वे युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं उठा सकें। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए नए कानून पर मोहर लगाई है, जिसमें दोषियों को फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए 3 महीने में सजा सुनाने का प्रावधान है। दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम छात्रों के हित में है और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। सहकारिता के मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी की आज से जयपुर में शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने HCM रीपा से इस सेवा को शुरू किया। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक भी मौजूद रहे। भारत टैक्सी आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के लिए लाभदायी परिवहन व्यवस्था की दिशा में अहम पहल है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, साथ ही ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल ने आज जयपुर में चरक भवन में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भी मुलाकात की। लोकभवन में हुई इस भेंट में दोनों ने देश और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अंग प्रत्यारोपण सहित कई महंगे इलाज मुफ्त मिल रहे हैं। मां योजना में अब तक 2600 से ज्यादा मरीजों को राजस्थान और अन्य राज्यों में अंग प्रत्यारोपण तथा दूसरे इलाज का लाभ मिला है। इन उपचार पर अब तक 120 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। योजना के तहत जयपुर में 1200 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। इसके अलावा कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किए गए। योजना में 107 मरीजों ने राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों के अस्पतालों में इलाज करवाया। गौरतलब है कि अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपचार पूरी तरह कैशलेस है और मरीज को इलाज के लिए कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ती।

प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाम विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी देश भर के 400 से अधिक युवा प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने की 4 से 30 तारीख तक दो चरणों में हुआ था। प्रतिभागियों का चयन एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। इसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 27वां करगिल विजय दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन ऑपरेशन विजय के अमर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का पावन अवसर है, जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों से मुकाबला कर देश की संप्रभुता की रक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल संघर्ष की शुरुआत मई 1999 में हुई, जब पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर करगिल, द्रास और काकसर क्षेत्रों की चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई वाली दुर्गम चोटियों, बर्फीली ठंड, ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच जीत हासिल की। करगिल विजय दिवस पर समूचा राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा करने वाले अमर वीरों को नमन करता है। इस मौके पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर आज 2 दिन के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर मुख्य करगिल विजय दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में अब तक सिर्फ फलौदी जिले में ही असामान्य बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 25 जुलाई के बीच 5 जिलों में अत्यधिक, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। इस बीच सरहदी जिले जैसलमेर में आज सुबह से ही रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। बाड़मेर जिले के चौहटन, बीजासर, नवातला और अन्य क्षेत्रों में बरसात से कई जगह पानी भर गया और कच्चे मकान ढह गए। वहीं कल श्रीगंगानगर और सिरोही जिले में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। आबूराज में 20 सेंटीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग ने आज बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, पाली, जालौर और सिरोही जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। कल उदयपुर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। हालांकि ज्यादातर हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आम जन को जागरूक किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई रखने तथा जल भराव रोकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप असवाल ने मौसमी बीमारियों में बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने की अपील की है।
2: हमने सभी जिलों में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमने सभी जिलों में डायरेक्शन जारी की गई, जो इस मौसम में मच्छर जनित रोगों, जल जनित रोगों और श्वसन रोगों के संबंध में क्या क्या सावधानी हो और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया आशा और एएनएम है, इनको भी आमुखीकरण एक बार हर साल की तरह फिर से हम करते हैं। हालांकि ये निरंतर काम होता है, लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसके लिए हम बार बार आमुखीकरण करते हैं, विशेषकर इस मौसम के लिए। मानसून का आनंद लें बहुत जरूरी है, लेकिन वो आनंद लगातार रहे इसके लिए सजग रहें, चिकित्सा कर्मियों की बात सुने और समय रहते चिकित्सक को दिखाएं, विलंब नहीं करें।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर के जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज की सराहना

0: घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यहां शूटिंग एकेडमी शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। श्री राठौड़ आज जगतपुरा शूटिंग रेंज में नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में बोल रहे थे। उन्होंने प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में विजयी रहे निशानेबाजों को पदक प्रदान किए। 23 जुलाई से शुरू हुए और 29 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन समाप्त, प्रदर्शनकारियों से तत्काल वापस लौटने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा युवाओं के हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। और प्रदेश में इस सीजन में अब तक कम बारिश हुई, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अविनाश मल्होत्रा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त हस्तांतरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम मिनी सचिवालय में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से योजना की 23वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। कार्यक्रम में जिले के 1,45,114 लाभार्थी किसानों को 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि, सेना के अधिकारी, जवान, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। अलवर शहर में सिंचाई विभाग द्वारा 3,34,00,000 रुपए की लागत से बने भाखेड़ा एनिकट का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस एनिकट को जनता को समर्पित किया। इस एनिकट से जल संरक्षण और भूजल स्तर में वृद्धि होगी और शहरवासियों के लिए एक नया पर्यटन स्थल मिलेगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने नटनी का 12 से जैसमन झील तक करीब 36 करोड़ रुपए की राशि से नहर पक्कीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। नहर पक्कीकरण के कार्य से जैसमन झील तक अधिक पानी पहुंचेगा तथा भूजल स्तर में वृद्धि होगी और किसानों को भी सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। अलवर में नीट यूजी परीक्षा 2026 का आयोजन जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। जिले में कुल 9,731 अभ्यर्थियों में से 8,945 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अलवर जिले में 3,089 वरिष्ठ नागरिकों ने निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए आवेदन किए। अलवर के कलेक्ट्रेट सभागार में इसके लिए लॉटरी निकाली गई, जिनमें 1600 यात्रियों को निशुल्क यात्रा के लिए चयन किया गया। 181 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा के तहत तथा 1489 यात्री रेलगाड़ी के जरिए तीर्थ यात्रा करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का 28 जून को जिला मुख्यालय पर आयोजन हुआ, जिसमें 14,770 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा जिला मुख्यालय पर 53 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक के 2,75,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने राजकीय चिकित्सालय में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो मुक्त भारत का संदेश दिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर अलवर में एनटीसीए द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में टाइगर रीइंट्रोडक्शन, अवसर और चुनौती विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया पर्यटकों के लिए 1 जुलाई से आगामी 3 महीने के लिए बंद हो गया है, लेकिन बफर जोन खुला है। इस एरिया में 2 पर्यटक जोन के लिए 19 जिप्सियां लगाई गई है, जो पर्यटकों को जंगल भ्रमण कराएगी। शिक्षा और पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर बीते दिनों अलवर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने रैणी तहसील में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

0: विद्यालय ईश्वाना के नवनिर्मित भवन तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पिनान के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने विभिन्न पंचायतों और ग्रामीण इलाकों का औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अलवर जिले के नारायणपुर के कोलाहेड़ा की बावड़ी की ढाणी निवासी वायुसेना के जवान विक्रम पायला का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। सेना के वाहन से उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ पैतृक गांव पहुंचा। जवान के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जवान विक्रम पायला को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 196 वर्ष पुराने ऐतिहासिक इंद्र विमान पर निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालु बाराती के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर अलवर जिला कलेक्टर की ओर से एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया। इसी के साथ अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी बीच भी बातचीत, पाछे नौजवानों रो आंदोलन खत्म, प्रदर्शन करण वालों तुरंत पाछा जावण री अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दिनो कहो नौजवान

0: समाचार बतावेला विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में शामिल होने वाला सागरी बातचीत करेला और प्रदेश में ही चौमासा में हाल ताई कम में वर्षियों 20 जिला में सामान्य और 15 जिला में सामान्य कम पानी वर्षियों समाचार सागर में सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में नौजवाना का न्यू चलाई चियो आंदोलन खत्म फेवन रो ऐलान करती हो चियो है नई दिल्ली में आज खबर नवीसा सागे बातचीत रे दौरान कॉकरोच जनता पार्टी रा प्रवक्ता आशुतोष राका कहो कि सरकार वारी मांगा मान लेनी है
1: हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर ताकि हम लोग मिलकर इन ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विथड्रॉ
0: इन पहले केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा बीच आज नई दिल्ली में तीजा दौर री मीटिंग हुई केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सीजेपी रा प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष राका सागे लंबी बातचीत कीनी ई पाछे सीजेपी आंदोलन खत्म करन रो ऐलान करता था का प्रदर्शन करन वाला पाछा लौट जावन री अरज कीनी श्री नड्डा खबर नवीसा ने बतायो कि नीट पेपर लीक मामला में प्रदर्शन करन वाला रे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जावेला वह कहो कि नीट पेपर लीक रा पीड़ित परिवारों रा प्रति सरकार री पूरी सहानुभूति है अरवाना नियमा रे मुताबिक मुआवजो दियो जावेला नड्डा कहो कि शिक्षा व्यवस्था में सुधारा रा बारा में विचार करियो जावेला
2: कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है हमारी भी सहानुभूति है एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दे दिनो है वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफो सौंपण री जानकारी दीनी मारा इस्तीफा माए श्री प्रधान मांडियो कमारी परीक्षा माफिया रे कारण कई विद्यार्थी री जिंदगी खराब नी वेवन देवन री कोशिश रही श्री प्रधान मांडियो का लाडला 10 दिन माए देश माए विद्यार्थियों का न्यू रीट परीक्षा पेपर लीक रा मामला माए कर जा रहा प्रदर्शन वह दुखी है वह मांडियो

0: के नौजवान भारत रो भविष्य भी बन सके नुओ और विकसित भारत बनावन वाला है जो देश री असली ताकत है। श्री प्रधान आगे मांडियो के जंतर मंतर सामी और आखा देश माए लाडला दिना उपजा हालात विद्यार्थियों रो भविष्य कानूनी दाव पेच माए उलझन बचावन और वारो भगत पढ़ाई माए लगार करियर बनावन माए कामयाबी हासिल करन री मंशा सागे व प्रधानमंत्री ने इस्तीफो भेज दिनो है। वह कहो के नौजवान देश सब मोटी ताकत है और वह इन्हें भ्रम राकू चक्र माए नी फंसबा देवेला। श्री प्रधान कहो के वह इस्तीफा ई कारण दिनो ताकि जंतर मंतर सामी और देश माए जो हालात बनिया वानो फायदो देश विरोधी ताकत नी उठा सके। ई बीच केंद्र सरकार पेपर लीक रा मामला रोकण सारू नुओ कानून बनाऊ नु तय किनो है जिन्हें तेत दोषियां ने फास्ट ट्रैक अदालत रे जरिए 3 महीना माए सजा सुनावन रो प्रावधान है। इन्हें तेत दोषियां ने 10 साल ताई री कैद और 10 करोड़ रुपए ताई रा जुर्माना री सजा दी जा सकेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहकारिता रा आधार ऊँच लाई चावन वाली भारत टैक्सी री आज जयपुर माए राखी जा कार्यक्रम माए शुरुआत कीनी। ई मौके केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश रा सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ई मौजूद हा। भारत टैक्सी जनता सारू आवन जावन री साफ कोई सागे फायदेमंद व्यवस्था री पहल है। इनरो मकसद मुसाफिरा ने आवन जावन री हिफाजत सागे किफायती भरोसेमंद और आसान सुविधा मुहैया करावन सागे गाड़ी चलावन वाला नई माली तौर मजबूत बनावनो है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना रा तहत गंभीर बीमारियां रा मरीजा ने उपतु अंग लगावन समेत कई महंगा इलाज मुफ्त मिल रहा है। मां योजना रा तहत हाल ताई 2,672 मरीजा ने राजस्थान और दूजा राज्य माए अंग प्रत्यारोपण और दूजा इलाज रो फायदो मिलियो है। इमाते हाल ताई 120 करोड़ रुपए बत्तो खर्चो करी चियो है। योजना रा तेज जयपुर माए 1,232 दूजी किडनी लगाई ची। ईसा गई कान माए कॉकलियर इम्प्लांट खून रो बोन मेरो ट्रांसप्लांट और हृदय और फेफड़ाई दूजा लगाई चिया। योजना रा तेत 107 मरीजा ने प्रदेश बाहर दूजा राज्य अस्पताल माए इलाज मुफ्त मिलियो। ध्यान जोग है कि उपतु अंग लगावन रा इलाज माए नकद रकम री जरूरत नी वह है और मरीज ने इलाज सारू कोई खर्चो नी करनो पड़े है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवेरा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनल AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप माथे करियो जावेला। ईसा गई AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे ही वो कार्यक्रम प्रसारित करियो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल सिंजा विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 माए शामिल होने वाला 432 लोगों सागे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बातचीत करन रो कार्यक्रम है। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लाडला महीना री 4 और 30 तारीख बीच है 2 दौर माए राखी चियो हो। इन माए सवाल जवाब री ऑनलाइन होल रे जरिए 3,62,000 नौजवान शामिल हुआ हा। 27वां कारगिल विजय दिवस काल मनायो जावेला। वो दिन 1999 माए भया करगिल युद्ध माए ऑपरेशन विजय रा अमर वीरा ने श्रद्धांजलि देवन सारू मनायो जावे है। करगिल युद्ध माए भारत रा रण बांकुरा पाकिस्तान रा फौजियां और घुसपैठियां मुकाबलो कर और देश री संप्रभुता री हिफाजत कीनी ही। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और पाकिस्तान बीचे करगिल री लड़ाई मई 1999 माए वी जद पाकिस्तानी फौजी और घुसपैठिया नियंत्रण रेखा पार कर करगिल द्रास और काक्सर हल्का री चोटिया माथे कब्जो कर लीनो। भारत री फौज जबरदस्त हिम्मत रो दर्शाव करता था का 16,000-18,000 फीट री ऊंचाई वाली मुश्किल चोटियां बर्फीला तूफान और ठंड ऑक्सीजन री कमी और दुश्मन री लगातार गोलाबारी बीचे जीत हासिल कीनी। कारगिल विजय दिवस रे मौके पूरो देश मायड़ भूमि री हिफाजत करण सारू जान री बाजी लगा देवन वाला अमर वीरा ने नमन

0: शेखर गणे कोर्सू ग्रामीण जगत कार्यक्रम रे उडीक में बैठा सगला किसान भाई बहना ने आप रे भाई तोड़ा राम आर
1: भरत कुमार जाजड़ारा घणन घणा रामी राम
0: राम राम।
1: तोड़ा राम भाई एक बात है, देखो बिरखा आउन नाली है, आप सगला जना जना के बिरखा आने से पहले पानी ने भेड़ो करने री पूरी व्यवस्था उजनी चीज है, पर भाई लोग अबार भी कही है जगह सजग होया को नहीं। देखो सगड़ा पहले तो कही है कि डागलो साफ कर लो ताकि बिरखा पानी कुंडीर में न जाप रहे, पर डागला अजब तक साफ करिया कौन कही कि बिरखा आई जानी साफ कर लेवा, ठीक है चलो वो तो हो जाएगा, पर खेत रे महीने है या दूसरी जगह साफ करना है पानी भेड़ो करना है कोई तैयारी कई जगह आज तक होनी हुई।
0: बिल्कुल, देखो कई खेतों में तो पानी इकट्ठो करने की व्यवस्था होया करे, पर कई भाई लोग खेत में अभी व्यवस्था है कोनी कि पानी इकट्ठो कर सके, तो आजकल एक नई पद्धति चालू हुई है भरत भाई के खेत में आप जिकी घास है जिकी ना आप खरपतवार बोल दिया करा या जिकी कचरो मान लिया करा बिनियो जितनी हो सके पूरे खेत में बिछा दो।
1: अच्छा।
0: ताकि वह बिरखा ओढ़ पानी जी को नहीं वो खेत रे माय नहीं रहे अठिन उठिन बेर नहीं जावे और बीर जी की जमीन री नमी है बा लंबे टाइम तक मोट।
1: बहुत ही बढ़िया बात बताई और पानी में नमी

0: ऐसी और ई भगत में अगर आप वृक्षारोपण करता तो फिर तो केणो ही कहीं
1: केणो ही कहीं बिल्कुल
0: सगलो सोरो अबारी लागे कोई भी पेड़ है जो को।
1: देखो मन री बात है कि मन कहवा नहीं कि मन चंगा तो कठोती में गंगा तो आप मन है कि पानी रा आप कई बार कहता भाई साधन को इकट्ठे भेड़ो करा साधन री जरूरत को नहीं मन री जरूरत है आदमी रास्ता हापी निकाल लिया करे
0: बिल्कुल सही बात
1: यही रास्ता मसूं कई रास्ता ए है कि भाई जो थे बताई दियो कि डागड़ा साफ हो जावे तो आप पर पानी भेड़ो करने की व्यवस्था हो जावे झोंपड़ी और है तो भी बट है बाखड़ और है बिने साफ सुथरी रखा जे आप पर कुंड बनी ओड़ो है तो बीर मायने भी पानी भेड़ो हो सके
0: बिल्कुल सही बात है। और अब देखो जरूरी बात है कि आज है शनिवार और आज होया करे भाई लोग आ रहे ई मेल या पत्र माथे आधारित गीता रे फरमाइशरी कार्यक्रम
1: बिल्कुल
0: और गुंजे गांव को आड़ी करे कर मैंने जो कहे घड़े मेल आउड़ है तो आप बाँची सा पर पहली भाई लोगों ने ठिकानों बता दा कि अगर कोई भी मैंने कागज भेजना चाहे या मेल भेजना चाहे तो वो ठिकानों नोट कर ले
1: बिल्कुल
0: सगा पहले मेल रो ठिकानों बता दूं ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail

0: गीता रे फरमाइशरी कार्यक्रम
1: बिल्कुल
0: और ई गूंजे गांव कुआड़ी कार्यक्रम मैंने जो कहे घड़ी मेल आउड है मैं तो आपा बाची सा पर पहली भाई लोगों ने ठिकानो बता दा के अगर कोई भी मने कागज भेजना चाहे या मेल भेजना चाहे तो वो ठिकानो नोट कर ले
1: बिल्कुल
0: सगाऊं पहले मैं मेल रो ठिकानो बता दूं ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com GRAMIN ग्रामीण JAGAT जगत और BIKANER बीकानेर @gmail.com
1: और जे आपा कागदियो लिखनो चावा तो भई लिखो कार्यक्रम गुंजे गांव गुआड़ आ ग्रामीण जगत कार्यक्रम द्वारा आकाशवाणी केंद्र बीकानेर और इते पते में सु अपारे पत्र पहुंच असीर आप रिजी के पसंद रख गीतर लाए बे आपने निजर हो जाए
0: बिल्कुल और अबे जको है भाई लोगों ने गीतर लो निजर करा पहल लो गीतर लो और पछे नाम बांध सुनाओ का फरमाइश ही केरी
1: बिल्कुल सा सुनाओ
0: तो सुनो सा अबे सिंह गहलोत्री आवाज में गीतर लो

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पहली बात देखो संदेश सुनो और संदेश में पहले आप सुन रहे हाँ अभय राम गहलोत गयोडो हरजस राम थारी नगरी में कई घाटो अभय सिंह गहलोत गयोडो। तो ई मैं सुनना चाहता हा सुराना मोला बीकानेर सुन
3: नरेश जी
2: कांतिलाल सुराना शरद सुराना मयंक सुराना विमल लालेंद्र होलेंद्र और रोनी जैन
3: हाँ।
2: राम सिंहपुर जिला गंगानगर सुन अशोक बब्बर पवन राजेश अजय राहुल आर मन्नू बब्बर जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर सुन अशोक कुमार साई संतोष साई राजश्री आर गौरव साई।
3: तेलंगाना निजामाबाद सु शेख अल्लाह बख्श बेगम रजिया शेख शेख अम रही मुन्ना वरण नगर कोल्हापुर महाराष्ट्र सु अमित नारायण सांगली जिले सु अल्ताफ हुजरे और गांव घमंडिया तहसील सूरतगढ़ गंगानगर सु जगदीश ढुकिया प्रमिला ढुकिया ज्योति सरिता तमन्ना सचिन विष्णु और शिवम ढुकिया।
2: गांव कुंदनपुरा जिला बाड़मेर सु जगदीश सुमरा मोहनलाल नरेश कुमार निम्बाराम आर सगलो सुमरा परिवार आर छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा सु राजेश सेन सुरेखा शुभम आर अक्षय सेन।
3: और अबे भाई लोगों ने नीजर करा सा आग लो घितर लो और बाद में बता सा आ फरमाइश ही केरी
2: सुनो।
4: सारा रे तुम तीन

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग एक तिहाई बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है, तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहां एक रोचक तथ्य है, साफ ऊर्जा स्रोत अब दुनिया की बिजली का लगभग एक तिहाई हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है।
3: तो साहब बुंगर खां रे गयोड़ो सुनियो गीत और इन्हें सुनना चाहता दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड सु मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहमद मिफरा नाज बेबी चाहत हरियाणा सु साहिल कागरा मोनिका आगरा प्रिंट सीताराम तनवी बाट और चक 15 पीएस जिला श्री गंगानगर राजस्थान सु सर्वजीत सिंह जोशन सर्वजीत कोर जोसन रोबिन और सिडनी ऑस्ट्रेलिया सु अदृश्य पाल।
4: इन अलावा सरधना मेरठ सु आदि जैन अंश जैन भव्य जैन बेबी अव्या और अंशिका जैन मालियान सरधना सु अनिल जैन संयम जैन मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन रायपुर छत्तीसगढ़ सु विनोद मंडलकर वीणा मंडलकर और विविधा मंडलकर। और अब भाई लोगों ने निजर करा सा आगलो गीतर लो और पछे बतावा फरमाइश ही के

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: Jan Janta.
1: चंपा मेथी आवाज रमे ने गीत सुनियो सा हिचकी और इन्हें सुनने वास्ते अडीक राखी ही कमला कॉलोनी बीकानेर सु सुभाष खत्री, गंगा शेर सु मंजुल मुकुल, भोपालगढ़ राजस्थान सु धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार और मुजफ्फरपुर बिहार सु आर्यन राज, रोहित राज और हैप्पी आनंद।
2: टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई सु अनुश्री प्रदीप यामिनी और वीणा कालिया, गाँव जाखद राजस्थान सु शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक।
1: ग्राम पोस्ट मऊ तहसील मंगरोल जिला बारा सु श्रवणलाल योगी, श्रीमती गायत्री योगी, सोनिया, उमा, मयंक और योगी परिवार, सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान सु रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गरवी।
2: गोविंदपुरा नीमका थाना सु दतार सिंह, संगीता तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, सेक्टर 18 जगदारी यमुनानगर हरियाणा सु विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और ईशानी।
1: और अबे भाई लोगा अपने निजर करूं सा आगलो गीत दो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।
2: जब सुन रहा

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: पल्लो लटके राम निवास राव और साथियों ने गायडो गीतड़लो सुनियो और इनने सुनो चाव तहा गांव सेसावा जिला झुंझुनू सु नेकी राम रेवाड़ संतोष ममता कृष्णा पार्क दिल्ली सु सुखविंदर सिंह जोज आर सिटी दीवाना।
2: गांव गोविंदगढ़ माजी वाली करणपुर राजस्थान सु राजू टूटेजा खुशदिल उर्मिला टूटेजा गुड्डू जीनू मनु शिव सेठी करणपुरी स्माइल टूटेजा अलक्ष्य जानी पायला कला जिला बाड़मेर सु मोहन लाल प्रजापत माणक दरिया कुमारी ऊषा बाला और पूरो प्रजापत परिवार।
1: नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान सु नरेंद्र सुथार मनोज शीशपाल और साथी पवन कुमार शंकर बिहारी शिव कुमार सोनू मिस्त्री और महेंद्र सुथार। गांव खिंदासर तहसील कोलई जिला बीकानेर सु कानाराम चौहान।
2: गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान सु योगेश कड़वासरा सचिन कड़वासरा सतीश कड़वासरा विक्रम कड़वासरा। गांव टुकिया तहसील सेणधरी जिला बाड़मेर सु कृष्ण कुमार डाबी भूपत कुमार डाबी राधा देवी डाबी विक्रम और अर्चना डाबी। तोड़ाराम भाई अबे थे निजर करो आग लो गीत।
1: बिल्कुल साहब सुनो चावरी आज का लोग है उडीक में बे सुनो सुबटियो मारकंडे रंगारे गयोड़ो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मार्कंडे रंगारंग एवडो सुगटियो सुनो ओसा आर इन सुनो चावता बेताब रेडियो श्रोता क्लब बिहार सुन वसीम अकरम यामिनी खातून आर गुड़िया खातून जजर हरियाणा सु बिटू भाटिया रीता भाटिया रजत भाटिया मयंक भाटिया आर पानीपत सु नरेश मल्होत्रा गाम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश सु सत्येंद्र कुमार चंसोलिया
3: चोटाला हरियाणा सु दारा पंडित बुलबुल जोशी दीवांशु जोशी गोना जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश सु कैलाश नारायण नामदेव दीपक कुमार नामदेव लखन लाल नामदेव चाहना नामदेव आकाश नामदेव रानी परी नामदेव मानेवड़ा रोड नागपुर सु देवेंद्र भटकर और सुशीला भटकर।
2: तो देखो अब आग लुगी तड़ो नजर करा भाई लोगों ने उड़ीक में बैठा है गीत सुनो

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: गणपत लाल डांगियार सत्यार गयड़ो गीतरलो सुनियो जे लोड मधुबनी सुईने सुन्नो चावरिया फिरोज खान उमा खान फरह खान आर अनुश्री बिहार एनक्लेव रायगढ़ सु प्रभारानी वीणा अदीबा नाज आर उमा नाज महाराष्ट्र सु है आदिनाथ विजय सुरलकर।
3: इसके अलावा कोल सिटी बरका कना सु अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू हरियाणा साथी भुज जिला कच्छ सु गंगा वणकर प्रीति जूली महिमा गीता विशाल विजय विराट और सगड़ो वणकर परिवार
2: अबे और कार्यक्रम रे छेकड़ ले तोरे पर तो श्री अनरो गीतरलो सुनादा बाजरिया
3: बिल्कुल पर नाम पहली बात चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल
3: नाम है सा दादरी गेट भिवानी सु इन्हें सुनने ने अडीक राग रहा कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा कुणाल मेहरा अरियारा साथी
2: रायगढ़ सु रोहित जयलक्ष्मी ऋषभ अंश लक्ष्मी श्रीमती जयंत्री रामगढ़ गैंट सु महेंद्र बोधी ठाकुर साहब
3: तो सुनो सा ओगी तड़लो

0: बाजरिया थारो खीचड़ो लागे घणो स्वाद। सरिता गोस्वामी रे गायोड़े ई गीत रे सगई आज रे गूंजे गांव गुवाड़ कार्यक्रम रो भगत होरियो पूरो आप रे भाई तोला राम अर
1: भरत कुमार जादड़ ने देव सा सीख घणान घणा राम राम, राम।

सभी ग्रामीण भाइयों ने सुना अपना ग्रामीण जगत कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।

सहनी के स्वर में अभी आपने सुनी सत्यदेव शर्मा की ये गीत रचना। सुगम संगीत कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए राजीव भट्ट के स्वर में प्रमिला राजीव की लिखी ये गीत रचना।

किशोर ने प्रोमिला राजीव की लिखी इस गीत रचना को सुनने के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए डॉक्टर प्रेम सिंह भंडारी की लिखी डॉक्टर प्रेम सिंह भंडारी के स्वर में विजय वर्मा की ये गीत रचना।

0: डॉक्टर प्रेम सिंह भंडारी के स्वर में गई इस गीत रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8 बजने को है अब इस सप्ताह संसद में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मानसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे

तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में

तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट
और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खरगे

की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026

0: पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे इस सप्ताह संसद में। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी 154वीं कड़ी। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय के हैं, प्रस्तुति श्रीमती पुनीत बिश्नोई की और संयोजन श्री अमित सिंह का।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। बीकानेर दर्पण के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीते सप्ताह बीकानेर में कई कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन हुए, उन्हीं में से कुछ गतिविधियों की झलकियां हम लेकर आए हैं इस अंक में। बीकानेर दर्पण के इस अंक के पहले पायदान पर है पोकरमल राजरानी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में कथाकार श्री राजेंद्र जोशी की राजस्थानी कहानी संग्रह सारंगी का लोकार्पण। जी हां श्रोताओं, दिनांक 21 जुलाई को आयोजित हुए इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता की डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने। मुख्य अतिथि के रूप में थे श्री मालचंद तिवाड़ी। अध्यक्ष उद्बोधन में कहा कि जोशी का कथा कहन की बुनावट और पात्र अनुरूप कथानक पढ़ने में दक्ष है और उनकी कहानियां समाज की विकृतियों को समझने के साथ साथ समाधान की दिशा भी दिखाती है। वहीं मुख्य अतिथि श्री मालचंद तिवाड़ी ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा सृजन जरूरी है जो दिशा दे। श्री तिवाड़ी ने जोशी का लेखन इन मानकों पर खरा उतरता है ये भी कहा। लोकार्पण के पश्चात हमने बात की सारंगी कथा संग्रह के लेखक कथाकार श्री राजेंद्र जोशी से।
1: देखिए, आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे निरंतर सामाजिक मुद्दों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहा है और आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। मेरी सारंगी राजस्थानी कहानी संग्रह है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ये 10वां कहानी संग्रह है और राजस्थानी का 5वां कहानी संग्रह है। मेरा ये प्रयास रहा है कि मेरे लेखन के माध्यम से जो समाज में हकीकत है, जो विसंगतियां हैं, जो अबखायाँ हैं, वह समाज के सामने आनी चाहिए। मेरी कहानियों के माध्यम से, मेरी कविताओं के माध्यम से एक सशक्त बात समाज में आए और मेरी रचनाओं के माध्यम से सांप्रदायिक समरसता और मनुष्यता की बात उजागर होनी चाहिए। सारंगी भी उसका

0: सीता जागता उदाहरण है। आप देखेंगे कि इस सारंगी कहानी संग्रह में 13 कहानियां हैं। 13 कहानियों में जीवन का संघर्ष है, हकीकत है, सामाजिक विसंगतियां हैं, अबखाया और मिनख संवेदनाओं ने गहराई से प्रकट करने का विचार है। और कुछ ऐसी कहानियां हैं, जैसे मैं एक कहानी जीवंती लाश के बारे में बताऊं कि वो व्यवस्था की अमानवीयता पर तीखा प्रहार करती है। सारंगी और बुरी गार्ड नज़र स्त्री संवेदनाओं की कहानियां हैं। और मातृत्व और लैंगिक समानता के सवाल पर नए दृष्टिकोण से यह कहानियां आपके सामने देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है करज। यह किसानों की अधिकारों की बात करती है, किसान आंदोलन की बात करती है, किसान का जो जीवन है वो किस तरीके से ऋण लेकर के खेती करता है और अपनी उदर पूर्ति करता है, इसकी बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और प्रभावी तरीके से कहने का प्रयास किया गया है। वैसे आप जानते हैं कि राजस्थानी साहित्य संस्कृति लोक से निकला हुआ मामला है और लोक में वो सारी चीज़ें मौजूद होती है और लोक हमेशा सच के करीब होता है।
1: इसका जो शीर्षक है सारंगी, तो सारंगी नाम की इसके अंदर कोई कहानी होगी?
0: देखिए, सारंगी शीर्षक कहानी है, एक स्त्री विमर्श की कहानी है और एक सारंगी उस लड़की का नाम है जो काम करती है किसी अफसर महिला और अफसर पुरुष के घर में है और उसके साथ अमानवीयता जो होती है, उसके साथ जो आप देखिए कि अत्याचार होता है वो उसका विरोध करती है और वो विरोध करती है, लेकिन वो परिवार का सारंगी के बिना काम भी नहीं चल पाता है। तो वो इस तरीके की जो पारिवारिक नौकरों के लिए हिंसा होती है उस हिंसा को सबके सामने लाने का प्रयास करती है।
2: और अब हम आपको लिए चलते हैं उस कार्यक्रम में जहां सृजन के 3 महानुभावों का सम्मान किया गया। दिनांक 20 जुलाई को स्वर श्रृंगार कला केंद्र समिति की ओर से कीर्ति शेष भजन गायक फकीर चंद मोदी की स्मृति में स्वर श्रृंगार साहित्य सम्मान 2026 का आयोजन स्थानीय महाराजा नरेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में हुआ। समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ गायक पूनम चंद मोदी ने बताया कि कीर्ति शेष भजन गायक फकीर चंद मोदी की स्मृति में राजस्थानी हिंदी व उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कवि कथाकार कमल रंगा, कवित्री डॉ. मेघना शर्मा और जयपुर के शायर शफीक अहमद वारसी को स्वर श्रृंगार साहित्य सम्मान 2026 अर्पित किया गया। सम्मान के क्रम में शॉल, श्रीफल, सम्मान पत्र और फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। आइए बात करते हैं कार्यक्रम के आयोजक गायक पूनम चंद मोदी से।
3: नमस्कार, मैं पूनम मोदी स्वर श्रृंगार कला केंद्र बीकानेर का मैं अध्यक्ष के रूप में बोल रहा हूँ और वैसे मैं एक व्यवसायी हूँ और ये मैंने शायरों के लिए और कवि और कवित्रों के लिए मैंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया था। पिछले साल भी हमने एक प्रोग्राम किया, ये मेरे सेकेंड प्रोग्राम है। इसमें हमने 3 विभूतियों को सम्मानित किया, जिसमें सबसे पहले हमारे राजस्थानी भाषा के कमल जी रंगा साहब, जिनके मैं बहुत ही तहे दिल से इज्जत करता हूँ और बहुत गुणी व्यक्ति हैं और राजस्थान की भाषा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। दूसरा हमने डॉक्टर मेघना शर्मा जी को सम्मानित किया था, जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और पेशे से वो गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर के पद पर कभी सेवा दे रही हैं, उनका सम्मान किया। तीसरे हमारे जयपुर से युवा साथी थे शफीक अहमद वारसी, जो एक युवा शायर हैं, उनको हमने जयपुर से बुलाया बीकानेर के अंदर और तीनों विभूतियों को हमने सम्मानित किया और तीनों बहुत ही गुणी व्यक्ति थे और हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर एक हमने

0: स्पेशली कोसर भुट्टो जो दुबई में रहती हैं, वो भी बीकानेर उनका पीयर वो आई हुई थी, तो उनको भी हमने इनवाइट करके है, उनका भी हमने एक सम्मान किया हमारी संस्था की तरफ से। उन्होंने गज़ल और शायरी ये दोनों हमारे को सुनाई थी, हमें बहुत अच्छी लगी और हम आशा करते हैं कि हम जब भी बुलाएंगे शायद वो आ पाएंगी। लेकिन ये इसके अलावा जितने भी शायर और कवि और कवित्रियाँ जो आई थी, उन्होंने सब ने एक सूत्र में सबको बांध के रखा, 5 घंटे कंटिन्यू प्रोग्राम का चलना और शायरी का और कवि का कविताओं का, ये शायद मेरी नज़र में या मेरी जानकारी के हिसाब से ये शायद पहला प्रोग्राम होगा जो इतना लंबा चला और हम 1 मिनट के लिए कुर्सी से उठ नहीं पाए, क्योंकि उठने की इच्छा थी नहीं, इतना शानदार प्रोग्राम रहा।
1: यहाँ एक सवाल आता है पूनम जी कि आप व्यवसायी होते हुए साहित्य कला और संस्कृति के प्रति आपका बहुत प्रेम है, ये किस तरह से लगा हुआ आपका?
0: देखो, मुझे कला और कलाकारों से, कवियों से, शायरों से, फिल्मी कलाकारों से, फिल्म लाइन से, वैसे मैं राजस्थानी फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ, मैंने राजस्थानी फिल्मों का अभी 2024 के अंदर मेरी अंदर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था लाडलो बेटो, और मेरी नेक्स्ट एक फिल्म हिंदी बन रही है जिसका नाम है इस दिल को प्यार हो गया, जिसके गानों की रिकॉर्डिंग हो गई है। अब थोड़ा बरसात का मौसम आ गया था, मौसम अच्छा होने के बाद हम इसकी जल्दी शूटिंग शुरू करेंगे। और कलाकारों के प्रति जो है मेरा आदर भाव स्नेह हमेशा रहा है, मेरे दिल में बसते हैं कलाकार, किसी भी क्षेत्र का कलाकार, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और जो भाई कवियों का शायरों का प्रॉपर जब को एक स्पेस एक स्टेज नहीं मिल पा रहा था, तो मेरे दिल में ये आया कि हम संगीत के और के प्रोग्राम तो हम करते रहते हैं, सामाजिक काम हम करते रहते हैं, मगर इन कवियों के लिए कौन करेगा बीकानेर में आगे बढ़ के। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कवि और शायरों के लिए कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ।
2: हिंदी साहित्य क्षेत्र में सम्मानित होने वाली साहित्यकार डॉक्टर मेघना शर्मा ने हमसे बात करते हुए बताया।
3: बहुत हर्ष के साथ आप सभी को बताना चाहूंगी कि हाल ही में मुझे स्वर श्रृंगार साहित्य सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है, स्वर श्रृंगार कला समिति बीकानेर द्वारा, और हिंदी साहित्य की श्रेणी में ये सम्मान मुझे दिया गया है। आप सभी को ज्ञात ही होगा कि 3 श्रेणियों में इन पुरस्कारों को दिया गया है, उर्दू साहित्य में, हिंदी साहित्य में और राजस्थानी साहित्य में, और मेरी जिस श्रेणी में ये समिति द्वारा सम्मान प्रदान किया गया है वो श्रेणी हिंदी साहित्य रही है। मैं 97 से लिखती आ रही हूँ और कविता मैं कह सकती हूँ कि मेरा पहला प्यार है, कविताएं लिखती हूँ, कहानियां लिखती हूँ, लघु कथाएं भी लिखती हूँ, शिशु गीत संग्रह भी मेरे द्वारा लिखे गए हैं, और फिलहाल हथेली भर उजास नाम का एक कविता संग्रह मेरा आया है जिसका लोकार्पण अभी बाकी है। स्वर श्रृंगार साहित्य सम्मान 2026 मिलने पर बहुत ही हर्षित महसूस कर रही हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगी आयोजक श्री पूनम जी मोदी साहब का, जो फिल्म लाइन से होते हुए भी राजस्थानी फिल्म के डायरेक्टर हैं जैसे वो हम सभी जानते हैं, तो फिल्म लाइन से होने के बाद भी साहित्य के प्रति उनका इतना रुझान है, म्यूजिक के प्रति उनका इतना रुझान है, तो इस रुझान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पहले भी साहित्यिक आयोजन किए हैं और अब ये जो श्रृंखला उन्होंने आरंभ की है, जैसा उन्होंने मंच से कहा था कि श्रृंखलाबद्ध रूप में इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे, अब चूंकि मैं समझती हूँ कि स्वर श्रृंगार साहित्य सम्मान 2026 है तो शायद वो 2027 में भी ऐसा ही सम्मान आयोजित करेंगे, और जैसी व्यक्तिगत रूप से मेरी उनसे वार्ता हुई थी तो मुझे आपने बताया था कि वो इसे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे, तो मेरी शुभकामनाएं उन सभी के साथ है, जो भी वहाँ मंचस्थ अतिथि थे उन सभी का भी मैं आभार प्रेषित करती हूँ, और इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से साहित्य को समाज में आम जन तक पहुँचाने का काम करते हैं, पाठक वर्ग तक पहुंचाने का काम करते हैं। सम्मान के लिए लिखना तो मैं नहीं समझती कि लोगों को करना चाहिए, लेकिन सम्मान जब मिलता है तो प्रोत्साहन निश्चित रूप से मिलता है और आप प्रोत्साहित होकर के और बेहतर करने का प्रयास निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि सम्मान एक खुशी तो है ही लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी और दायित्व भी लेकर आता है, और आप अगली बार उससे बेहतर करने का प्रयास निश्चित रूप से करते हैं, मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ। तो यही कहना चाहूंगी कि सभी आयोजकों को मेरा बहुत बहुत सादर अभिवादन कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन महाराजा

0: नरेंद्र सिंह ऑडिटोरियम बीकानेर में रखा और आगे भी वो इसी प्रकार चयन समिति के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित करेंगे और बड़े समारोह आयोजित करेंगे। उन सभी समारोहों की शुभकामनाएं मैं उन्हें अग्रिम रूप से प्रेषित करती हूं।
1: और अब बात करते हैं राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र में योगदान की। राजस्थानी साहित्य के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वरिष्ठ साहित्यकार श्री कमल रंगा को स्वर श्रृंगार साहित्य से नवाजा गया। सम्मानित होने के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए श्री रंगा ने क्या कहा, आप भी सुनिए।
2: ये बीकानेर के लिए ही नहीं, पूरे राजस्थानी साहित्य के लिए, हम पूरे देश की अगर हम बात करें तो एक राजस्थानी भाषा के लिए या राजस्थानी साहित्य लेखन के लिए किसी को सम्मानित किया जाना, आप पूरी पूरा विवरण बताएं कि ये किस तरह का सम्मान था और आपको खास तौर से किस काम के लिए ये सम्मानित किया गया।
3: धन्यवाद महेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करियो। सम्मान मिलनो बिया तो साहित्यकार आप री सृजन एक समर्पित भाव सू और साहित्य री सेवा करने वास्ते करें, फिर भी अगर बी ने कोई भी पुरस्कार या सम्मान मिले तो निश्चित तौर पर एक तरफ तो बी ने प्रोत्साहन मिले और दूसरी तरफ भी ने एक चुनौती मिले कि जिकी स्टेज पर, जिकी मुकाम पर, जिकी जगह पर मैं मारो लेखन रो, मारी जिकी भी विधा है साहित्य री, चाहे वह नाटक है, कहानी है, कविता है या अन्य विधाओं में जिठे मैं लिख रहे हूँ, मैं कई विधाओं में लिखूँ, तो बिठे सो आगे मने और अच्छो लिखने री एक चुनौती भी हुए। और यही चुनौती रे वास्ते समय समय पर अगर कोई सम्मानित करे और बड़े आदर भाव सू करे, कई बार लोग कहया करे कि आप दो दो राष्ट्रीय पुरस्कार अनुवाद रो और मेन साहित्य रो दिल्ली सू लियोड़ा हो, साहित्य अकादमी नई दिल्ली सू, तो ये स्थिति में शहर पर मारो दूसरो सोच है कि अगर मारे शहर में मने सम्मानित करें तो मने भी ये राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान और पुरस्कार सू एक अलग तरह रो अनुभव और अनुभूति हुए और एक हरक और उमा हुए कि मैं मारे शहर में और खास तौर से मारे आदमियों के बीच में, मारे आपरे परिवार के बीच में, मारे परिजनों के बीच में, मारे बीकानेरी जी की साझा संस्कृति है मेरे बीच में और खास तौर से ये संस्था जिसको मैंने अब बार सम्मानित करियो, मेरा नाम है स्वर श्रृंगार संगीत केंद्र समिति, आ संस्था है और रजिस्टर्ड संस्था है और 2.5-3 साल पुरानी रजिस्टर्ड संस्था है, अच्छो काम करें भी ये संस्था। आपरे पिताजी जिका बहुत अच्छा आपरे टाइम रहा संगीतज्ञ था और बॉम्बे तक जार भी हो, भजन गायकी में आपरो एक नाम कमायो फकीर चंद जी मोदी साहब, मेरी स्मृति में और भी ये संस्था रे नाम सुई, पिताजी नाम सु नहीं, आपरी संस्था रे नाम सु स्वर श्रृंगार साहित्य सम्मान। बीए में भी मियाँ क्या करियो कि राजस्थानी, उर्दू और हिंदी और तीनों रही भाषाओं रा तीन प्रतिभाओं ने सम्मानित करियो और बीकानेरी आप बड़ी खूबसूरती है कि अठे भाषाई अपनत्व है, जिस तरह भाईचारो है उसी तरह भाषारो भी एक भाईचारो है अठे और समानांतर रूप से राजस्थानी, हिंदी और उर्दू रा तीनों भाषाओं रा साहित्यकारों में अपनत्व है, समन्वय है, भाईचारो है और तीनों ही भाषाओं रो साहित्य निरंतर तीन तीन पीढ़ी लगो लगा बार लिख रही है, तो आप बीकानेरी एक समृद्ध साहित्यिक और सृजनात्मक परंपरा है। बीए कड़ी में भी एक ये ने अपा ये सम्मान ने देख सका, समझ सका, तो मैंने राजस्थानी में दियो और वो एक राज्य स्तरीय सम्मान हो क्योंकि बीकानेर सू राजस्थानी में मैंने दियो, हिंदी में डॉक्टर मेघना शर्मा जी ने दियो जिनका इतिहास रहा है और हिंदी में बहुत अच्छा लेखक है, उर्दू रा जयपुर सू एक बहुत ही युवा, बहुत ही संभावना भरियोड़ा सशक्त हस्ताक्षर भाई वारसी, सफीक वारसी नाम है शायद पूर्व मियाँ रहो, मियाँ ने बुलाया गया था और मियाँ ने सम्मानित करियो, तो एक राज्य स्तरीय ये रूप स्वरूप हो और काफ़ी बीकानेरी हर कला अनुशासन रा लोग ये में हाजिर हुआ। कासम भाई जिका शायर है और मार तो छोटे भाई जो है

0: ये रहा समन्वय का पूरी डिजाइन बनाने में कार्यक्रम रही और बियरे साथे साथ ही एक राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन और मुशायरों करियो। कवि सम्मेलन मुशायरों बीकानेर में होनो और अच्छा अच्छा होनो कोई बड़ी बात को नहीं, पर वो लाडले दिनों जगह आज कीर्ति शेष हो गया बशीर बदर साहब, आप भी नाम सुनियो पूरा विश्व जाने बशीर बदर साहब ने, तो बशीर बदर साहब री याद में एक राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन मुशायरों भी माने सम्मान रे साथे होनो वो भी माने वास्ते एक गौरव रो क्षण हो पल हो और ऐतिहासिक बीकानेरी धरोहर बा सांस्कृतिक और साझा संस्कृति प्रतीक ऐतिहासिक धरोहर नागरी भंडार परिसर में कोई कार्यक्रम हुए तो अपने आप रो भी रो एक इतिहास बने और बैठे सम्मानित भी परिसर में माँ सरस्वती रे पावन स्थल में सम्मानित हुनो भी अपने आप में एक गौरव रो पल हुए और एक ऐतिहासिक पल हुए। इस तरह में हमारे नगर में मैंने फिर सम्मानित कर परो हमारे पर एक चुनौती दी गई है सृजनात्मक और रचनात्मक, मैं निश्चित तौर पर भी पर खरो उतरने रो कोशिश करूँगा और संस्था ने संस्थारा जिका भाई अध्यक्ष है पूनम जी मोदी बियारो आग्रह भी मैं यहाँ टाल सकता को नहीं क्योंकि राजस्थानी ने बहुत लूठा है तालु है और वह राजस्थानी फिल्मियों बनावे साहब एक व्यापारी होते हुए भी मेरे मन में कला साहित्य और संस्कृति और संगीत रे प्रति जिकी हूँ सोर टोटी है जिको समर्पण है मैं बियरो कायल हूँ और मैं राजस्थानी फिल्मियों बनावे घर फूक तमाशा देखे थाने ठाए राजस्थानी साहित्य संस्कृति और बियर क्या स्थिति है और आज बाजार बात हावी है बीए में कोई आदमी आपकी भाषा साहित्य संस्कृति और संगीत रे पेटे कोई भी आयोजन करें या कोई फिल्म बनावे तो बीए सो अच्छो कोई काम को नहीं, इसे व्यक्ति और इसे व्यक्ति री संस्था रे माध्यम से इस आयोजन होनो और मने सम्मानित करनो मारे वास्ते एक अच्छी बात है, बीकानेर वास्ते अच्छी बात है और युवा जिकी पीढ़ी है भाभी निश्चित तौर पर काल माने करियो है। मैं चाहूँ युवा पीढ़ी ने वे और प्रेरणा देने वास्ते अगले सालों में युवा पुरस्कार या युवा सम्मान भी स्थापित कर सी तो भी यह क्या उसी के युवा पीढ़ी जिकी आज निश्चित तौर पर बीकानेर में समृद्ध सृजन परंपरा ने निर्वहन कर रही है भी इन्हें बो पर एक चुनौती रो भार और बढ़े और युवा पीढ़ी भी महाराज जी का प्रोधा जिकी समृद्ध परंपरा छूट गया है बीकानेरी साहित्य री चाहे वह हिंदी री हुए राजस्थानी री उर्दू है भी हमें मे लोग जो सो मैं मारो काम कर रहे हैं नई पीढ़ी भी है मैं चाहवा मांसू भी आगे बढ़े ये कामना रे साथ है। मैं पुनः मैंने सम्मानित करने वास्ते बीकानेर और इस तरह की संस्थाओं रो साधुवाद करूँ।
1: और अब चलते हैं पर्यावरण और हमारी धरती को बचाने की मुहिम की तरफ। श्रोताओं आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। इसी क्रम में प्रतिवर्ष विशेष तौर से बारिश के मौसम में पौधे लगाने का कार्य किया जाता है। बीकानेर में इन दिनों विभिन्न संस्थाओं और समाज सेवी और सरकारी कार्यालय द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। हमने बात की पर्यावरण प्रेमी सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रदीप उपाध्याय से।
2: एक पेड़ माँ के नाम से जो प्रधानमंत्री जी ने जनता को आह्वान किया है मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार आह्वान है। आम जनता की भावना रहती है कि यार हम भी कभी पेड़ लगाए लेकिन वो समय नहीं निकाल पाते, कारण कुछ भी हो सकता है। मोदी जी के कहने से उन लोगों में प्रेरणा आई है। वास्तव में भारत के अंदर अभी जो वातावरण चल रहा है इस गर्मी का बहुत ही हालत ख़राब है। पेड़ नहीं होने के कारण हमारे राजस्थान में बरसात कम होती है। यदि आम आदमी ये सोच ले कि मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाएंगे तो ये राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान हरा भरा हो सकता है। लेकिन यदि ईमानदारी से वो पेड़ लगाए मोदी जी के आह्वान का फर्क तो पड़ेगा। आम जनता इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, मैंने भी ज़्यादा तो नहीं 5 पेड़ लगाए हैं और भी प्रयास कर रहे हैं। इस राजस्थान में हम लोग बीकानेर रहते हैं, यहाँ बरसात बहुत कम होती है। राजस्थान में जयपुर में बरसात ज़्यादा होती है, वहाँ हरियाली है, यहाँ हरियाली है नहीं, पेड़ पौधे हैं नहीं। इसलिए जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगेंगे आने वाले सालों में यहाँ पानी की कमी नहीं रहेगी, बरसात बराबर होती रहेगी। तो अभी जो हम गर्मी से जूझ रहे हैं

0: शायद इसका प्रभाव कम होगा और हरियाली से तो जीवन में आनंद ही आनंद है। मोदी जी की शानदार ये प्रेरणा मान सकते हैं, आदेश मान सकते हैं, हम इसकी पालना करेंगे।
1: माँ का नाम इस पेड़ के साथ जोड़ दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? एक भावुकता भी यहाँ पर जुड़ी हुई है और एक आदर सम्मान की बात भी माँ के साथ जुड़ी हुई है और पेड़ को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया, इस बात पर आप क्या कहेंगे?
0: मोदी जी हमेशा आगे की सोच के कार्यक्रम करते हैं और मोदी जी को पता है माँ जो शब्द है वो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द होता है। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे जीवन में माँ का कितना महत्व है मोदी जी को पता है। मोदी जी ने हर बार अपने जन्मदिन पे ये लोगों को दिखाया है कि माँ क्या चीज़ होती है। माँ से मिलने के लिए हर बार वो अहमदाबाद गुजरात जाते थे, माँ से मिलते थे। आज उनकी दुनिया में माँ नहीं है। माँ नहीं होने के कारण उनको जो क्षति पहुँची है, माँ से भावनात्मक रिश्ता क्या होता है वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी को पता था यदि माँ के नाम एक पेड़ कहेंगे तो शायद इसमें कोई भी आदमी मतलब मेरे हिसाब से लापरवाही नहीं करेगा और वो माँ के नाम पेड़ ज़रूर लगाएगा, चाहे वो माँ इस दुनिया में है या नहीं है। कोई माँ की याद में लगाई तो माँ के सक्षम माँ को वहाँ खड़ा करके पेड़ लगाई, पेड़ लोग ज़रूर लगाएंगे। क्यों? कि मोदी जी ने जो आह्वान किया वो माँ के नाम पर किया है, ये शानदार आह्वान है।
1: आकाशवाणी के माध्यम से अभी जो आपको लोग सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आपका?
0: मेरा संदेश यही है, एक पेड़ माँ के नाम मैं कह रहा हूँ। मोदी जी के आह्वान के साथ एक पेड़ माँ के साथ एक पेड़ अपने पिता के नाम पर भी लगाइए। क्यों? कि इस जीवन में माता पिता से ज़्यादा किसी का ऋण नहीं है। हमारे को इस दुनिया में माता पिता का नाम इस दुनिया में आए, हमें इस दुनिया को दिखाया है माँ बाप ने। मैं तो सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी के कहने पर एक पेड़ लगे, आप दो पेड़ लगाओ, एक पिताजी के नाम पर, एक माताजी के नाम पर।
2: उपनगर गंगा शहर में भी पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण कार्य किया जा रहा है।
3: इस देश में सभी जागरूक लोग, वो जागरूक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को और इस मुहिम को अगर आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ पूरे देश में नहीं, बीकानेर जिला, तहसील या जो वार्ड है, जैसे मैं रोज मेरी तरफ से प्राकृतिक चिकित्सालय में घूमने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ हम लोग भी वहाँ अनुसरण करते हैं कि मोदी जी का ये जो अभियान है वो तभी फलीभूत होगा जब पूरे हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति और एक एक कार्यकर्ताओं को जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और पब्लिक में और जैसे युवा साथियों में अगर जागरूकता पैदा होगी कि एक पेड़ माँ के और माँ के प्रति भी उत्सुकता रहेगी और वात्सल्य भावना रहेगी तो ही वो भावना बिल्कुल सफल होगी देश में और ज़िले में और शहर में। तो मैं तो चाहता हूँ कि आपके माध्यम से इस बीकानेर वासियों को और विशेषकर गंगा शहर वासियों को इस हरियाली के मौसम में मोदी जी की बात कभी अनुसरण होगी जब एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाएगा और सभी शिक्षण संस्थाओं से भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी एक पेड़ माँ के नाम लगाए और मैं मेरी तरफ से भी प्रयास करूँगा। हमेशा मैं प्रकृति चिकित्सालय श्याम को बीकानेर में बड़ा मंदिर है नगर श्रेष्ठ के नाम से, लक्ष्मीनाथ जी भी वहाँ जाता हूँ, वहाँ भी जो लोग बैठते हैं उनसे भी अनुसरण करूँगा, उनको भी निवेदन करूँगा कि मोदी जी के इस अभियान को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। जय हिंद, जय भारत।
2: श्रोताओं, हमें भी चाहिए कि इस मौसम में हमारे आसपास की खुली जगह पर पौधारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभाएं। एक निवेदन और, पौधा सिर्फ लगाएं नहीं बल्कि उसकी देखभाल भी सुनिश्चित करें, तभी हम इस अभियान में सफल हो पाएंगे। श्रोताओं, यहाँ एक बात और याद आती है कि इन दिनों बारिश का मौसम है, कभी बारिश अच्छी हो जाती है, कभी कम होती है, कभी उमस भरा मौसम होता है। ये सभी बातें कहीं न कहीं सुखद और दुखद एहसास तो कराता है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी ठंड भी हो रही है, कभी गर्मी भी हो रही है, तो ऐसे मौसम में विशेष तौर से बुजुर्ग और हमारे जो बच्चे हैं उनका हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक बात और, जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है, कीचड़ होता है, वहाँ हम स्वयं ये प्रयास करें कि हम वहाँ पानी इकट्ठा न होने दें। इसके बावजूद अगर हमें ये लगता है कि इस बात की जानकारी प्रशासन को देने की आवश्यकता है तो हम ये काम भी करें ताकि हमारे शहर में कीचड़ से, पानी इकट्ठा होने से अलग अलग तरह की बीमारियाँ पैदा न हो। तो ये था आज का बीकानेर दर्पण। संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्रीमती पुनीत बिश्नोई की और वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अगले अंक तक अनुमति आपसे चाहेंगे और आप सब खुश रहें।

यह था बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। आज आपने सुनी इसकी 154वीं कड़ी। वाचक स्वर श्री महेश उपाध्याय के थे, प्रस्तुति श्रीमती पुनीत बिश्नोई की और संयोजन श्री अमित सिंह का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारु चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम

0: बिग इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
4: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ

0: 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस

0: सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर

सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस केस इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: On the five-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said the government will think deeply about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson Saurav Das announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
2: On that note, the Kokrol Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
3: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाए।
1: CJP's national spokesperson Ashutosh Anka appealed to all the protesters.

0: to their demands after talks with Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. President Draupadi Murmu concludes her three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. Ancient Buddhist site of Sarnath in Uttar Pradesh added to UNESCO World Heritage List. And in cricket, India beat host Zimbabwe in second T20 international by 90 runs in Harare. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम के 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम याद कर रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध संगीतकार जी एस कोहली को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर।

संगीतकार जी एस कोहली को याद करते हुए हमने आपको सुनवाया कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म शिकारी से। आवाजें थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। फारूक केशर के बोल थे और संगीत जी एस कोहली का था।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से, और कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम याद कर रहे हैं संगीतकार सुधीर फड़के को उनकी जयंती के अवसर पर।

संगीतकार सुधीर फड़के के संगीत से सजा फिल्म भाभी की चुड़िया का ये गीत अभी आपने सुनिया। आवाज लता मंगेशकर की थी और गीत रचना नरेंद्र शर्मा की थी। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अभिनेत्री रागेश्वरी लुम्बा के जन्मदिन के अवसर पर उनकी अभिनीत फिल्म आंखें का ये गीत। आवाजें हैं कुमार सानू, सुदेश भोसले, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक की।

कुमार सानू, सुदेश भोसले, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक की आवाजों में गाए फिल्म आंखें के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे विज्ञान भारती कार्यक्रम।

0: के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंटवार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस मनाए जाने के अवसर पर आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है आईवीएफ तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताज़ा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है, जिसे एक एक्सोसेट

0: चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को डीएनए राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल डीएनए सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक डीएनए में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या?
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन एक सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है, और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है, जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं। इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
1: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं,
3: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं, और उस एनर्जी का उपयोग करके जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए, तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है, और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है, और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है, और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया।

0: है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ट्रेन में उनको रिफ्यूल करने में इस्तेमाल किया। और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहाँ पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलकर वापस वो पानी बना गए। यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी उत्सर्जित कर दिया, और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है, और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। IIT कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों हैं।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये है धरती में बहुत सारे, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली, और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है, तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे, तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का, कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स से नहीं बनते हैं, उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे NdFeB बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो Nd जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो Nd की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय कि ये जब हम Nd और Fe को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
2: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी, कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है, और साथ में उनकी एबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, स्टेम सेल और IVF तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व

0: IVF दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से IVF तकनीक क्या है।
1: तो बेसिकली जो IVF है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपीयरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स एंड देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमीट, एक फीमेल और मेल गेमीट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैनिपुलेट करते हैं उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर तो उसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद दो दिन बाद डे टू एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे थ्री होता है, फिर डे फोर होता है, फिर डे फाइव होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब जीरो डे है और फिर स्लोली स्लोली पांचवे दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है और फिर चिपकता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं पांचवे दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं।
0: दोस्तों IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं।
1: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है जहां कि पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे पांच दिन में दो बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती है। देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते। तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा। तो इस सेंस में जो चांसेस हैं अटेम्प्ट्स हैं IVF के वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। देन AI सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया, तो मतलब आजकल लैब्स में AI विटनेसिंग हो गई है, ये याद करने की जरूरत नहीं अगर चार मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे।
0: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है, लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता है। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया। आज हमारे पास करीब साढ़े

0: 3000 से 4000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते हैं। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई जिसमें 9 टाइगर रिजर्व्स को शामिल किया गया, आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहाँ पर है।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
0: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण की लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना। इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-Stripe ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-Stripe ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है, और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमरास लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पर निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
1: दोस्तों, जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
2: देखिए, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि ये कहीं संस्थान है, ये कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो हम जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी, जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गाँव से जोड़ना, ये STI है। क्योंकि ये उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए, और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
1: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
2: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस, इसलिए हमने STEM की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़े, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सुनें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही है बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा, मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी
3: इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं कर रहा, वो कैसे बदलेगा? सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर की, तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ

0: किया हुआ, जिसको देखा हुआ, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
2: जुलाई का ये महीना सिर्फ मानसून की फुहारे लेकर नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुराने डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीडी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरिफायर इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

0: श्रोता हूँ। इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आपने सुना विज्ञान भारती कार्यक्रम। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: Classical Vocal Recital by Akashwani's A-grid artist Shrimati Aditi Banerjee.
1: Shrimati Aditi Banerjee ne apni prarambhik sangeet shiksha swargiya Shri Neelmadhav Sinha ji se prapt ki.
2: Tatpashchat Gwalior gharane ke prakhyat gayak Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit ji se unhone khyal aur tappa gayike ka gahan abhyas kiya. उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सानिध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी दादरा होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी. दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूर्व अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है.
3: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा. सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग इन खयाल एंड तप्पा सिंगिंग अंडर द एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित अंडर द गाइडेंस ऑफ पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू. फॉर नियरली 14 years she mastered the authentic Purab Ang Gayaki, performing Thumri, Dadra, Hori and Kajri, and also accompanied her guru on numerous prestigious occasions. In addition to topping her MA and MPhil degrees in music from Delhi University with gold medals, Srimati Aditi Banerjee was specially honored by Padma Vibhushan Girija Devi during the Purab Ang Gayaki Utsav.
2: Aiye sunte hain. श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति. उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर. कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी जो दीपचंदी ताल में बद्ध है. इसके बोल है बैरन रतिया कैसे आऊ.
3: Let's listen to this recital of semi-classical music by Srimati Aditi Banerjee. She's accompanied on tabla by Shri Bharat Kamat and on harmonium by Shri Saumitra Kshirsagar. She begins her recital with Thumri composed in Rag Mishra Tilak Kamud, set to Deep Chandi Tal. Bairan Ratiya Kaise Aaun.

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक का आमोद ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी मिश्र तिलक का आमोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी, सेट टू कहरवा ताल, छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी, रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: That was Dadra set in मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे and broadcast came to you from Akashwani Delhi. Namaskar.

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आपने सुना संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे की जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

किलोहर्ट्ज पर भी उपलब्ध थे। कल प्रातः 5:53 पर कल के प्रसारणों की पहली सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद।